0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: हम समाचारों में स्वागत है आप सभी का। ये नया दिन हम सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ जिन्हें हम बेशक विस्तार देंगे 6:30 के समाचारों में। मॉरिशस में पानी की स्थिति लगातार चिंता का विषय बन जा रही है। जलाशयों में औसतन करीब 60% पानी बचा है जबकि पिछले साल इसी समय ये स्तर 87% से ज्यादा था। मोवाक्वा सिर्फ 36% और लानिकोलिया महज 6% भरा है। आने वाले महीनों में सामान्य के आसपास बारिश की संभावना लेकिन मौजूदा कमी पूरा करने के लिए ये शायद काफी नहीं होगी। कोटोगाफे में कई परिवार अब भी पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। कुछ परिवारों को जमीन का कॉन्ट्रैक्ट मिले करीब 15 साल हो चुके हैं। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने CWA और CBI के अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा किया। ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मीटा की एक टीम आज और कल मॉरिशस में अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। बच्चों की सुरक्षा, उम्र की जांच, क्रियोल मॉरिशिया में कंटेंट मॉडरेशन और आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाने जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल और कैंसर के मामले के बीच संभावित संबंध का अब मॉरिशस में वैज्ञानिक अध्ययन। WHO और FAO के सहयोग से होने वाली इस अध्ययन में पेस्टिसाइड्स के संपर्क और स्वास्थ्य पर उनके संभावित असर की जांच की जाएगी। और अब बढ़ते हैं मौसम की जानकारी की ओर। हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान और शाम तक देश भर में मौसम अच्छा रहेगा और धूप खिली रहेगी। केवल देर शाम को पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर कुछ कुछ वर्षा हो सकती है। रात के मौसम की बात करें तो केवल पूर्व दक्षिण और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और वर्षा की संभावना है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 5:47 पर, सूर्यास्त 6:01 पर होगा।
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

जिनका विसाल इस माह में हुआ और इस प्रोग्राम को हमने कुछ इस तरह से तरतीब दिया है। बाकायदा मजलिस का आगाज कलाम पाक की चनायत मुबारका की तलावत से करेंगे, उसके बाद सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग हजरत सैयद अमीनुल कादरी दामत बरकातुहुम आलिया की जबानी, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर एक जामा तकरीर, उसके बाद हजरत क़िबला की चंद करामतें और चंद मनकबत हम आपको गोश गुजार कराएंगे। आइए बाकायदा मजलिस का आगाज़ कलाम पाक की चनायत मुबारका की तिलावत से करते हैं। बागौर अदब समात करके अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं।

0: सामीन, आज का ये प्रोग्राम ख़ास है। हम खराज तहसिन पेश कर रहे हैं हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को।
1: सामीन, बरसग़ीर की सरज़मीन, अल्लाह वालों के पाक और मुबारक क़दमों से हमेशा मुज़य्यन व मुनव्वर रही है।

तारीख शाहिद है कि अल्लाह वाले काफिला दर काफिला अरब व ईरान से चलकर अफगानिस्तान से गुजरते हुए लाहौर और मुल्तान के रास्ते दिल्ली व अजमेर पहुँचे और आसपास के इलाकों और बस्तियों में फैल गए। जिन सूफियों बुजुर्गों और औलिया ने यहाँ अपने इल्म व अमल से तारीकी को मिटाया और इस्लाम के तबलीग व इशायत का कारनामा सर अंजाम दिया, इनमें ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इन्हीं में एक अजीम नाम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का है, जिन्हें आज हम खिराज तहसीन खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं।

0: सामीन बिलाशुबा औलिया कराम का रुतबा मर्तबा बुलंदोबाला है। पेश खिदमत है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर मुश्तमिल ये जामा तकरीर, जिसे पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग़ हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी दामत बरकातुहु आलिया।
1: मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया, जिनको हम कहते हैं तो उनका असल नाम मोहम्मद है और उनके अब्बा का नाम अहमद है और ये मोहम्मद अहमद उनको इस तरह पूरा पुकारा जाता है इसलिए कि पहले तरीका था कि बेटे और बाप का नाम एक साथ पुकारा जाता था। जैसे कि हम कहते हैं ना अब्दुल रहमान इब्ने औफ, उमर इब्ने खत्ताब, इसी तरीके से एक उसूल था बाप के साथ बेटे का नाम पुकारना। तो वो मोहम्मद अहमद मोहम्मद अहमद मोहम्मद अहमद इस तरह हुआ कि आपके नाम के साथ ऐसे ये लाजिम हो गया कि लोगों को ये खबर ही ना रही कि हजरत महबूब इलाही के वालिद का नाम अहमद है। तो इनका नाम मोहम्मद अहमद है और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाही ताला अलैह हिंदुस्तान के शहर मदीनतुल औलिया बदायूं शरीफ में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार का मजार अब भी बदायूं शरीफ में है और आपका पूरा बचपना बदायूं शरीफ में गुजरा। 27 सफरुल मुज़

जफर को हजरत महबूब इलाही बदायूं शरीफ में चाश्त के वक्त पैदा हुए। और बात यह है कि औलिया अल्लाह में बहुत सारी इकसाम है। बहुत सारे वली ऐसे हैं कि पहले उन्होंने गुनाहों की जिंदगी में अपने लम्हात को गुजारा, फिर कोई अल्लाह वाला मिल गया और उन्होंने सच्ची तौबा कर ली, फिर वो वली हो गए, तो वो भी काबिल एहतराम है और बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें उन्होंने भी पाई। लेकिन कुछ औलिया ऐसे हैं जो माँ के पेट से वली पैदा हुए, शिकमे मादर से वली पैदा हुए, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर फिर गुनाह नहीं किया, वो मासूम तो नहीं, अलबत्ता वो महफूज जरूर है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उन्हीं औलिया अल्लाह में हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए और उसके बाद अभी आपकी उम्र चंद साल की थी कि आपका पर्दा हो, आपके वालिद बुजुर्गवार का पर्दा हो गया। आपके जो वालिद साहब थे हजरत सैयद अहमद अल हुसैनी, आप दुनिया से कूच कर गए। तो अब चूंकि आप बादशाह के काजी थे तो माल और दौलत बहुत ज्यादा थी घर में और बचपना बड़ी शान से गुजरा। लेकिन जैसे ही विसाल हुआ आपके वालिद बुजुर्गवार का, आपकी उम्र उस वक्त तो बहुत छोटी थी, 7-8 साल या 10 साल की उम्र के थे। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सना लिखा है लेकिन 10 साल से ज्यादा किसी ने नहीं लिखा है। तो उस छोटी सी उम्र में जब आप यतीम हो गए और आपके वालिद का पर्दा हो गया, तो जो दौलत थी और जो रकम आती थी वो तो सब फिर खत्म हो गई और अब आपके गुर्बत के अय्याम शुरू हो गए। तो जिस वक्त गुर्बत के अय्याम शुरू हुए तो आपकी वालिदा माजिदा चरखा काट कर और कपड़े बुन करके आपका गुजर बसर करती थी और आपकी परवरिश करती थी। हजरत महबूब इलाही की बहन भी थी जो आपके साथ परवरिश पाती थी। हजरत महबूब इलाही फरमाते मेरी माँ इतनी मुत्तकी थी हजरत सैयदा जुलेखा के जिस दिन फाके का दिन होता उस दिन मेरी माँ ये नहीं कहती कि बेटा हमको फाका करना है, बल्कि जब फाके का दिन होता तो मेरी माँ कहती बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। तो जब माँ कहती आज हम अल्लाह के मेहमान हैं तो फरमाते मैं समझ जाता आज फाका कशी की नौबत आ गई। और फिर खुद फरमाते हैं जब कई दिन तक के मुसलसल मुझे खाना मिलता तो मैं सोचता काश अम्मी आज ये क्यों नहीं कहती कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, क्योंकि अब फाका होना चाहिए। देख रहे सपूत के पाव पालने में नजर आते हैं कैसे अल्लाह के बरगजीदा बनते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त कई दिन तक फाका नहीं होता तो मेरा दिल कहता कि फाका हो और मेरी माँ मुझसे कहे बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। इसी गुर्बत में जिंदगी गुजर रही थी। आप बदायूं में बहुत सारे उलमा से पढ़ते थे, आपने कुरान मुकद्दस जवानी के बाद हिफ्ज किया, यानी जब आप जवान हो गए उसके बाद आपने कुरान मुकद्दस हिफ्ज किया, बचपने में कुरान हिफ्ज नहीं किया। लेकिन उस वक्त बदायूं में एक बुजुर्ग रहते थे, अगर कोई उनके पास एक पारा हिफ्ज कर लेता तो जिंदगी में कभी ना कभी वो पूरा कुरान हिफ्ज करने की सआदत हासिल कर लेता था। तो आपने एक पारा उनके पास पढ़ा था ये सोचकर कि अब हिफ्ज फिर कभी बैठ करके कर लेंगे, अभी जो है वो जाहिरी उलूम हासिल कर लें। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बदायूं शरीफ के अंदर जो है वो जो जाहिरी उलूम थे उसकी तकमील फरमाई। और जब तकमील फरमाई तो उस्ताद ने कहा निजामुद्दीन, अभी आपको निजामुद्दीन का लकब नहीं मिला था, क्योंकि बार बार बोलने की आदत है ना तो जबान फिसलती है। कहा कि मोहम्मद अहमद बाबा जाओ और तुम्हारी अम्मी से कहना कि तुम्हारी दस्तार बांधनी है तो कपड़े का अमामे का इंतजाम करो। और जब दस्तार बंदी होती है तो उस वक्त तो उलमा और मशायख को खाना खिलाया जाता है, तो तुम अपनी माँ से कहना कि वो खाने का इंतजाम करें, न्याज का फातिहा होगी और दस्तार बंदी होगी। इससे पता चला कि निजामुद्दीन औलिया का जमाना आज से 800 साल पहले का जमाना है। तो उस वक्त भी लोग फातिहा दिया करते थे खुशी के मौके पर। आपके उस्ताद फरमाते बाबा मोहम्मद अहमद फातिहा होगी तो तुम्हारी अम्मी से कहो। जब ये माँ के पास आए माँ से कहा अम्मी के दस्तार बंदी होनी है और न्याज शरीफ का एहतमाम करना है, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए और माँ कहने लगी बेटा हमारे घर में तो खाने के लिए लाले पड़े होते हैं, इतने उलमा को हम कैसे खिलाएंगे। तो फिर माँ ने कहा एक काम कर, तू अपने उस्ताद से चंद महीने की मोहलत ले ले, मैं दस्तार का भी इंतजाम करूंगी और खाने का भी इंतजाम करूंगी। तो फिर आपकी अम्मी क्या करती, ना रात को सोती ना दिन को सोती, दिन के वक्त लोगों के काम घर में

बैठ करके करती और उससे पैसे कमाती और न्यास का इंतजाम करती। और रात के वक्त आप एक छोटा सा चराग जला करके सूत लाती और उससे आपकी दस्तार अपने हाथों से बुना करती थी। तो हजरत महबूब इलाही की अम्मी ने उनकी दस्तार को अपने हाथों से बुना था। और जब इंतजाम किया तो चंद लोग का इंतजाम हुआ और बकियों का इंतजाम नहीं हुआ। तो आपके उस्ताद ने कहा जितना तुम्हारी अम्मी ने इंतजाम किया है वो और बाकी के हम मिला देते हैं, लेकिन दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखते हैं। जब दस्तारबंदी का प्रोग्राम हुआ, अब यहाँ पर तलबा की खास तौर पे तवज्जे, मुबल्लिगीन और सारे नौजवानों की खास तौर पे तवज्जे। देखो याद रखना, कभी भी किसी को बुलंदी, किसी को उरूज, किसी को तरक्की, किसी को शोहरत, किसी को नामवरी गुरूर की बुनियाद पर नहीं मिलती। हमेशा इंसान इज्जत पाता है आजिजी की बुनियाद पर। तो जिस दिन हजरत महबूब इलाही की दस्तार बंदी का दिन आया कि आपको आलिम की आज दस्तार दी जाएगी, तो आपके उस्ताद ने बड़े बड़े उलमा को बदायूं के मधु किया। बदायूं शहर बहुत बड़े उलमा का शहर है, उसको मदीनतुल उलमा व मदीनतुल औलिया कहते हैं और आज से नहीं सदियों से है। तो जिस वक्त आपके उस्ताद ने बड़े बड़े उलमा को बुलाया तो उसमें औलिया अल्लाह भी तशरीफ लाए। तो जैसे ही पहला अमामे का एक पेज आपके सर पे रखा गया तो आप पहले ही पेज पर जितने वहां पर बड़े उलमा थे उनके पैर को चूमने लगे। दूसरा डाला गया तो फिर दूसरे पर भी चूमा सबके पैर। तीसरा डाला गया, तीसरे पे भी सबके पैर चूमे। तो वहां पर एक मजबूत बुजुर्ग थे, फरमाया ये जो झुक रहा है ना, इसका झुकना कोई मामूली नहीं है। ये बच्चा आज झुक रहा है, कल अल्लाह इसको इतनी बुलंदी अता फरमाएगा कि इसकी बुलंदी को देख करके लोग दंग होते हुए नजर आएंगे। हजरत महबूब इलाही की इब्तदाई जिंदगी ये है। तो टाइम भी अब ज्यादा होता है। तो महबूब इलाही जब गए तो आपको डायरेक्ट मुरीद कर लिया गया और वहां बहुत सारे चिल्ला कशी कर रहे थे, लेकिन आपको खिलाफत नहीं दी गई। इसलिए कि बाबा फरीद थे ना वो, और मुरीद का तरीका ये था कि जब मुरीद करते थे तो सर मोड़ते थे। सर और ये थे जवान, और जवानों की फितरत हर दौर में कमोबेश एक जैसी होती है, कहीं थोड़ी कहीं ज्यादा। तो इन्होंने दिल में सोचा कि बाबा साहब तो मेरा भी टकला करेंगे, सर मुंडेंगे, हलक करेंगे, तो शर्म आएगी मुझे, क्योंकि मुझे अभी पाक पटन में अपनी आला तालीम जारी रखना है, तो मैं तलबा के दरमियान कैसे बैठूंगा। तो बाबा साहब ने कैंची ली और दो चार बाल काटे और कहा कि मोहम्मद अहमद तुम हलक नहीं कराना चाहते तो हम भी करना नहीं चाहते, छोड़ दो इसको। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, बजाहिर ऐसा लगता है मुरीदी के वक्त जो हलक होता है आमतौर पर आप जो कराते हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि आज के दौर में बार बार टकला नहीं कराना चाहिए। ये टकला इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मेरी तकरीर छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं। तो हलक करना कहूंगा तो किसके हलक के नीचे उतरेगा वो, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि टकला बार बार कराना इस दौर में मना है। क्यों मना है? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आखिरी दौर में, यानी कि आखिरी दौर में बार बार सर मुंडाना ये मुनाफिकीन की अलामत है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो बार बार सर मुंडाते हैं और सर बार बार मुंडाने से गर्दन उनकी हो जाती है बहुत मोटी, तो वो बहुत भद्दे नजर आते हैं। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ दो मर्तबा हलक कराया, एक तो कजा उमरा के वक्त और एक तो हज के मौके पर। यानी जब भी हज उमरा करो तो बार बार हलक कराओ। क्यों? इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हलक कराने वालों के लिए दुआ की है, मगफिरत की और रहमत की दुआ की है। और आपको बताऊं, बज़ाहिर ये कहने की बात है, लोग समझते हैं कि ये हलक कराने से क्या होता है, ये मेरा मुशाहिदा है और आप भी कभी मुशाहिदा कर सकते हैं। आप उमरा करें और उमरा कराने के बाद आपने उमरा पूरा कर लिया, आप जैसे शहर से चेहरा लेकर गए थे पूरा उमरा खत्म होने तक चेहरा वैसा ही होता है, लेकिन जैसे ही हलक कराओ खुदा जाने कहां से अचानक चेहरे पर नूर आ जाता है और चेहरा चमकने लगता है। ये बारहा का मेरा मुशाहिदा है, आप कभी इस पर गौर कर लेना, आप खुद भी गौर करना। वतन में टकला कराए कुछ नहीं, लेकिन हरम में आप सर मुंडाए तो चेहरे पर कुदरती नूरानियत आ जाती है, चमक आ जाती, चेहरा बदल जाता है। तो ऐसे ही बाबा साहब जब लोगों का हलक करते थे तो इन्होंने देखा नहीं था, सुन रखा था कि जवान हूं कैसे हलक कराऊं।

तो हलक नहीं कराया। लेकिन ये अभी मुरीद होकर के कुछ दिन गुजरे थे, एक और मुरीद होने के लिए आए, तो बाबा साहब ने उनका हलक किया, उनका पूरा सर मोड़ दिया, तो चेहरे पे नूरानी किरणें आने लगी। तो इन्होंने कहा बाबा साहब एक बात अर्ज करो। कहा कि कहो मोहम्मद अहमद, क्या बात? कहा इसका हलक किया, मेरा नहीं किया। कहा तो तुम तो सोच रहे थे ना कि तुम्हारा नहीं होना चाहिए, हमने नहीं किया, ये जबरदस्ती का सौदा निकाह नहीं, जो नूर उसको मिला है वो मुझे भी चाहिए, इसलिए मेरा भी सर मुंडा दिया। तो आपका सर बहरहाल मुंडाया गया और आप जो है वो तकरीबन 4 या 6 महीने साल भर में बाबा फरीद की बारगाह में रहते, पढ़ते, वहां पर तज़किया होता और बहुत कुछ होता, और उसके बाद फिर आप वापस आ जाते। तकरीबन कमोबेश 10 मरतबा आपने दिल्ली से पाक पतन का सफर किया, 7 मरतबा आपने पीरो मुर्शिद की हयाती में किया और 3 मरतबा आपने पीरो मुर्शिद के विसाल के बाद मजार शरीफ की जियारत के लिए किया। और जब तक आप आते जाते रहे और फिर आपकी वालदा का भी विसाल हो गया, आपने शादी नहीं की। हजरत महबूबे लाई ने शादी नहीं की, शादी नहीं करने की वजह यह थी कि हजरत बाबा फरीद जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपकी बेटी थी और उसके चंद यतीम बच्चे थे। तो बाबा फरीद की बेटी चूंकि पीरो मुर्शिद की बेटी थी, इसलिए हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके बच्चों की और उनकी किफालत करते थे। तो दिल्ली के कुछ बदबख्तों ने यह बात उड़ा दी कि मोहम्मद अहमद का और बाबा फरीद की बेटी का, ये बेवा बेटी का कुछ आपस में चलता है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा अल्लाह की कसम, जो जायज तौर पर किसी को अपने साथ नहीं करना चाहता वो नाजायज तौर पर किसको अपने साथ करेगा, और इस कॉल पर पूरी जिंदगी कायम रहे और आपने सारी जिंदगी निकाह नहीं फरमाया, बगैर निकाह के आप रहे। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बेटी की किफालत की वजह से फिर आपकी जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आए। हजरत निजामुद्दीन औलिया जब आपको खिलाफत मिल गई और खिलाफत लेकर आपको दिल्ली सौंप दिया गया तो आप दिल्ली आए, तो आपने दिल्ली आने के बाद गयासपुर जो दरिया के किनारे एक मोहल्ला था गयासपुर, वहां पर आपने अपनी एक झोपड़ी बनाई और वहां पर आपने जमीन खरीदी। और जब आपने जमीन खरीदी तो वहां पर फिर लोग आकर के बस्ती बसाते चले गए और बस्ती होती गई। आजकल जहां हजरत महबूबे इलाही का मजार है उसका पुराना नाम गयासपुर है, और आप जो वो दरिया के किनारे ही रहते थे। दिल्ली वाले आपको बहुत सताते थे, आपके खिलाफ तकरीरें होती, बादशाहों को बहकाया जाता, तकलीफ दी जाती, और खास तौर पर एक मैटर में बहुत ज्यादा हजरत महबूबे इलाही को सताया गया। हजरत महबूबे इलाही महफिल सिमा के बड़े शौकीन थे, तो बादशाह को जा करके कुछ लोग बहकाते कि वो देखो हमेशा महफिल सिमा में झूमते झामते रहते हैं। तो जो गयासुद्दीन तुगलक था ये बादशाह को लोगों ने इतने कान भर दिए कि बादशाह ने चाहा कि हजरत महबूब साहब की महफिल सिमा को पर पाबंदी लगे और महबूब इलाही फिर सिमा में शरीक ना हो सके। हजरत महबूब इलाही की सिमा कैसी होती थी उसका जिक्र करते हुए हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी आला हजरत के पीर के पीर के पीर के पीर, इमाम अहले सुन्नत के पीरों के पीर होते हैं मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, और मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की किताब सबे सनाबिल शरीफ, इसी एक किताब की वजह से आला हजरत ने उनको मुजद्दिद लिखा है हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी को। और मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की वो किताब बारगाहे रिसालत में मकबूल किताब है। तो हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी लिखते हैं कि जब हजरत महबूब इलाही के खानकाह में सिमा होती थी महफिल सिमा, तो वहां पर जूतियों पे पहरा देने के लिए हजरत खिजर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, बड़े बड़े अकाबिर औलिया होते थे, बड़े बड़े अकाबिर औलिया और उलमा तशरीफ लाते थे, लेकिन बादशाह को बहका दिया हासिदीन ने। याद रखिएगा जिसके पास भी नेमत होगी उसके हासिदीन होंगे। हजरत महबूब इलाही इतना दिल बर्दाश्ता हुए हासिदीन से कि आपने फैसला कर लिया कि मैं दिल्ली छोड़ दूंगा, अब मैं दिल्ली छोड़ करके कोई भी कोने में कहीं भी पहाड़ में जाकर अपनी जिंदगी गुमनामी की गुजारूंगा और अब मैं दिल्ली में नहीं रहूंगा। तो एक मजसूब नौजवान बुजुर्ग आए और कहने लगे मोहम्मद अहमद जब चांद बनने का शौक था तो तूने इतना सोचना चाहिए था कि तुझ पे उंगलियां भी तो उठेगी। भाई जब ईद का चांद निकलता है तो लाखों उंगलियां उठती है वो चांद।

वो चांद वो चांद उस पे उंगली भी उठाते हैं और उसको देखकर ईद भी करते हैं। लोगों का हाल ये है जिस पे उंगलियां उठाते हैं फिर उसी को देखकर ईद भी करते हैं, लेकिन ये चांद का जर्फ है वो उंगली उठाने वालों को गम नहीं देता, उंगली उठाने वालों को ईद की खुशियां अता करता है। मुझ पे शाम में उंगलियां उठाने वालों, मेरी वजह से सुबह तुम नए कपड़े पहनोगे, मेरी वजह से सुबह तुमको इत्र मलना नसीब होगा, मेरी वजह से तुम्हें ईद की बरकतें नसीब होगी। तो उस मजदूर ने कहा, कभी कभी कोई दीवाना भी बड़ी भारी बात कह जाता है। मुझे इतनी लज्जत मिली ये सुनकर के जब मैंने पढ़ा हजरत महबूब साहब की जिंदगी में पढ़ा कि आप जब दिल बर्दाश्त होकर के आपने सोचा कि मैंने दिल्ली छोड़ देना, ये लोग बहुत सता रहे हैं, बड़ी बदनामी करते हैं। ये कहते थे कि वो तो फजर नहीं पढ़ते, हजरत महबूब इलाही पे इल्जाम ये था वो फजर नहीं पढ़ते, लेकिन महबूब इलाही कुछ नहीं कहते थे कि ठीक है जाने दो, ये बकते बकने दो इनको, क्योंकि कुछ लोग ऐसे नमाजी होते हैं ना कि साल में एक बार फजर में आएंगे, अगर उसी दिन इमाम साहब बेचारे गायब रहे तो होटल में पकड़े पूछे क्यों इमाम साहब आज फजर में दिखे नहीं, यानी अपनी फजर का चर्चा भी होगा और इमाम के नहीं आने का तस्खरा भी होगा। ये कौम का हाल है, तो ऐसे लोग हमेशा रहते हैं ना। तो उस वक्त लोग मतदान करते थे फजर नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते, उसी मोहल्ले के लोग हज के लिए गए, जब हज से आए तो फिर घर नहीं गए, सीधे महबूब साहब की खानकाह में आए, कदम पकड़ के कहते हैं माफ कर दिए, कहा कि भाई तुम हज से आए हो, हमें तो तुम्हारे आंख चुमने चाहिए, तुम्हारी आंखें चुमनी चाहिए, तुम हज से आ रहे हो। कहा नहीं नहीं, हम तो पूरे दिल्ली में ये कहते थे, शोर करते थे, वो फजर नहीं पढ़ते फजर नहीं पढ़ते। तो कहा क्यों नहीं पढ़ते, वो मस्जिद में दिखते ही नहीं है, लेकिन अब पता चला कि आपकी फजर कहाँ होती है। आप जब हरम में जाकर फजर पढ़ते हैं तो फिर आप घर की मस्जिद में और मोहल्ले की मस्जिद में कब नजर आएंगे। हमने हर दिन देखा मदीने मुनव्वरा की हाजिरी के वक्त कि आप हमें रसूलुल्लाह के हरम में नजर आए। हजरत महबूब इलाही का मकाम है, और ये जो महबूब होते हैं औलिया अल्लाह की भी कई कैटेगरी होती है। एक मकाम है मकाम महबूबियत, जिस वली को मकाम महबूबियत मिलता है उसकी पहचान होती है। क्या पहचान होती है पता है, उसके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती और उसके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती है, मकाम महबूबियत। ये शान हजरत महबूब सुबानी हुजूर गौस पाक की है और हजरत महबूब इलाही की है। ये बड़ा मकाम है। एक मर्तबा एक बुजुर्ग पहुंचे वहां पर महबूब इलाही के पास, कहा हजरत अतर कौन सा लगाया, बहुत खुशबू आ रही है। फरमाया ये अतार के बोस्तां की खुशबू नहीं है, ये अतार के बोस्ता की खुशबू नहीं है, ये दोस्ता के इश्क की खुशबू है, ये दोस्ता के इश्क की खुशबू है। और सूफिया ने लिखा अपनी किताबों के अंदर कि जिस वली को मकाम महबूबियत मिलता है जिंदगी में उसका जिस्म महकता है, बाद विसाल कफन महकता है, और फिर बाद में कब्र भी महकती है। आज भी हजरत महबूब इलाही के मजार पे हाजिरी दीजिए खुशू और खुशू के साथ। हम लोग जो हाजिरी देते हैं ना ये हाजिरी का तरीका है, और फिर उसके बाद ये फातिहा पढ़ ली राजधानी एक्सप्रेस की तरह, और उसके बाद दोनों हाथ रख के गए कब्र पर और पूरा वजन कब्र पे डाल दिया। ये है हमारे हाजिरी का तरीका। कितनी जिहालत में ये कौम जिंदगी गुजारेगी। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया वली के आस्ताने पर जाओ तो यूं हाजिरी दो, वो हयात होते जमीन के ऊपर तो कितना अदब करते, बस उसी तरह अदब करो। अब आप हम लोगों से हम आपसे मिलते हैं तो क्या कंधों पे पूरा वजन डालते जी, नहीं तो फिर कब्र पर पूरा वजन क्यों डालते। मैं हजरत मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह के संदल में गया तो जिसको देख रहा हूँ कि वो पूरी कब्र पे हाथ डाल करके जो वो पूरा वजन डाल रहा है, मैं क्या करते हो। और कुछ लोग नाराज भी हुए कि ये जब आते हैं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहते हैं, तो फिर गलत देखूं तो ना कहूं तो क्या होगा, ये कोई बात हुई। पूरा वजन कब्र पे डाल दिया। अदब से जो मिलता है, जो अदब से मिलता है वो मांगने से भी नहीं मिलता। अदब बहुत बड़ी चीज है। ठीक है औलिया अल्लाह की कब्र चूमना उसका तरीका है, हाथ मस करो चूम लो, या फिर अगर चूमना ही है तो फिर ऐसे हिसाब से चूमो कि आपके लब कब्र पर लगे, पूरा वजन कब्र पर। और आप जानते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन चीजों से जिंदों को तकलीफ पहुंचती है उन चीजों से कब्र वालों को भी तकलीफ पहुंचती है। इसलिए जब औलिया अल्लाह के मजारात पे जाया करो तो बहुत अदब का ख्याल किया करो, एहतराम का ख्याल किया करो।

0: अरे वलियों के मजार का अदब तो फरिश्ते भी करते हैं, औलिया अल्लाह के मजार का अदब फरिश्ते भी करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों के मजारात का अदब करें, अदब से जाएं। हो सके तो हाजिरी का तरीका ये, कदमों की तरफ से जाएं, सलाम कहें इस तरह कि वो सलाम सुन रहे हैं, खुशू खुशू के साथ सारे वसवसात ख्यालात निकाल दें, और जितनी देर तक ये दिल जमता है, तबीयत जमती है, दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़े, हो सके तो 11 मर्तबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ें, और चेहरे की तरफ खड़े होकर के दुआ करें। उनके वसीले से अल्लाह से मांगे, ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि उनके वसीले से अल्लाह से मांगे। लेकिन अगर उनको अल्लाह का बंदा समझकर डायरेक्ट उनसे भी मांगे कि अल्लाह की अता से इज्जत से ये मुझे अता करेंगे, तो भी मांग सकते हैं। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों तो बात चल रही थी उस मजजूब की कि उसने कहा मौलाना निजाम जब तुमको चांद बनने का शौक था तो उस वक्त तो तुमको सोचना चाहिए था कि चांद बनोगे तो उंगलियां तो उठेगी, अब जब के चांद बन चुके हो तो उंगलियों से डरते क्यों हो, और जंगलों बियाबान में जाने की बातें क्यों करते हो, यहीं पे रहो और लोगों को फायदा पहुंचाओ, यहीं पे रहो करो, लोगों को बदलने की कोशिशें करो। तो हजरत ने फिर बाहर निकलने का और दिल्ली छोड़ने का इरादा तर्क कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक, इस बादशाह ने आपके कत्ल का फैसला किया कि मैं निजामुद्दीन को कत्ल कर दूंगा। हजरत मौलाना रुकनुद्दीन महबूब इलाही से बहुत प्यार करते थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो मौलाना निजामुद्दीन को समझाएंगे। अच्छा, ये निजामुद्दीन आपको लकब कैसे मिला वो भी थोड़ी में एकदम शॉर्ट में सुन ले, टाइम खत्म हो गया लेकिन सुन ले। फरमाते हैं कि मैं रास्ते से जा रहा था, अचानक किसी ने कहा मौलाना निजामुद्दीन, पलट कर देखा तो कोई नहीं था। फिर उसके बाद से जिसको देखो मुझे मौलाना निजामुद्दीन कहता, निजामुद्दीन कहता, निजामुद्दीन। ये जो अलकाबात होते हैं ना, खुद से कोई गढ़ता है तो बाद में खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब गैब से मिलते हैं ना तो फिर वो कयामत तक बाकी रहते हैं। निजामुद्दीन औलिया, ये गैब से मिला आपको लकब। तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह से रुकनुद्दीन, मौलाना रुकनुद्दीन बहुत प्यार करते थे, तो इन्होंने सोचा यार ये सेमा सुनते हैं, सेमा सुनना कोई फर्ज वाजिब तो नहीं, इनका शौक है और एक जायज कसम है, उनको जाके समझा देते हैं कि भाई इसके बाद तुम सेमा नहीं सुनना, क्योंकि खामखा बादशाह कत्ल कर देगा तो अच्छा नहीं होगा ना, इतने बड़े बुजुर्ग को कत्ल करेगा। तो जैसे ही हज़रत महबूब इलाही ने कश्फ से मालूम किया कि मौलाना निजामुद्दीन मुझे समझाने आ रहे हैं, इन्होंने फौरन कहा कि चलो सीमा की महफिल मुनक्कित करो, सजा दो महफिल, सजा दी जाए। जब कहीं से भी नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरे दीवाने तेरी महफिल को सजा लेते हैं।
1: आज हम खिराज तहसीन, खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं एक वली कामिल हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वैसे तो बहुत मुरीदीन और चाहने वाले थे, यूं तो सभी आपको अजीज थे, लेकिन इनमें कुछ असहाब आपके बहुत ख़ास थे। इनमें एक हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का नाम पेश पेश है। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के बीच जो मोहब्बत थी, आज ये मोहब्बत पीर मुर्शिद का हवाला है।
0: ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही रहमतुल्लाह का वाक़िया मुझे याद आ रहा है। आप बीमार हो गए तो आपको बताया गया कि एक गैर मुस्लिम है जो कुछ पढ़ता है, कुछ दम करता है, एक गैर मुस्लिम है जो अपना कुछ कलाम पढ़ता है, दम करता है, और सुना है कि उसके दम में बड़ा असर है, जो कुछ भी वो पढ़ता है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके पास चले गए, उसने कुछ पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, अब फौरन से एहतियाब हो गए, फौरन से एहतियाब हो गए। अब एहतियाब होते हैं तो फरमाते हैं तेरा कौन सा अमल है जिसकी वजह से तूने जो पढ़ा है मैं ठीक हो गया। अब कोई समझ सोच सकता है कि अल्लाह का वली किसी ऐसे बंदे के पास क्यों जाएगा, या आपको पता चल जाएगा क्यों जाएगा। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही क्यों गए थे, फरमाया तूने क्या किया, तेरा अमल क्या है, तेरा मुजाहदा क्या है, तेरी मेहनत क्या है, तू क्या करता है जिसकी वजह से तेरी जुबान में ऐसी तासीर है कि तूने कुछ पढ़ा मैं ठीक हो गया। उसने कहा मसला यह है, मैं हमेशा अपने नफ्स की मुखालफत करता हूँ, मेरा नफ्स जो कहता है मैं उसका उलट करता हूँ। नफ्स कहता है ठंडा पानी पी मैं गर्म पीता हूँ, नफ्स कहता है चावल खा मैं रोटी खा लेता हूँ, जो नफ्स कहता है उसकी जिद में उसका उलट।

करता हूँ तो इतनी तासीर पैदा होगी, यही मेरा मुजाहदा है। हाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अच्छा ये बात है, आपने उसके कान में कुछ कहा, कान में कुछ कहा, एक जुमला कहा, फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा, फिर जो कहना था वो उसी ने फिर कहा, फिर वली ने और कुछ नहीं कहा, निगाहे वली में सीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, कान में कुछ कहा, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलिमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मुरीदों ने पूछा महबूब इलाही आप तो इलाज कराने के लिए गए थे, ये क्या हुआ, उसके कान में क्या कहा, हमें क्या हाजत कि हम किसी के पास जाके इलाज कराएं, हम तो इलाज करने के लिए जाते हैं, इलाज क्या है। मुरीदों ने पूछा क्या कहा आपने, उसके कान में क्या कहा, हाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही फरमाते हैं उसने कहा मैं अपने नफ्स की मुखालफत करता हूँ, जो नफ्स कहता है उसका उलट करता हूँ, मैंने कान में कहा, इस्लाम लाने का जी चाहता है, मुसलमान बनना चाहता है, कहा नहीं नहीं नहीं मुसलमान नहीं बनूंगा, कहा नफ्स का उलट कर, नफ्स कहता है उसका उलट कर, फौरन मुसलमान हो गया, फौरन कलमा पढ़ ले। तो ये औलिया का तरीका है।

हज़रत महबूब इलाही का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये आलम था कि विसाल से कुछ दिनों पहले ख्वाब में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि निज़ाम तुमसे मिलने का बड़ा इश्तियाक है। इस ख्वाब के बाद सफर आखिरत के लिए बेचैन रहे। वफात से 40 रोज़ पहले हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खाना पीना तर्क फरमा दिया और बराबर आंखों से आंसू जारी रहते। कभी खाने के लिए इसरार किया जाता तो फरमाते कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुश्ताक हूँ, मुझे दुनिया के खाने से क्या गरज। और जब आखिरी वक्त में आप बीमार हुए तो जब आपको दवा दी गई तो आपने इरशाद फरमाया, दर्दे मंदे इश्क करा दवा बजुज दीदार नेस्त, यानी इश्क के दर्दमंद के लिए सिवाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के और कोई दवा नहीं।

0: अलाउद्दीन खिलजी हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा की बारगाह में हाजिर होने के लिए तरसता था कि मुझे हजरत निजामुद्दीन औलिया के हुजूर हाजिर होना नसीब हो। लेकिन आप उसको कहते थे, फकीर की खानकाह के दो दरवाजे हैं, अगर तू एक दरवाजे से आया तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा, और अगर तूने ज्यादा तंग किया तो मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, अल्लाह की जमीन बड़ी वसी है, तेरा वतन तेरा मुल्क छोड़ जाऊंगा। एक दिन उसने आपकी खानकाह के अंदर अचानक पहुंच के आपकी खानकाह के अंदर जाना चाहा, तो आपने खादिमों से कहा दरवाजे बंद कर दो, तो दरवाजे बंद कर दिए गए। बादशाह समझा कि ये इतने पक्के लोग हैं फकीर कि मर जाएंगे दरवाजे नहीं खोलेंगे, तो कुछ तो खून होगा। उसने कागज के एक टुकड़े पे लिखा और खादिम के जरिए हजरत को पहुंचाया। लिखा ये कि क्या ये क्या बात हुई कि बादशाहों की चौखट पे भी बवाब चौकीदार और फकीरों के दरवाजों पर भी बवाब, फर्क क्या हुआ शाही में और फकीरी में? तो हजरत ने कागज के टुकड़े की पुश्त पर लिखा, फर्क यह है कि बादशाहों के दरवाजों पर जो बवाब होते हैं वो फकीरों और साइलों को रोकने के लिए होते हैं, और फकीरों की चौखट पे जो बवाब होते हैं वो बादशाहों को रोकने के लिए होते हैं। उसने कहा, हजरत अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी खानकाह की ज़ियारत कर सकता हूँ। आपने कहा जाओ कर लो। वो गया, खानकाह देखी, तो लंगर खाना देखा, मुख्तलिफ जगह देखी। जब अस्तबल में पहुंचा, घोड़ों का अस्तबल था बहुत बड़ा हजरत निजामुद्दीन औलिया का, तो जब वहां पहुंचा तो क्या देखा कि घोड़ों की जो मेखे हैं, किले जो हैं, वो चांदी के हैं, और जिन जंजीरों और संगलों से उनके पांव बांधे हुए हैं वो सोने के। तो बादशाह को फिर शरारत सूझी, तो उसने फिर कागज के टुकड़े पे लिख के हजरत को भेजा, ये क्या हुआ, बादशाहों के पास भी सोना और फकीरों के पास भी सोना चांदी, तो फर्क क्या हुआ बादशाहों और फकीरों में? तो शेख ने उसी कागज के टुकड़े की पुश्त पर लिखा, फर्क यह है, बादशाह खजानों में संभाल के रखते हैं, फकीर घोड़ों के कदमों में डाल के रखते हैं।
1: सामीन, सवाल खैर प्रोग्राम का मुकर्रर वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के दिन सुबह की नमाज आपने अदा की, और जब आफ्ताब तुलू हुआ तो आप अपने खालिक कायनात से जा मिले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपका मज़ार पुरनवार आज भी दिल्ली में मरजाए खलाइक है। किसी महबूब की तुम से सिवा क्या दिल रुबाई हो, किसी महबूब की तुम से सिवा क्या दिल रुबाई हो, कि महबूब हो ऐसे कि महबूबे इलाही हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हम सबको ताहयात औलिया कराम से निस्बत उल्फत मोहब्बत रखने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुमामीन। अगली मुलाकात तक अनुर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

मनोहर काल विभूषण निरत चलंचल भुजंग नर्तन नित्तक नित्तक ताम तगतै तगतदि मिदियद तगताकित तक जग त्रिग जग नंदम तक जग त्रिग जग नंदम यमुना तडाक तुंग तरंगम हिमगरस्तिमित रमित

शक्ति। मंगलवार 6 अक्टूबर दिन के 10:45 हो चुके हैं। रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का अभिवादन, आप सबका स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम जुड़ चुके हैं श्रोताओं, और अभी से लेकर दिन के 11:30 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। श्रोताओं, भक्ति सिर्फ मंदिर में जाकर पूजा करना या मंत्र जप करने का नाम नहीं है। भक्ति अपने आप में एक भावना है, विश्वास है, परमात्मा के प्रति हमारा जो है संबंध है, जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर को याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और अपने कर्मों को उन्हें समर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन में भक्ति का प्रकाश आता है। भक्ति हमें अंदर से शांति और संतुलन प्रदान

जी हाँ, हर कोई चाहता है उनके जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाए, सभी संकट दूर हो जाए, सभी कष्ट दूर हो जाए और हर कोई जो है एक सुखी और समृद्ध जीवन को व्यतीत करे। लेकिन कभी कभार जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा समय में ईश्वर पर विश्वास हमें अंदर से मजबूत बनाता है, सशक्त बनाता है। जो होता है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है ये कहकर हम जो है चिंता से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर का हाथ हमारे सर पर सदैव है और कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमारी जिम्मेदारी ले रखी है। इसलिए जब भी हम अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को ईश्वर पर छोड़ देते हैं और सच्ची श्रद्धा से ये विश्वास कर लेते हैं कि जो भी होगा ईश्वर देख लेंगे, वो हमारे लिए खड़े हैं, तो यकीन मानिए उसी समय हमारी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ अपने आप कम हो जाती हैं, या फिर ये कहे कि मन हल्का हो जाता है और मन में विश्वास बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चयन होता है हमें, जो हम अपने लिए कर सकते हैं कि कभी भी किसी भी तरह की परिस्थिति में हम क्यों ना उलझ जाए, बस हर एक परिस्थिति को ईश्वर को सौंप दे और विश्वास रखे कि जो होगा अच्छा ही होगा।

जी हाँ, जिनके मन में बसे श्री राम, उनकी रक्षा करे हनुमान। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को नमन करते हैं हम। उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे सदैव हमारी रक्षा करें, वे सदैव हमारा मार्गदर्शन करें। और देखिए ना, भगवान राम जी का नाम जहाँ पर होता है, हनुमान जी भी कहीं ना कहीं अपना आशीर्वाद वहीं पर अपने भक्तों को देते हैं। और भक्ति का एक सुंदर रूप कृतज्ञता भी है। हम अक्सर उन वस्तुओं के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन अनेक वरदानों को भूल जाते हैं जो हमें पहले से मिले हुए हैं। कभी कभार हमारा मन उन्हीं चीज़ों के पीछे दौड़ता रहता है और हम इन्हीं बातों की शिकायत करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। देखो ना, मुझे ये चाहिए था लेकिन भगवान ने मुझे नहीं दिया। मैं चाहता था कि मेरा जीवन ऐसा हो लेकिन मेरा जीवन इससे बिल्कुल विपरीत है। और हम सदैव शिकायत करते रहते हैं, रोते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, ये बगैर देखे कि जो मिला है वो भी अपने आप में वरदान से कम नहीं है।

भजमन राम चरण सुखदाई। ईश्वर का नाम होता ही है अपने आप में इतना सुंदर कि हमारे मन को शांत कर देता है। मन में आ रहे विभिन्न प्रकार के जो विचार होते हैं, जो हमें विचलित करते हैं, उन विचारों का आना जाना बंद हो जाता है। मन स्थिर होने लगता है, मन शांत होने लगता है। और मन जब शांत होता है तो मन में अच्छे विचार आते हैं, और अच्छे विचार उसे ही तो अच्छे कर्म होते हैं। और कहीं ना कहीं भक्ति की यदि हम बात करते हैं तो भक्ति का एक स्वरूप दया है, प्रेम है, क्षमा है और सेवा भी है। अगर हम मंदिर में जा रहे हैं पूजा प्रार्थना करने के लिए और सही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकार नहीं रहे हैं, तो फिर ईश्वर हमारी पुकार कैसे सुनेंगे। यदि अगर मन में किसी के प्रकार कोई किसी के प्रति अगर कोई नकारात्मक विचार है, या किसी चीज़ के बारे में हम नकारात्मकता से सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो फिर ईश्वर से की गई प्रार्थना भी अपने आप में व्यर्थ ही होती है। इसलिए मन का शांत होना, मन का स्थिर होना, मन में अच्छे विचारों का होना बहुत आवश्यक होता है।

कार्य को करने के पहले जब हम सोचते हैं तो उससे पहले मन में ये विचार आता है कि होगा या नहीं, हम कर पाएंगे या नहीं, क्या हम में उतनी क्षमता है, क्या हम में उतनी शक्ति है। हम अपने ही आप पर विश्वास नहीं करते हैं, हम अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते हैं और हमारा मन अंधकार से इस तरह से घिरा हुआ है कि क्या कहे। तो चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हर मन के अंधकार को मिटाए और हमारे मन को प्रकाश से भर दे।

भक्ति में शक्ति। श्रोताओं कहते हैं जब मन में ईश्वर का नाम होता है, कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी होती है और व्यवहार में मानवीय मूल्य होते हैं, तो हमारा जीवन स्वयं

प्रार्थना बन जाता है। इसलिए ईश्वर से सिर्फ हमें मांगना नहीं चाहिए कि वे हमें संकटों से दूर करें या हमारे जीवन को सुखद बनाए, बल्कि ईश्वर से ये भी कहना चाहिए कि हमारा मार्गदर्शन करें और जहाँ तक हो सके हम पर इतनी कृपा करें कि हम कभी भी गलत राह पर न चले। प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हर परिस्थिति का सामना शांति, साहस और विश्वास के साथ कर सकूं। तो चलिए, इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम के अंतिम चरम पर आ पहुँचे हैं। इस आरती के साथ हनुमान जी का नाम लेते हुए कार्यक्रम का समापन हम करने जा रहे हैं। आपने हमारा साथ दिया इस कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। 11:30 बजे से आप चाइनीज़ भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे, जिनकी प्रस्तुति में हमारी आपकी भेंट दोबारा होगी 12 बजे सुहाना सफर इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: पर मिला लीजिए दोपहर के 12 बज रहे हैं.
4: सुधे संक्षिप्त समाचार आपसे आज था. नमस्कार.
5: नमस्कार. 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को अब नई दिशा देने की जरूरत है. विश्व बैंक का कहना है कि गन्ना, कपड़ा उद्योग और पर्यटन पर आधारित आर्थिक व्यवस्था अपनी सीमाओं तक पहुंच रही है. रिपोर्ट में ज्यादा आमदनी देने वाली सेवाओं और डिजिटल सेक्टर को आगे बढ़ाने की सिफारिश है. इन सुधारों से 2050 तक जीडीपी में 7% की अतिरिक्त बढ़ोतरी और 37,000 से ज्यादा कुशल रोजगार पैदा हो सकते हैं. अब पानी की स्थिति, देश के जलाशय औसतन करीब 60% भरे हैं. पिछले साल इसी समय यह आंकड़ा 87% से ज़्यादा था. मौवा कुआ 36% और लानी कुलिया सिर्फ 6% पर हैं. हालात पर गौर करने के लिए आज मंत्री पैट्रिक आसियावादेन की अध्यक्षता में वाटर क्राइसिस कमेटी की बैठक लग रही है. कोटोगाफे में कुछ परिवार करीब 15 साल से पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं. मंत्री शकील मोहम्मद ने CWA और CB के अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा किया. अब समस्या के समाधान के लिए जरूरी कदमों पर काम हो रहा है. बच्चों के ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर मेटा की टीम मॉरिशस में. सरकार के साथ बातचीत में फर्जी खाते, ऑनलाइन उत्पीड़न यानी ऑनलाइन हैरेसमेंट, उम्र की जांच और खेल मोरिशस में कंटेंट की निगरानी पर चर्चा होगी. मंत्री अविनाश राम तोहल ने आपत्तिजनक कंटेंट को जल्द हटाने और पुलिस के साथ बेहतर सहयोग पर जोर दिया. खेती में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों और कैंसर के बीच संभावित संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन. WHO और FAO के सहयोग से इसकी तैयारी शुरू हो गई है. मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालय समिति ने इस मुद्दे पर अपनी पहली बैठक लगाई. और सड़कों पर तेज़ आवाज़ करने के लिए गाड़ियों के एग्जॉस्ट में बदलाव करने वालों पर कार्रवाई जारी है. जनवरी से अक्टूबर तक पुलिस ने 289 कॉन्ट्रावेंशंस जारी किए हैं. ऐसे बदलाव पर ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है. विदेश की खबरों में, भारत में मतदाता सूची में बदलाव को लेकर विरोध तेज. विपक्षी दल और युवा संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. चुनाव आयोग और BJP ने गड़बड़ी के आरोपों से इनकार किया है. फ्रांस में शिक्षा के लिए ज्यादा निवेश, पर्याप्त शिक्षकों और बेहतर स्कूल सुविधाओं की मांग को लेकर आज फिर बड़े छात्र प्रदर्शनों का आह्वान कर रही हैं. एक हफ्ते के आंदोलन में 190 छात्र घायल हुए हैं, जबकि जांच 5,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. और ब्रिटेन के RAF से अमेरिकी सैन्य विमान वापस अमेरिका भेज दिए गए हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके पीछे कुछ धमकियों का जिक्र किया. पेंटागन ने विमानों की वापसी की पुष्टि की है, लेकिन धमकी किस तरह की थी ये अभी स्पष्ट नहीं है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर. मामजल जान गुडलैंड्स में 75 ईयर्स ओल्ड के कुसीराज हलकोगी की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें ओमदेव के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल दिन के 10 बजे कल बुधवार 7 अक्टूबर को दिन के 10 बजे उनकी पत्नी शोभा उलकोगी के मकान मामजल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बागूश गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाए

0: गे क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: Your news on MBC Play and MBC.MU.
2: You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: तो चलिए चलते चलते हम भी आप पहुंचे हैं रेडियो मनोरंजन सुहाना सफर इस प्रोग्राम को लेकर। गुड आफ्टरनून, रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम है। मैं हूं समी और आप सबका साथ हम देने वाले हैं दोपहर के 2 बजे तक इन योर सुहाना सफर। सो हमें पता है कि आप बिल्कुल अच्छे हैं और इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं। तो बस आपकी इंतज़ार की जो घड़ियाँ है वो ख़त्म होती है, बस जुड़ जाइए हमारे साथ इन दिस सुहाना सफ़र। साथ मिलकर इस सफ़र को हम खूबसूरत बनाएंगे। और यहाँ पर जो है गाने से, इस खूबसूरत गाने से एक बेहतरीन शुरुआत हुई है हमारे इस प्रोग्राम की। तो चलिए ऐसा ही कोई गाना आप सुनना चाहते हैं, किसी के नाम करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। 4028070 है नंबर हमारा, साथ ही यू कैन व्हाट्सएप अस ऑन 5250620 पर। और आज है 6th of October, आज है 6th of October और बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर, आज इनकी जन्मतिथि है विनोद खन्ना साहब। आज ही की तारीख 6th of October 1946 को इनका जन्म

0: हुआ था तो इनको बिलेटेड इनको इनको हैप्पी बर्थडे इनके सभी फैंस की ओर से। ऐसे विनोद खन्ना साहब आज हमारे बीच नहीं है लेकिन इन गानों के जरिए आज हम इन्हें याद कर रहे हैं। तो चलिए कुर्बानी फिल्म का ये तराना विनोद खन्ना साहब के सभी फैंस के नाम हम करते हैं।
1: RM3 रेडियो।

0: सुहाना सफर
1: चले सुहाना सफर। इस प्रोग्राम में वीना जी न्यूवेल फ्रांस से हमारा साथ दे रही हैं और उन्होंने भी विनोद खन्ना साहब के गाने की फरमाइश की है, लेकिन जो फिल्म का गाना आपने मांगा है बॉम्बे 405 miles, वीना जी ये फिल्म के गाने हमारे पास नहीं है, तो अगर आप कोई और रिक्वेस्ट भेजती हैं तो हम इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अभी के लिए जो अगला तराना हम चलाने वाले हैं ये परवरिश फिल्म से लिया गया है, ऑब्वियसली इसमें भी विनोद खन्ना साहब नजर आए थे और गाना है हम प्रेमी प्रेम करना चाहें। गाना जाता है नुवेल देख कुवैत की साइदा जी आपके नाम, आपकी ओर से गाना जाता है इरफान और जोहान के नाम और नुवेल देख कुवैत के आपके सभी परिवार के लिए।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए आज विनोद खन्ना साहब का जन्मदिन है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लिसनर्स विनोद खन्ना जी के गानों की फरमाइश कर रहे हैं, तो इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी है, तो जितने हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं आप लोगों के इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे सभी लिसनर्स का शुक्रिया। लंच टाइम में जितने लोग जो है लंच टाइम से समय निकाल कर हमारे साथ कनेक्टेड है, आप लोगों को भी थैंक यू सो सो मच। और अगला जो तराना है हाथ की सफाई फिल्म का गीत होगा लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में, वादा कर ले साजना। और ये जो गाना है यहाँ पर इसकी फरमाइश आई है कट्रबोन से माला की ओर से, और कह रही कि विनोद खन्ना जी एक सुपर एक्टर थे और उनकी फिल्में बड़ी अच्छी थी। तो चलिए यहाँ पर ये जो अगला तराना है आपके नाम हम करते हैं माला जी, आपकी सभी फैमिली के लिए। और यहाँ पर जितने भी फॉलोअर्स हमारे साथ हमारे टिकटॉक लाइव पर जुड़ चुके हैं आपका भी वेलकम हम करते हैं। और चलिए खूबसूरत गानों का ये जो सिलसिला है इसे आगे ले जाते हैं यहाँ पर, और थोड़ी देर में आपके डेडिकेशंस को भी हम इंक्लूड करेंगे।

0: चलिए अभी के लिए तो 2 बजे तक हमारा और आपका साथ भी है यहां पर ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर सुहाना सफर।
1: सुहाना सफर
0: ये प्रोग्राम है। इस समय लंच करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच, बन अपेक्षी आप सभी को। बहुत सारे हमारे लिसनर्स और फॉलोअर्स काम करते करते लंच ब्रेक में हमारे साथ जुड़ते हैं, और चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। अगला तराना जो है इनकार फिल्म का गाना होगा, किशोर दा और आशा जी की आवाज़ों में। और इनकार फिल्म में विनोद खन्ना साहब नज़र आए थे। गाना जाता है यहाँ पर वीना जी आपके लिए, आपकी ओर से आपके हस्बैंड देव के नाम। इस समय किरण पुरी जी वैंकूवर कनाडा से हमारा साथ दे रहे हैं। गाना जाता है आप सभी के लिए। वी हैव जीजी लाल, नरिंदर कुमार, निंदी, कलाराम कारीगर, आप हमेशा हमारे सभी प्रोग्रामों से जुड़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी है। और यहाँ पर गाना चाहता है मिमी आपके नाम। वी हैव शानील सुल्ताना खेमराज जोशी, यानिश इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, तो यानिश आपको हैप्पी बर्थडे। फूफू दीवा आपके नाम भी ये अगला तराना हम करेंगे। लैला है, शहनाज है, सभी बड़े ही प्यार से हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। आपके इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और विनोद खन्ना साहब पर जितने भी गाने यहाँ पर चल रहे हैं, बहुत लोग इन गानों को पसंद कर रहे हैं। एंड रविंदर कामित है, वी हैव यादना। सुबी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हेलो सुबी जी। यादना

अगला गाना आपकी ओर से आपके हस्बैंड के नाम जिनको आप बहुत मिस कर रही हैं। केशनी कुमार जी, हेलो जी, कैसी हैं आप? विमला लक्ष्मण, कैसी हैं जी आप? विमला लक्ष्मण, ओके। एंड यहाँ पर रॉक गंगाराम जी, आपके भी मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सॉन्ग टू सनीचर फैमिली, सनीचर फैमिली एंड गंगाराम फैमिली, साथ में तोरा परिवार के नाम, अशोक के लिए भी, और आपका बाकी मैसेज हमें नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं, लहू के दो रंग। और राइट सुल्ताना जी, मौका मिलेगा तो इस गाने को थोड़ी देर में हम ज़रूर चलाएंगे। थैंक यू सुबी जी, नमस्ते आपको भी। हाय निशा, कैसी है आप? और चलिए यहाँ पर अभी के लिए इनकार फिल्म का ये गाना चल पड़ा आप सभी के लिए।

0: सुहाना सफर।
1: और चलिए सुहाना सफर इस प्रोग्राम में आपका साथ हमें मिल रहा है। और कभी कभार कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों बाद सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए आज कोई गाना ऐसा होगा जो आपने काफ़ी दिनों से नहीं सुना होगा और सुनना चाहते हैं, या किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं। आपको तो पता ही है सुहाना सफर इस प्रोग्राम में पुराने गाने हम चलाते हैं, तो कोई ऐसा तराना है जो आपके दिल के बहुत करीब है और आप सुनना चाहते हैं, तो बेशक आप अपने डेडिकेशन हम तक पहुँचा सकते हैं। अभी के लिए अगला जो तराना है प्रतिज्ञा फिल्म का ये गीत है, रफ़ी साहब की आवाज़ है, जो गाना है पिक्चराइज्ड हुआ था धर्मेंद्र साहब पर। और इस गाने की फरमाइश आई है माधुरी जी की ओर से। माधुरी की ओर से गाना जाता है परी साहिल एजे के नाम हमारे सभी लिसनर्स के लिए।

और हमारे तमाम फॉलोअर्स के नाम जो इस समय हमारे टिकटॉक लाइव से जुड़े हुए हैं, यही गाना हम डेडिकेट करते हैं राज जी आपके नाम, इंदिरा जी की ओर से राजेश उगाव के लिए, किरण परगस है, राजेन रघुपत जी हैं और यहाँ पर आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, वी हैव रेखा। और अगला गाना राज जुगलाल जी आपके नाम हम करते हैं बिल्कुल। और रेशमा जी है, हेलो रेशमा जी कैसी हैं आप, देन वी हैव क्यूटी, हीरो मूवी का गाना। और राइट, मौका मिला आरती जी तो इस गाने को हम ज़रूर चलाएंगे, अभी के लिए प्रतिज्ञा फिल्म का ये तराना हो जाएगा।

पर सुन रहे थे रफी साहब की आवाज़ में। और सुहाना सफ़र, इस सफ़र में एक के बाद एक हमारे फॉलोअर्स, हमारे लिसनर्स जुड़ते जा रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो सो मच। और चलिए यहाँ पर गानों का ये जो कारवां है इसे आगे ले जाते हैं। अगला जो तराना है राजा रानी फिल्म का गीत होगा, और लता जी और किशोर दा की आवाज़ों में ये जो गाना है इसकी फरमाइश यहाँ पर आई है ज्ञान बिहारी जी की ओर से, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान जी, इस गाने को डेडिकेट कर रहे हैं अपने सभी फ्रेंड्स के नाम। वी हैव सुनील, रानी, भामा, शीतल, वर्दा, सभी बिहारी परिवार के नाम। और ये जो गाना है ये पिक्चराइज्ड हुआ था राजेश खन्ना साहब और शर्मिला टैगोर पर। राजा रानी ये जो फिल्म है रिलीज़ हुई थी 1973 में। तो चलिए कोई खूबसूरत सा गीत, आप भी किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी की सालगिरह है, कोई ख़ास मौका है, तो चलिए उनके नाम कोई खूबसूरत सा गाना अगर आपके मन में है तो यू कैन सेंड योर मैसेज ऑन 5250-6200 पर। इस समय हम टिकटॉक पर लाइव है, वहाँ पर भी आप अपने डेडिकेशन हम तक पहुँचा सकते हैं।

और चलिए यहाँ पर सुहाना सफर में आज गानों का सिलेक्शन बड़ा कमाल का है, जितने भी डेडिकेशंस आप कर रहे हैं गाने एक से बढ़कर एक है। ऐसे में अगला ही गाने की ओर हम बढ़ते हैं, इम्तिहान फिल्म का ये जो अगला गीत है किशोरदा की आवाज़ में। ऑब्वियसली इम्तिहान इस फिल्म में विनोद खन्ना साहब नज़र आए थे और उनके साथ तनुजा नज़र आई थी। ये जो गाना है इसकी फरमाइश आई है फ्रांस से मानिता की ओर से, और मानिता जी प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रही हैं और विनोद खन्ना जी के गाने भी इनको बड़े अच्छे लगते हैं, तो ऐसे में ये गाना जाता है सैन जूलिया विलाश के से इनकी मामा सुमंती के नाम और सभी परिवार के नाम जो इस समय जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानिता जी यही गाना आपके नाम भी हम करते हैं। और यहाँ पर बड़े ही प्यार से बहुत सारे फॉलोअर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये गाना रेखा जी आपके नाम आपकी ओर से बेटी अवनी के लिए। राज सिंह जी है सुल्ताना जी गानों को बहुत पसंद कर रही है और अभी तक हमारे साथ जुड़ी है। वी हैव मिली सायरा बानू जी की ओर से गाना जाता है अब्दुल आपके लिए भी। गाने को हम डेडिकेट करते हैं राज सिंह जी आपके लिए भी।

0: सुहाना सफर।
1: चलिए इम्तिहान फिल्म का ये गाना बड़ा ही खूबसूरत था और इस समय बड़े ही प्यार से हमारे साथ किशन जी जुड़े हुए हैं। कह रहे कि आज घर पर है, रिलैक्स कर रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और गाने बड़े कमाल के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यस, आज विनोद खन्ना जी का बर्थडे है तो बहुत सारे हमारे लिसनर्स, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स उन पर पिक्चराइज्ड गानों की फरमाइश कर रहे हैं। पर अफसोस की बात है किशन जी, जो गाना आपने मांगा है वो हमारे पास नहीं है। हम

काफी देर से आपके गाने को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी के लिए जो अगला तराना हम चलाने वाले हैं, ऑब्वियसली लहू के दो रंग इस फिल्म का गीत है। ये भी विनोद खन्ना साहब पर पिक्चराइज्ड हुआ था। तो ये गाना आपके नाम, आपकी ओर से प्लीज़ जस्ट गिव द सरप्राइज टू कुणाल, ओके, विमल, नलिनी, सुनीता, सुलेना, शैली, सुधीर, मेधा, शैली एंड अदर्स जो इस समय हमारे साथ आई होप जुड़े हुए हैं और अपना नाम अपने डेडिकेशंस इस डेडिकेशन में सुन रहे हैं। सो किशन जी, इस गाने को आपके नाम करते हैं, उम्मीद है कि ये गाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। थोड़ी देर पहले किसी हमारे फॉलोअर ने इस गाने की फरमाइश की थी, हो सके तो लहू के दो रंग फिल्म का गाना चला दे। तो चलिए ये गाना आपके नाम हम करते हैं। सरोज जी, आप भी हमारे साथ कनेक्टेड है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तस्मीम जी, तस्मीम बंधु, थैंक यू सो मच। प्रेम, नमस्ते फ्रॉम डर्बन, कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक है। ये अगला गाना आपके नाम भी हम करते हैं, बांग्लादेशी गान नहीं, यहाँ पर बांग्लादेशी गाने नहीं चलते हैं, यहाँ पर हिंदी गाने चलते हैं। आप है एमडी हारून, कैसे हैं जी? कोतरेल से यहाँ पर अमृता अंचरज अपना जन्मदिन मना रही है, मामा देवंती की ओर से शुभकामनाएं। साथ में यशदेव है, अरविंद है, नितिन है, सभी की ओर से ढेर सारा प्यार और बर्थडे विशेज। आपके नाम और इसी गाने के साथ हम बढ़ेंगे एक बजे के समाचार की ओर और समाचारों के उस पार मिलेंगे हम आपसे सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम के सेकंड आवर में। दोपहर के 2 बजे तक चलने वाला है ये प्रोग्राम, तो ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहें ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: RM3 Radio.
1: सुनते संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार नीतू, शाश्वताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी सड़कों पर हाइब्रिड गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आम गाड़ियों से अलग हाइब्रिड गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है जो हाई वोल्टेज बैटरी से चलती है। इन गाड़ियों को सही तरीके से चलाने और उनकी अच्छी हालत बनाए रखने के लिए विशेष रखरखाव की ज़रूरत होती है। इस पर हम हमारे 6 बजे के समाचार में एक विशेष रिपोर्ट के साथ आएंगे। मॉरिशस में मधुमेह के खिलाफ एक नई पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य इस बीमारी से बचाव करना और इससे होने वाली जटिलताओं को कम करना है। गैर सरकारी संगठन ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ नाम की संस्था की इस पहल में समुदायों के साथ मिलकर काम करने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया है। संगठन का लक्ष्य 2035 तक अनियंत्रित मधुमेह के मामलों में 5% की कमी लाना है। इसके अलावा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए शोध भी किए जाएंगे ताकि उनकी ज़रूरत के अनुसार उचित कदम उठाए जा सके। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कल सोमवार 5 अक्टूबर को एबन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान संस्था की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। फिल्म निर्माण के 40 साल, देश की सेवा के 40 साल, MFDC की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर सिनेमा से जुड़ी कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इन गतिविधियों में सिनेमा वीक प्रमुख है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों और सेना के छात्रों के लिए कम कीमत पर टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। अलग अलग विषयों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा मॉरिशस में फिल्माई गई फिल्मों के विशेष प्रदर्शन और सिनेमा दौले विलाज यानी गाँव में सिनेमा परियोजना भी आयोजित की जाएगी। लेकिन इन सभी गतिविधियों में सबसे प्रमुख है नेशनल शॉर्ट फिल्म कंपटीशन 2026। ये प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है और इसमें 3 श्रेणियां होंगी, पारंपरिक फिल्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डॉक्यूमेंटरी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को कुछ समय के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद अब वे आकाशवाणी भवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च करने से रोक दिया। नेता वहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने जा रहे थे। ये मांग SIO यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विवाद को लेकर की जा रही है। करीब 1 साल से भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त पर देश की मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन को लेकर लगातार राजनीतिक दबाव बना हुआ है। इस प्रक्रिया को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों से डुप्लीकेट और अपात्र नामों की को घटाना और निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों से डुप्लीकेट और अपात्र नामों को हटाना और ये सुनिश्चित करना है कि योग्य मतदाताओं के नाम शामिल रहें। हालांकि विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस प्रक्रिया से योग्य मतदाताओं के मतदान के अधिकार से वंचित होने का खतरा है। ये विरोध प्रदर्शन SIO प्रक्रिया को लेकर जारी राजनीतिक विवाद और मतदाता पंजीकरण फॉर्म में कथित तौर पर बिना अनुमति बदलाव किए जाने के आरोपों के बीच हो रहा है। और भारत में ही रहते हैं, भारत में मानसून खत्म हो चुका है और बारिश की कमी का असर अब देश के जलाशयों पर दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र में सरकार ने 16 अक्टूबर से शहरी और ग्रामीण इलाकों में कम से कम 10% पानी की कटौती करने की घोषणा की है। सरकार ने इसका कारण

0: मॉनसून के दौरान कम बारिश और सूखे जैसी स्थिति का बढ़ना खतरा बताया है। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात में बांधों में पानी का भंडारण असमान बना हुआ है। दूसरी ओर कर्नाटक ने सूखे से राहत के लिए हजारों करोड़ रुपए की मांग की है, क्योंकि किसान और स्थानीय समुदाय पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद और नमस्कार।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: सफर।
1: लेकिन जिंदगी की सच्चाई मानो इस गाने में हमें सुनने को मिली। जिंदगी होती ही ऐसी है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी जीवन की सच्चाई इस तरह से दिखाती है कि जिंदगी जो है हमें छू जाती है। तो चलिए सुहाना सफर के इस सेकंड आवर में आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम हम करते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी थे, वहां पर भी आप सभी फॉलोअर्स का बहुत साथ हमें मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, यहाँ पर आज विनोद खन्ना साहब का जन्मदिन है, तो बहुत सारे हमारे लिसनर्स, हमारे फॉलोअर्स उनके गानों की फरमाइश कर रहे हैं। तो चलिए, आप भी कोई खूबसूरत सा तराना सुनना चाहते हैं, किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम 5250600 पर, साथ ही फ़ोन कॉल्स ऑन 4028070 पर। अगला तराना लावारिस फिल्म का गाना है, वेदना काट्रबोन से हमारा साथ दे रही है, गाना आपके नाम हम करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर ये गाना चल पड़ा।

0: सुहाना सफर।
1: यकीनन जिंदगी के इस सफर में कितने ही सपने हम बुनते हैं, कितने सपने ऐसे होते हैं जो पूरे होते हैं, कितने सपने ऐसे होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। लेकिन बात यह भी है ना कि जिंदगी की खूबसूरती कभी कभार सब कुछ मिलने में नहीं है, कुछ अधूरी बातें भी जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, है ना। चलिए अभी के लिए 1:24 ऑलरेडी होने को है और यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। जुर्म फिल्म का ये जो अगला तराना है, ऑब्वियसली जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। तो चलिए यहाँ पर बड़े ही प्यार से केविन की ओर से गाना जाता है उनकी वाइफ नेहा के नाम। और ऑब्वियसली विनोद खन्ना जी पर बहुत सारे गानों की आज फरमाइश हो रही, तो ये गाना भी इनके इन पर पिक्चराइज्ड है। इस गाने में विनोद खन्ना जी के साथ मीनाक्षी शेषाद्री नजर आई थी।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ, यहाँ पर सुहाना सफ़र ये प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पर इन सभी गानों के बीच आपके प्यार भरे मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। इस समय लामोरी से उषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है कि विनोद खन्ना जी के गाने चल रहे हैं तो उसमें उन्हें भी मन कर रहा है ये खूबसूरत सा तराना सुनने का। सो सत्यमेव जयते फिल्म का जो गाना होगा आपकी ओर से जाता है सभी जीवन फैमिली के नाम, वी हैव मधु परिवार एंड आश्री गादो परिवार के नाम और साथ ही सभी सीता परिवार के नाम जो लामोरी से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। प्रेमिला जी कटरबोन से हमारा साथ दे रही है, थोड़ी सी बीमार है, तो चलिए हम प्रे करेंगे कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। आपकी ओर से गाना जाता है सभी बिसेसौ परिवार के नाम, सभी देव नारायण परिवार के नाम। देन वी हैव फुलवंती जी जो वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है। आपने कहा मेम साहब फिल्म का गाना, लेकिन आपने गाने के बोल नहीं बताए तो हम समझ नहीं पाए आपकी रिक्वेस्ट को। तो चलिए ऐसे में ये जो अगला तराना हम चलाने वाले हैं फुलवंती जी आपके नाम और सभी बाल गोविंद परिवार के नाम करते हैं।

0: सुहाना सफर
1: चलिए देखते देखते एक बजकर 50 मिनट ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके हैं। सुहाना सफर ये जो सफ़र है बस और 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर रेशमा जी आप हमारे साथ जुड़ी हुई है, कहा कि हो सके तो दयावान फिल्म का गाना हो जाए। ऑब्वियसली चलिए ये गाना हम चलाएंगे। और यहाँ पर किशन जी आपके दोस्तों के नाम जो हमने डेडिकेशन किया था, जो उनके लिए एक सरप्राइज़ था, उन्हें सुनकर बड़ा अच्छा लगा, तो थैंक यू फॉर योर लवली मैसेज। और चलिए हमारी तो कोशिश यही होती है कि ये छोटी छोटी खुशियां हम आप तक पहुंचाते रहे, आपके डेडिकेशंस, आपके गानों को चलाकर, आपके अपनों के नाम को शामिल करके इस प्रोग्राम में। और मानिता जी आपका मैसेज हमें दूसरी बार मिला है, तो थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रही है और गाने कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया है, तो चलिए ऐसे में ये अगला तराना भी आपके नाम हम करते हैं।

0: चलिए आज भी बेहद और बेहिसाब प्यार आपका हमें मिला सुहाना सफर इस प्रोग्राम के अंतर्गत और इतने प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस इसी के साथ आज की हमारी मुलाकात खत्म होने को चली, जाते जाते ये आखिरी गाना आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करेंगे, उन सभी फॉलोअर्स के नाम हम करेंगे जिन्होंने टिकटॉक लाइव के जरिए हमारा साथ दिया। 2 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद रत्ना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे उड़ान की कहानी इस प्रोग्राम को, उनका साथ आप जरूर दीजिएगा। हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी, तब तक के लिए हमारी ओर से नमस्कार आप सभी को। हैव अ ग्रेट लिसनिंग ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।
1: सुहाना सफर। You're listening to RM3 Radio Man.

0: 95.6 East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
3: सिंधिया संक्षिप्त समाचार आपसे आशीता, नमस्कार आपको। नमस्कार नीतू शाह, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। मॉरिशस में मधुमेह के खिलाफ एक नई पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी से बचाव करना और इससे होने वाली जटिलताओं को कम करना है। ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ नाम की गैर सरकारी संस्था की इस पहल में समुदायों के साथ मिलकर काम करने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया है। संगठन का लक्ष्य 2035 तक अनियंत्रित मधुमेह के मामलों में 5% की कमी लाना है। इसके अलावा लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए शोध भी किए जाएंगे, ताकि उनकी ज़रूरत के अनुसार उचित कदम उठाए जा सकें। नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए परिवारों और स्थानीय लोगों को साथ जोड़ना, यही उस अभियान का उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत कल सोमवार शाम गजिदाओं सवालीजी में मशाल के साथ मार्च के दौरान की गई। इस मौके पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी मौजूद थी। गैर सरकारी संस्था अनुला सामुदायिक केंद्र में 10 सप्ताह तक हर सप्ताह 2 जागरूकता सत्र आयोजित करेगी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सत्रों को अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को जागरूक किया जा सके और नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से जोड़ा जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबेरिया में प्लेग पर शोध करने वाले एक अनुसंधान संस्थान के एक प्रयोगशाला कर्मचारी की बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। परिस्थितियां स्पष्ट नहीं की गई हैं। इसके बाद अधिकारियों ने दर्जनों लोगों को क्वारंटीन में रखा। रूस की स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी के प्रमुख भी इरकुत्सक क्षेत्र पहुंचे हैं। इस मौत के बाद सोशल मीडिया पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ी, लेकिन अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। और उधर भारत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को कुछ समय के लिए हिरासत में लिए जाने के बाद अब वे आकाशवाणी भवन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च करने से रोक दिया है। नेता वहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने जा रहे थे। ये मांग SIR विवाद को लेकर की जा रही है। करीब एक साल से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पर देश की मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन को लेकर लगातार राजनीतिक दबाव बना हुआ है। इस प्रक्रिया को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। आपको हम याद दिला देते हैं कि निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूचियों से डुप्लीकेट और अपात्र नामों को हटाना और ये सुनिश्चित करना है कि योग्य मतदाताओं के नाम शामिल रहें। हालांकि विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस प्रक्रिया से योग्य मतदाताओं के मतदान के अधिकार से वंचित होने का खतरा है। ये विरोध प्रदर्शन SIR प्रक्रिया को लेकर जारी राजनीतिक विवाद और मतदाता पंजीकरण फॉर्म में कथित तौर पर बिना अनुमति बदलाव किए जाने के आरोपों के बीच हो रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान की धन्यवाद और नमस्कार।
0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. पुराण की कहानी
3: उड़ान की कहानी कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आ पहुंची हूँ आज के इस नए कार्यक्रम को लेकर, जहाँ पर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। जो महिलाएं हमारे समाज में आज एक

0: ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी हैं और साथ ही साथ अपना सहयोग किस तरह से वे प्रदान करती हैं, कौन सी मुश्किलों का सामना करके वे आज यहाँ पर पहुंची हैं, मुस्कुराती हुई, इटलाती हुई, बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट को सजाए हुए, और आज वे हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं। तो चलिए आज हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम पहले बताना चाहेंगे हमारे मेहमान के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, मॉरिशस की एक ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जिसे हम सब जानते हैं, गीत गवाई, यूनेस्को द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हमारी एक ऐसी स्थानीय कलाकार जुड़ेंगी जिन्होंने कई सारे ऐसे गाने गाए हैं और आज बिल्कुल रेडियो पर उनके गाने बजते भी हैं, साथ ही साथ आज वे हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीरा दीनू जी। आइए बात करते हैं उनके साथ। मीरा जी, बहुत बहुत स्वागत बा।
1: नमस्ते। नमस्ते आपको।
0: और बहुत झूली लगत हवा।
1: धन्यवाद।
0: चला आज के कार्यक्रम में तो बिल्कुल हई तब बोलब जा कि तू एगो बहुत बढ़िया काम करत हवा, क्योंकि फासिल नहीं है क्यों, और गीत गवाई के एगो ऐसे तू स्तर संभल ले हवा जहाँ पर आज समाज में सब कोई तोरा जानेला, तोहर गीत सुनेलन से बहुत खुशियाली के साथ तू सब प्रोग्राम के एगो एगो दूसर लेवल पे ले जाला। तो आज के कार्यक्रम में शुरुआत करे के अगाड़ी पहले तो हमनी के हाई बतावा, कितना बरी से तू हाई काम करत हवा?
1: ढेर दिन से हम सीखले हैं गीत गवाई, लेकिन हमार अपन ग्रुप शुरू कर ले हैं तो ओकर बा छह बरिस से अपन ग्रुप शुरू कर ले हैं। आगे से तो दूसर दूसर ग्रुप में जात हली।
0: तो एगो एक्सपीरियंस मिला, और अब है काम के तू आगे बढ़ावत हवा, तो एगो बहुत गर्व महसूस हुआ था। और जैसे ते तोरा के सिखाई ले बा कुमाजा गीत गावे के सिखाई ला?
1: गीत गावे के तो छोटा से हम सीखली, गीत गाय के नाचे के छोटे से। तो जातली मामा के संग गीत गवाए में जब शादी होता है गांव में, तो जातली मामा के साथ, तो संगे चाची लोग फूफू लोग रहल, तो लोग संगे हम नाचब गाय से मौकर मतलब नहीं जाने थली कौन सी गीत
0: कौन सी गावा था
1: कौन गीत कहाँ पर गाय के ये सब मतलब नहीं जाने थली। जब एगो ग्रुप ज्वाइन कर ली, एगो डांस ग्रुप, तो प्रिसिया डांस ग्रुप ज्वाइन कर ली, तब गते गते सीख ली अपन से।
0: तो सब डांस ग्रुप के जो गीत रहल पारी रहल
1: नहीं, डिफरेंट एगो ग्रुप के डिफरेंट एक एगो गीत
0: दूसर मानिया
1: हर एगो ग्रुप के एगो मानिया बा।
0: हाँ, सब सुन के तू सीख गई?
1: हाँ, सीख ली। और ऐसे सीखते तो हम शुरू कर ली अपन गीत लिखे के।
0: अरे वाह,
1: अपन एल्बम भी निकल ली।
0: हाँ, जानी ला बहुत बहुत। अभी थोड़ा घड़ी में सुनाओ जा हमने के श्रोता लोगन के बहुत बहुत हला तोहरा गीत सुन ले है। बहुत अच्छा लगेला सुने के और नाचे के मन करेला, क्योंकि गीत एगो ऐसा चीज है जब तू सुन बा और तोरा जब नाचे के मन नहीं करे तब कौन फायदा बा, एगो गीत सुन के तोरा नाचे के मन करे। बहुत अच्छा। और काहे के गीत गवाई हमनी के मुरिस के एगो ऐसा कैसे बोलबा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, और आज सच में पूरा दुनिया भर में मॉरिशस जानल जाला अपन गीत गवाई खातिन, बहुत ही स्पेशल। तो चला आज के कार्यक्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ब से मीरा जी से जानब से, मीरा जी जैसे तब तू शुरुआत कर ले रहलन, तो कैसे तोहरा अपन परिवार से जब तू बोलन कि तोहरा गीत गवाई में बहुत रुचि बा, हये में तोहरा मन करता एगो कौये करे के, तब कोई तरह से नहीं बोलन कि नय तोहरा पढ़े के चाहिला आगे बढ़े के चाहिला?
1: नहीं, गीत गवाई तो शुरू कर ली अपन जब शादी हो गल था। शादी हो गल था में से मैं ओकर से आगे तो भजन कीर्तन इत्यादि सब करतली गांव में, तो वो रुचि रहल।
0: अच्छा,
1: रुचि रहल अपन में
0: संगीत से।
1: शादी करके गली तो हमार ससुर नहीं खुशी रहल जे नाचे के।
0: काहे के हिंदू समाज में तो है एगो टैबू नियर है, कहे के बहुत कोई खुशी नहीं रहे लंसा। हाँ,
1: शुरू में तो उतना खुशी नहीं रहा। लेकिन जब हम अपन ग्रुप बनैली पति के साथ में सहयोग मिला, और माता जी जो नहर और हमारे भाई जो नहर सबके सहयोग से शुरू कर लिया अपन ग्रुप। तो जब एल्बम निकली तब हमारे ससुर बोले कि ये हमारे
0: महसूस
1: जब हम के टेलीविजन में देखी नाचा था।

0: हमेशा पॉजिटिव रहे के
1: हाँ हाँ तो जैसे मीरा जी अभी थोड़ा घरी पहले तू बोलन कि तू अपन गीत खुद लिखे ल तो कैसे तोरा मन में आवेला एगो गीत लिखे के
0: आगे तो हम कीर्तन इत्यादि अपन से लिखत अली तो रुचि बा हमर में काहे कि हमर चाचा जो रहल वो गीत के लेखक रहल पिताजी जो रहन हारमोनियम बजावे तबला इत्यादि हमर हमनी के खून में बाटे हो
1: हाँ संगीत संगीत संगीत से जुड़ल तो कैसे कैसे मतलब कैसे चलावेला तो हर दिमाग में जैसे तू मान ला एगो घर के काम करत हो एक कुछ
0: चलावेला जैसे निकल ली काहे दिलवा लगेला मोर सैया संगे ओ तो हमर एगो संगतिया रहल जे एगो एगो अच्छा दोस्त रहल तो ओकर पर गीत निकल ली जे ओकर
1: सोच के
0: ऐसे ऐसे हम निकल ली और जो दूसरा गीत रहा तो हम अपन भौजी के सोच के ओकर पर निकल ली हमर सैया के निशानी
1: हाँ। तो मतलब ऐसे ऐसे कुछ अपन परिवार के देख के कहूं से तोरा एगो इंस्पिरेशन प्रेरणा मिल जाए
0: एगो पहला लाइन चलावेला तो वो पहला लाइन से तब तो गीत बनाएगा
1: मतलब सोच सोच के
0: अपने आप आवेला
1: एगो इमेजिनेशन कर चल ले आवेला तो हाँ ये बोलल जाला है अपन खयाशो हा तो अपन क्रिएटिविटी है में दिखावत और सच में बहुत बहुत कोई लोग है गीत के बहुत खुशी रहे लन सका है दिलवा लगे लग मोरा सैया संगे और देशवा विदेशवा है जो गीत है वो भी बहुत जोली गीत है बधाई तोरा बोलब जा जैसे तू बोलन मीरा जी पहला जब तू दूसर गोप संगे जात रलन करे तब कोनो प्रॉब्लम के फास कर ले रलन उ बेरा में मतलब मान ला जैसे भाई गीत गवाए के तो जैसे काम हुए तो 8 बजे के बाद शुरू होला रात के और देर रात ले चलेला 2 बजे 3 बजे ले चलेला तो उ बेरा में तोरा कोनो डिफिकल्टी के फास करे के पड़ल
0: नहीं कोनो डिफिकल्टी के फास नहीं करे के पड़ल तो काहे कि हमनी खुशी रही जा है काम के
1: हमनी
0: जाले ऐसा मतलब आमिजे होई
1: हाँ यानी एगो खुशियाली
0: के साथ
1: जितना जितना महिला लोग तोहर संगे हवन जितना सब कोई खुशियाली के साथ
0: जैसा हम काम करे जात हली पति के साथ वो हमके काम में छोड़े जात हल तो जैसे कॉल मिलल तो एगो प्रोग्राम मिलल चला जाए के हम टेलीफोने कर ली काम में जे हम काम में नहीं आवत है जाते प्रोग्राम
1: तोरा सिपोते करे
0: सिपोते
1: है बहुत अच्छा चीज है बहुत बहुत महिला लोग है ये प्रॉब्लम के बहुत फास्ट करे लग कि जहाँ पर घर परिवार से ओकरा सिपोत नहीं मिले मिसेल मत तू जैसे बोला था तोरा घर परिवार देने से
0: बहुत सहयोग मिला
1: तो मीरा जी हमने के है बोला जैसे एगो महिला हवन ओकरा सिपोत नहीं रही परिवार के तो कैसे मैडम लोग कैसे आगे बढ़ी प्रॉब्लम हो नहीं प्रॉब्लम हो तोहर देने में कौन सी बोलब
0: नहीं जे उ लोग के परिवार के सपोर्ट नहीं मिली जैसे कि हम बोला था कि पहला शुरू तो हमार ससुर नहीं खुशी रहल से मैं उ लोग के चाहला पैसे वगैरह करके
1: एगो एगो तनी धीरज धरे के
0: मतलब जैसे कि बोलब उ गते गते आए
1: और चाहिला को मजा समझे के काम करत हो हाँ। और कौन काम करत
0: कहे कि ये काम जोन करी ला जा नाचे के गाय के शादी इत्यादि वो एगो लाज के बात नहीं बा
1: नहीं करे सक बा
0: हमने धरी ला जा मतलब चाहिला सर उठा के निमन से कार्य के आगे बढ़ाए
1: के काहे के जो तू काम करत हो एगो एगो इज्जत के काम और है सब नहीं करे सकी सब कोई नहीं करे सकी अंसर और एगो काम तू करत हो सब कोई के मन में तू खुशियाली भरत हो और कैसे एगो शादी ब्याह जब शुरुआत करब त काहे पहला गीत गवाई रखे लंसर ताकि तू देवी देवता के याद करके धरती माँ के याद करके है सब जितना
0: न्योता दे के
1: और एगो संस्कृति के तू आगे बढ़ावत हो और संस्कृति के आगे बढ़ावे के काम जो बहुत कोई लोग नहीं करे नहीं सकेला करे और जैसे तू करत हो तो है में चाहिला तनी लामू डाले तनी प्यार से कर जस्ती अच्छा लगे काहे के नाचे गावे के और संगे संगे जहाँ पर तू गर्ल हो एगो गीत गवाई में हो जहाँ पर परिवार संगे घुल मिल के उनकरा भी

0: लचाई के खुशियाली बातें
1: कबो कबो तो हम उ परिवार के उतना नहीं जानी ला मैं जब जाइला सा हाँ। परिवार के
0: संगे हाँ।
1: के संगे हाँ। तो बाद में सब परिवार इतना खुशी हो जालन सा हाँ। कि बोले लन जा कि दूसर दूसर शादी हो
0: तो भेट आप सब
1: तोरे बोला जा
0: हाँ, काहे नहीं काहे के निमन से जब एगो काम करब तो हइए तोहर नाम बनावे लागे
1: हाँ।
0: तो चला आज के कार्यक्रम में देशवा विदेशवा ऐसन बहुत गीत मीरा जी निकलले हवन और आज हमर प्लेलिस्ट में उनकर खातिर उनकर ही गीत हम डलले हैं और हमनी के आज तकनीक पर हमनी के साथ देवत हवन यश संगे हवन उरुसा हमर प्रोडक्शन असिस्टेंट और साथ देवत हवन जिनेश हमर प्रोड्यूसर जे हई कार्यक्रम के तोहर ले पहुँचावत हवन सर तो जरूर उनकर सहयोग से एगो गीत सुनब जा और थोड़ा घड़ी में हम बतावत हई तोरा आज मीरा जी अकेले नहीं आल हवन उनकर टीम के एगो और ऐसन छुकड़ी एगो एगो जोड़ी मैडम आल हवन है जा पर जे हमनी के संगे बतियान सा भी थोड़ा घड़ी में तब बनल रहिए उड़ान के कहानी के कार्यक्रम के आगे बढ़ावब जा।

0: की कहानी,
1: उड़ान की कहानी,
0: उड़ान की कहानी कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं और मैं हूँ रत्ना। बिल्कुल आज हमारे साथ मीरा दीनू जी के साथ कुछ ऐसी प्यारी प्यारी हम कह सकते हैं सशक्त नारियां हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं और आज हमारे बीच है वर्षिका बुदन। आइए उनका स्वागत करते हैं। वर्षिका जी बहुत बहुत स्वागत बा। और आज के इस कार्यक्रम में आप आए, कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत खुश है, हो रहा है,
0: बहुत बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वर्षिका जी आप हमें बताओ, आप कितने साल से मीरा जी को जानते हो?
2: मैं बहुत साल से मीरा जी को जानती हूँ, लेकिन उसके साथ नहीं परफॉर्म कर रही थी।
0: ओके,
2: पिछले एक साल से परफॉर्म करने लगी हूँ। फिर इसके साथ बहुत बहुत मौके मिले, जैसे कि एमबीसी में डांस और भोजपुरी कल्चर, भोजपुरी का आकार, बहुत सारे मौके मिले,
0: बहुत सारे एक्सपोजर्स आपको मिले, बहुत ब्रेक मिले कह सकते हैं। तो पहले तो वर्षिका हमें ये बताओ, आपको गीत गवाई में इंटरेस्ट कैसे जागा?
2: जब मैं फॉर्म टू में थी तब से मैं गीत गवाई में जाती थी, डांस करती थी, मेरी मामू के साथ जाती थी और आगे आगे बहुत सारे ग्रुप में जाती थी। फिर
0: आपको डांस करने का शौक है? ओके,
2: मैं डांस मेरी पैशन है।
0: ओके ओके,
2: इससे मैं बहुत खुशी मिलती है। जैसे कि चाची के साथ जब जाती हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम भी मिले हैं घर पर, लेकिन चाची के साथ जाना बहुत पसंद है।
0: एक तरह से देखा जाए तो चाची आपको फुल सपोर्ट करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो आप उनके साथ रहकर बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिला।
2: हाँ, बहुत कुछ।
0: तो हम बोल सकते हैं मीरा जी तो हर संगे अभी तो हर जितना हाई ग्रुप जो ना अभी तू नवा ग्रुप जब बनाई ले हवा तो हाई ग्रुप में कितना और छुकरी बा?
3: आउरी तो एक सात गो छोकरी बा।
0: और वो ऐसे कैसे होला कुमार जतो हर संगे नाचे के गीत गावे के? अपन आप से आवेला या तू तोरा पड़ेला?
3: अपने आप से आवेला जा, काहे कि हम कबो कबो फेसबुक में डाली ला रिक्रूटमेंट, तो वो लोग हमके मैसेज भेजे लन जा, कबो रिक्रूटमेंट नहीं डाली ला
0: पहले
2: मैं नहीं जानती थी।
0: अच्छा,
2: फिर चाची के साथ जाके जब संध्या गाती थी तब सुन के
0: आपको राग आ गया?
2: हाँ,
0: राग आ गया और आपने सीखा। और जिस तरह से गीत गवाई में नृत्य परफॉर्म होता है, डांस होता है, तो आपको वो टिपिकल डांस कैसे आपने सीखा या देख देख कर आपने डांस करना शुरू किया? तो पहले क्या प्रॉब्लम्स आती थी वर्षिका?
2: पहले मैं नाच नहीं सकती थी ढोलक के साउंड पर।
0: ओके,
2: क्योंकि
0: बीट पर डांस करना बिल्कुल
2: मेरी कमर नहीं चाहती थी। फिर सीखते
0: प्रैक्टिस करते
2: तब
0: आपको आ गया। पर कभी ऐसा भी हुआ कि आप जब डांस करने जाते हैं तो लोगों की कोई कमेंट्स या कोई हम कहते हैं ना ट्रोलिंग करना या ऐसे कुछ, ऐसे कभी भी आपके साथ हुआ?
2: नहीं, जब चाची के साथ हूँ तब कभी नहीं।
0: बिल्कुल नहीं, मतलब आप एक तरह से आप में वो हिम्मत है।
2: हाँ, जहाँ पर जाती हैं सिर ऊपर करके जाती हैं और सिर ऊपर करके निकलती।
0: बिल्कुल, यानी एक तरह से आप अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हो। और ये बात का गर्व आप महसूस करती हैं। वर्षिका मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी इस बातों को सुनकर। और मीरा जी जैसे एगो बोलबा कि एगो ऐसन लेगजॉप है हमारे समाज के, जहाँ पर गीत गवाई के एगो ऐसन अमूर्त हमने के जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है ओकरा आगे लेके चले आवा था। और हमने के जितना छोकरी लोग काहे कि बहुत कोई बोले लन सा गीत गवाई एगो चीज है उ त चाची नानी लोग दादी लोग गावे लन सा, छोकरी लोग जवान छोकरी आज के जवान छोकरी लोग त नहीं।

0: करे लंच हई सब गीतवा नहीं सीखे लंच सर मैं जहाँ वर्षिका के देखत हई तो हमने के लगा था कि नहीं आजकल के जवान छोकरी लोग के भी हई में बहुत इंटरेस्ट था तो मीरा जी तोहर हियाँ कौन लाज के महिला हवन कौन लाज के छोकरी लोग हवन
1: साथ में तब 20 ans, 19 ans कोनो तल एकोलो जाला
0: यानी जवान जवान छोकरी हवन छोटा छोटा छोकरी लोग भी हवन तोहर संगे यानी वो खुशी हवन त मीरा जी हई हई जब तू गीत गवाई करेला त रोज बैठ के ओकर रेपिटिशन करेला या गीत गवाई के जब करब यानी मान ला एगो शादी बा तो शादी के अगाड़ी दू दिन अगाड़ी मिलकर करब कैसे कैसे करेला
1: नहीं शादी के समय तो हमने रेपिटिशन नहीं करी ला जा कबो कबो तो ऑन स्पॉट हमने एगो
0: इम्प्रोविजे
1: कर दिला ऐसा रिपीटिशन करी ला जा जमे जब एगो कॉम्पिटिशन आए तो एगो कल्चरल शो आए तब हमने रिपीटिशन करी ला जा
0: हाँ यानी अगर मतलब मान ला एगो शादी के रही तो वो तोहर याद बा और कैसे तू गीतवा मतलब कैसे मान ला भी जैसे जब एगो गीत गवाई के कार्यक्रम जब शुरू होला तो पहला कैसे ओकर कौन भजन गावेला कौन का लेते गीत
1: पहला शुरू तो हमने संध्या गाब सर संध्या पांच गो संध्या गाब जा तब पांच गो महादेव के गीत गाब जा तब पांच गो शादी के गीत 15 गो गाना सब
0: भगवान के
1: गाले
0: जा आवाहन करे
1: आवाहन कर ले जा तब शुरू करब जा एगो ढोलक लास्ट्रीमा के पूजा करे के ढोलक पूजाई होई तो सब लास्ट्रीमा के गीत गाब जा और एगो सुमिरन करब जा सुमिरन करके तब एगो सुहाग के गीत गाब जा
0: अच्छा
1: सुहाग के गीत तब धरती बांधब जा
0: धरती बांधे के मतलब कौन ची है
1: धरती बांधे के मतलब तो वो आगे धरती माँ से हमने परमिशन ले ला जा
0: कि आपको मजे तो हर तोहर पर हम एगो एगो कार्य करते हैं उसे
1: बोली ला जा के मोर पिठी रहिया सहाय धरती मैया वही से ओकर से परमिशन ले ला जा जे हमने तोहर पर गोर रख के नाचब जा
0: हमनी के रक्षा कर
1: हमनी के रक्षा कर जा
0: हाँ हाँ काहे के हई सब चीज के एगो सिग्निफिकेंस रहेला बहुत कोई लोग नहीं समझे लंस सोचे लंस की कौन ची करत हवा नहीं जाने लंस बहुत कोई जब एगो गीत गवाए में तू लेके जात हव अपन लइकवन के त नहीं समझे लंस और कोई कोई लोग नहीं जाने लंस की काहे धरती बंधाई के गीत गावे के जरूरी हो जाला काहे के हमनी के हिंदू धर्म जोन है एगो ऐसा धर्म है जहाँ पर हम सब चीज में भगवान के देखी लासा और सब चीज में ओकरा देख के हम गोर लगी लासा तो हैजा पर सच के जब तू बोला था वह लेस थ्रू मौ के भी पूजा करल जाला ढोलक के पूजा करल जाला और ओकर बाद में धरती के पूजा करल जाला और हैजा पर सब कोई के जितना तोहर संगतिया आल होवन ढोलकिया आल होवन ओकर के भी हम देखले हई गोर लगेला एगो परमिशन मांगत हव एगो नमन करत हव और एक दूसरे के सम्मान करके तब तू है गीत गवाई के आगे बढ़ावे में हाँ तो एगो बहुत बहुत निमन चीज जाने के कि काहे एगो संगीत के साथ तू आगे बढ़त हव पर है में भी एगो बहुत एक दूसर के मान करे के सम्मान के साथ ओकरा गोड़ लग के भगवान के याद करके तब कार्यक्रम के तू आगे बढ़ावेला तो चलो आज हमनी के संगे एगो और ईशा ओबिलक हमनी के साथ आल हवन अभी देखब सा थोड़ी देर में कैसे ऊ ढोलक बजावेलन सा कैसे गीत गावेलन सा तो आज के कार्यक्रम में थोड़ा घड़ी में भेटाब सा ओकर संगे एगो गीत के ब्रेक लेवब जा और हाजिर होवब जा उड़ान की कहानी में।

0: जी हाँ, उड़ान की कहानी में आज मीरा दीनू जी जहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं और उन्हीं की टोली की कुछ ऐसी नारियाँ, कुछ ऐसी सशक्त लड़कियाँ जो बहुत ही प्यारी हैं, मॉडर्न हैं, पर फिर भी हमारे गीत गवाई के इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत हिम्मत के साथ जुड़ी हुई हैं। अपने आप को इस ग्रुप में पाकर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस करती है। आज हमारे साथ ईशा ओबिलक भी जुड़ चुकी हैं और अभी थोड़ी ही देर में बिल्कुल ढोलक तैयार हो चुका है हमारे साथ। मीरा जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तैनात हो चुकी है, अभी थोड़ी ही देर में गाना सुनेंगे, पर उससे पहले आइए स्वागत करते हैं ईशा जी का। नमस्ते ईशा जी।
1: नमस्ते।
0: कैसी हैं आप?
1: ठीक
0: है। आप मीरा जी के साथ कितने सालों से जुड़ी हैं?
1: चार साल से।
0: और आपको अच्छा लगता है?
1: अच्छा लगता है, बहुत
0: अच्छा लगता है। शुरू में आपको डर लगा था?
1: हाँ।
0: आपको लगा था कि अब मैं कैसे करूंगी, डांस कैसे करूंगी, लेकिन आज कैसा लगता है?
1: बहुत अच्छा है, चाची मेरा बहुत साथ देता है,
0: बहुत हेल्प करती हैं आपका। और आपको भी गाना आता है, गीत गवाई का?
1: हाँ।
0: अरे वाह, आप नाचती भी हैं?
1: हाँ।
0: जैसे सिखा दिया मीरा चाची ने आपको, पूरा सिखा दिया।
1: हाँ।
0: तो चलो आज हमारे साथ थोड़ा सा आप गाएंगे? चलिए मीरा जी ढोलक लेकर बिल्कुल तैयार हो गई है और हम एक बहुत ही प्यारा सा एक टुकड़ा सुनेंगे।

0: मीरा जी कौन चीज सुनाई बा हमनी के
1: नाखों के फुलिया तोर कारण सजली रे मोहना।
0: ओहो जे लोग सुना था चलन तनी नाचे के ठुमका मारे के तैयार हो जाइया। बहुत बढ़िया मीरा जी के है गीत। और ढोलक पर हमनी के साथ दिया जा मीरा दीनू जी, संगे साथ दिया जा ईशा ओबिला और वर्षिका बुधन, जेकरा अभी कैमरा के सामने तो नहीं हवन पर तू सुन सकब वो लोटा बजावा था। चला आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ जा मीरा जी, तनी सुनावा हमनी के।

0: बहुत बढ़िया। और जितना लिनियजी, जितना पावर, जितना शक्ति हमने के महसूस हो लाइजा पर बैठ के, बस कि हम समझा था कुमा जाए हाई जन ढोलक हाई जन तोहर आवाज हाई में इतना ताकत रहेला कि कोई भी बैठे नहीं सकी चुपचाप से। जे शुरू कर देलक तो कोई भी ऐसे ने बैठे रही तो एक थपरे बजाई या कमर हिलाई या उठ के नाचे के शुरू कर दे। तो मीरा जी हमनी के हाई पहला तो बताव, जैसे कि हाई जब तब शुरू करलक, जब एगो आदमी फिल्म के गीत गावेला, एगो व्यक्ति फिल्म के गीत गावेला और हई जो तू गावत हवा, हई में कौन अंतर है?
1: अंतर है कि इमें ज्यादातर हमने के ओरिजिनल जो टेस्ट है वो ओकर में आप पाइबा।
0: हाँ, जैसे एगो भोजपुरी खड़ा बोली जो बोलबा वो हमने के जो भोजपुरी भोजपुरी भाषा जो है
1: हाँ, एगो अलग अलग
0: अलग वे अलग सच्चे के काहे के
1: अलग जोश बाइकर हाँ, में।
0: तब मीरा जी जे लोग हमनी के भी सुनत हवन, बहुत कोई लोग सोचलन सो हमनी के त आवाज अच्छा नहीं बा, हम त नहीं गावेला, हम त नहीं गावे सीखी, त कोनो मन करी कोई के जब भाई तोहर लेकिप में जुड़े खातिर ओकरा चाहिला एगो अच्छा आवाज होए के या कुछो संगीत के विद्या होए के या ऐसे में जुड़े सके?
1: हम त ई सब नहीं देखिला काहे के हम बहुत महिला के ट्रेन कर ले हैं जा जो कबो नहीं नाचे उ लोग में कादांस हुई नहीं बा। ऐसन महिला के हम जब ट्रेन कर ले हैं तो एगो प्लेजियर आवेला जे हम देखब जे उ लोग सीखले बा। और एगो हुक स्टेप बा भोजपुरी के गीत गवाए के हुक स्टेप बा जो हम सिखाएला, तब जब देखबा उ लोग के जो नहीं जानत है नाचे निमन से
0: हाँ।
1: अब जब उ लोग के देखबा नाचे तो एगो प्लेजी आवे
0: हाई जन हुक स्टेप हा, हम सीखब अभी तोरा घड़ी में काहे कि हमनी के हमर जो कमर है ना कमरा हो गल बा नहीं नहीं हिलेला। हाइये हम खोजत है सिखावे कोई हमनी के निमन एगो गुरु मिली, तो आज हमनी के मीरा जी मिल गल हवन। और आज मीरा जी से हुक स्टेप अभी थोड़ा घड़ी में हम सीखब जा, जबले तबले तू सुना एगो बढ़िया गीत और मीरा जी के आवाज में जितना भी गीत तोरा सुनैले है हमनी के त मन में एगो ऐसन गर्व उठता काहे कि एगो नारी जे बहुत सब कोई के नचावे, बोले ना कि एगो नारी में उतना सब कोई के उंगरी पे नचावे। आज मीरा जी हमनी के संगे स्टूडियो में उपस्थित होल हवन उड़ान के कहानी में, बहुत ही दिलचस्प ऐसा एगो व्यक्ति हवन। और जरूर हमनी के संगे ईशा उबिलक और वर्षिका बुदन हमनी के संगे संगे जुड़ले रहन। चलो अभी कार्यक्रम में आगे बढ़ब, से एगो गीत के ब्रेक लेब जा और हाजिर होब जा उड़ान के कहानी में।

0: उड़ान की कहानी। और आज हमारे साथ एक ऐसी स्थानीय कलाकारा जुड़ी हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर आज अपनी एक टीम खड़ी की है। और बिल्कुल महिलाओं के लिए आसान नहीं होता कुछ अपने बलबूते पर करना। और मीरा जी के संगे जानब सर, मीरा जी जब तू पहला दूसर सब लेके संगे गात रहलन नाचे जात रहलन और जब तू डिसाइड करलन कि अब हम करब अपन एगो लेकिन खड़ा करब, तो कैसे कैसे तोरा मन में आल एगो मोटिवेशन कैसे मिलल तोरा?
1: मुझे होली तो हमार सहयोग मिलल हमार पति से और हमार भाई से, जे बोलन जाते जे तू अपन एगो ग्रुप शुरू कर उसे
0: शुरुआत में जैसे तू शुरू कर लन तरह मिलल कोनो महिला संगे जे साथ दे तोरा?
1: हाँ, एक दू गो संगतिया मिलल जन हमारा सहयोग दिलन जा ओकर बलबूते। तो पहला शुरू हम एगो क्लिप डाली टिकटॉक पर, टिकटॉक पर एगो अभी एगो ग्रुप फॉर्मे नहीं करे लाली तो डाली टिकटॉक पर, तो गीत हुआ फेमस हो गल टिकटॉक पर। तब धीरे धीरे एमबीसी में प्रोग्राम रहल गीत गवाई के, तो ओकरा ज्वाइन कर ली, तो एगो प्रोग्राम कर ली एमबीसी में भाई धर्म के साथ। तो ओकर से जितना लोग देखलक यूट्यूब पर तब निमेरो सब रहल, तब शुरू कर लन जा
0: गत्ते
1: शुरुआत होल, तब शुरू कर लन जा टेलीफोने करे के, तब बुकिंग होल, तब ऐसे ऐसे
0: मिलेगा।
1: और हम दूसर सौते लोग के साथ भी
0: प्रोग्राम
1: करे तली, तो लोग भी हमरा सहयोग दिलन जा।
0: तो जैसे मतलब तू देखुआ से नहीं हुई?
1: नहीं देखुआ से तंको नहीं हुई, कहे कि हमार दिमाग में रहल कि एक दिन हम एगो बड़ा कलाकार बनब।
0: काहे कि बहुत कोई मैडम लोग मान ल जाएगो एगो काम में कबो नहीं रेसी होला, सिर्फ कोनो काम शुरू होला तो एगो नहीं कोनो काम नहीं चलेला,
1: नहीं चाहेला देखो गाजे होई के कबो लावी में चाहेला, नहीं देखो गाजे होई के चाहेला हौसला रखे के
0: एगो दूसर ऑप्शन हमेशा देखते रहे, खोजे खोजते रहे,
1: चाहेला आगे बढ़ के पैसे करके।
0: हाँ बिल्कुल, काहे के जीवन जो है फासिल नहीं है, सिर्फ जब तू खोजब एगो सीमा जब खोजब तोहरा लौकी
1: लौकी
0: लौकी। काहे के बहुत कोई लोग सोचे लन सा कि अब कौन चीज करब, काहे के ढेर कोई लोग बहुत देखो गाजे हो जाला एगो काम नहीं रेसी होला, काम आगे नहीं बढ़ेला, काम ठप पड़ जाला, तो ढेर कोई लोग बहुत नाखुश हो जाला। बहुत कोई लोग तो ऐसे ऐसे कांड कर देवे ला सा, ऐसा ऐसा काम कर देवे ला सा कि ओकरा नहीं नहीं सोचब कि ऐसन मोमो में कौन चीजों का दिमाग में आवता। और जैसे महिला लोग के तो जीवन उसे फासिल नहीं है, तो मीरा जी हमने के हाई बताओ, जैसे मान ला एगो छोकरी तो हर हियाँ आवता और तू बोला था जैसे ओकरा गीत गावे के नहीं आवता, नाचे के नहीं आवता, हई सब सीखे में कितना समय लगेला?
1: कोनो कोनो के तो हाली से सीख डालन सा, तो कोनो बात है जे तनी कुन लेता लेवे लन जा। हाँ, सब कोई के
0: तू कैसे एगो कैसे टीचर हो एगो डांट के सिखावेला कि बहुत प्यार से सिखा?
1: प्यार से सिखाईला हम, लेकिन जोन तनी कुन तेची हो वन जा तो चाहिला डांट के सिखाए के
0: चाहिला,
1: लेकिन उ डांट तक
0: बहुत प्यार से डांट,
1: प्यार से डांटीला।
0: काहे के नहीं गुरु जब नहीं डांट, गुरु के डांट जब ले नहीं पड़ेला तब ले शिक्षक जोन जोन विद्यार्थी हा उ नहीं सीखे सीखेलन सा, तो बाजीनास में बहुत कुछ चल जाला। और आज बिल्कुल गीत गवाई आज एगो ऐसन स्तर पे पहुंच गल बा जहाँ पर बहुत कोई लोग खुशी हवन सा। तो मीरा जी कबो तोर हम लोकाजो मिलल बा कि गीत गवाई के प्रेजेंटे करे के तोरा कोनो विदेश में भी तोरा कोनो ऑफर मिलल बा?
1: नहीं अभी तो विदेश वही तो हमार व्यू है, विदेश में एगो गीत गवाई प्रेजेंटे करे के, तो अभी तक
0: देखब सा काहे नहीं काहे नहीं कहा। आज तू राष्ट्र स्तर पर हो तो एगो दिन ऐसा चल आई, दूर नहीं बा दिन के जहाँ पर तू एगो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाके गीत गवाई के प्रेजेंटे करा था,
1: गर्व के बात हो
0: काहे नहीं, मोरिस खातिन है एगो बहुत बहुत बड़ा गर्व के बात है। तो मीरा जी तू एगो महिला हव गीत गवाई के काम करेला और ओकर अलावा तू दूसर कोनो काम करेला?
1: हाँ, एगो लाइब्रेरी में काम करेला, डायनामिक प्रिंटिंग में हौजा पर हम सिखते हैं।
0: हौजा पर भी एगो बहुत बड़ा जिम्मेदारी के काम है, काहे के फासिल नहीं है, तो कैसे बैलेंस करेला?
1: हम ओकरा फासिल
0: मतलब कैसे कैसे तू जान गल हव कहां कौन ची करे के कैसे काम करे
1: के जे हम काम करके आप त हम हमरा है बा करे के हव बा करे के त सब प्लानिफिए करिला
0: हां काहे के बिना प्लान के कोनो काम निमन से नहीं होला त जब तू गीत गवाई के काम करेला त रात के 2 बजे 3 बजे तक थक नहीं जाला तो दूसर दिन फिर उसे तोरा काम पे जाए के पड़ी कुछ काम कर कोचिंग करे के पड़ी तो कैसे सब बालों से करेला
1: नहीं तो हम खुशी है काम करे के जे हम काम नहीं करब तो हमरा
0: बीमार हो जाए
1: बीमार हो जाए हम यानी खुशी रहे हम मुमा करे के अपन काम करे के
0: काम करते रहे हाँ। के और कुछ ना कुछ काम करते रहिए हाँ। और मल्टी टास्किंग हो गल हुआ काहे के जहाँ एक हला तू गीत गवाई के काम करत हो काहे के हाई में भी बहुत अपडेट हो के बहुत जरूरी है नवा नवा गीत नवा चीज और जैसे लुगा पर मान ला भी तू एगो एगो लुगा से तो सगरो नहीं करे सकता जैसे तू लुगा अभी लेकिप के जब तोहर मान ला एगो 10 छोकरी लोग 10 लोग हवन तोहर लेकिप में तो लुगा कैसे तू डिजाइन करेला
1: डिजाइन तो हम ही करीला
0: अरे वाह
1: अपन डिजाइन करीला अपन फासों में अपन मॉडल यानी
0: एक हला हम हाई भी बोले सकब तू एगो डिजाइनर भी हो
1: हर यूनिफॉर्म के हम डिजाइन करीला जे हम एगो चीसी किनब तो ओका जे एगो साड़ी किनब तो हम ओकर में
0: कौन
1: डेकोरेशन आए कैसे डिजाइन करब तो ओ अपन से बनायला हम
0: हां मतलब ओ कच ओकर खाते
1: नहीं खुशी रहिला कि हम
0: पारे
1: पारे कोनो
0: यानी हाई मान ला एगो एगो लुगा तू सीले हवा और दूसर जो सीबा वो पारे ही नहीं रहे ला दूसर कली
1: दूसर कली ते हम खुशी रहे ला यूनिक
0: नहीं सच के बस कि हाई है रिप्रेजेंट करेला एगो लेकिप के जैसे सब कोई यूनिफॉर्म में रही तो सब कोई खुशी रहे लंसा और जब तू एगो शादी में जात हवा तो मतलब उन सब कोई के तू लोग देबा कि कौन कुलिया के लुगा पहने के कैसन पारे होई के आइजन तू निमन से माकियाज करत हो बहुत ग्लैमरस माकियाज बस कि एगो एगो व्यक्ति जब हम देखले हई गीत गवाई में जो जो मैडम लोग आवेलन सर जो महिला लोग आवेलन सर इतना जोली से साड़ी पहने लन सर इतना जोली से लासन बार सब इतना जोली से फूल सब डाल के तो हई के भी तुरंत तू ट्रेनिंग देवेला कि
1: हम बोली ला जे तू लोग अपन मांग टीका अच्छा से दलिया जाओ और ये चूड़ी भर चूड़ी भर हाथ चूड़ी और उन लोग के फूल सब निमन से
0: चाहिला
1: निमन से ज्वेली से कहे कि वो जो क्लियर हमने के देख ले बा वो खुशी रह लें जा कि ज्वेली आदमी ज्वेली छोकरी
0: ट्रेडिशन के संस्कृति के ओकर उस
1: ज्वेली से पारे होके
0: हां बस कि चाहिला कहे कि अभी हम एगो एगो नारी हई महिला हई और गीत गवाई में जहां पर तू नाच के नृत्य करके हई संस्कृति के प्रस्तुत करत हवा त नहीं चाहिला को मजा कोई के भी नजर में कोनो दूसर चीज हेलावे के बस हई एगो काम ह तू ओकरा पूजा मानेला पूजा मान के तू करत हवा त हई चीज संभाले के बहुत बहुत जरूरी ह और समाज में सब कोई कलिते तोरा देखता तोहर से भेंट करता के कौन चीज सोचता नहीं जनबा तो हई सब तू बहुत ध्यान से हई हाँ। सबके सब सबके ब्रीफिंग तू अपन लेकिप संगे पहिला करेला
1: हां अरे हम डिसिप्लिन भी डालीला अपन ग्रुप में
0: हाँ।
1: जे तू लोग के हई नहीं चाहेला करे के होने चले चाहेला सीधा साधा
0: हाँ डिसिप्लिने करे के हाँ कहे के हाई एगो लेकिप के रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तू ओकरा लेके आगे जात हवा हाँ। और जे दूर जाए के तू खोजत हवा तो हाई सब डिसिप्लिन तोरा चाहिला हाँ। फॉलो करे के
1: हाँ।
0: तो मीरा जी हमनी के ढेर महिला लोग हई प्रोग्राम के सुने के बहुत खुशी रहेलन सर जितना जितना

0: हमने के सुनत हवन देखत हवन हम हये पूछब हमर जितना महिला लोग हई मंच पर आल हवन तू एगो महिला हव तो हर दिने में महिला सशक्तिकरण कौन ची है
1: महिला तो उही तो एगो शक्ति
0: है
1: उही तो एगो शक्ति के रूप है तो उ जितना चीज सकी करे ओकर शक्ति से तो एगो महिला बहुत चीज सकी करे बहुत काम सकी करे वो अपन शक्ति से
0: हाँ। नहीं चाहिला सोचे के नहीं चाहिला नहीं सोचे सकब,
1: के हाँ। के हाँ नहीं सकब हमेशा हमार नित्य करे हमार छोकरी लोग से बोलीला कि कबो नहीं बोलिया जा कि हम ई नहीं सकब करे हमेशा पॉजिटिव रहे के जब तू नहीं जाने ले से मैं तू बोलिए
0: सीख के करियो हाँ
1: हम सकब करे
0: सकब करे
1: सकब करे और हम करब
0: करके दिखाओ अब हाँ काहे के नहीं चाहिला हई सोचे कि हम एगो महिला हई नारी हई हम बहुत कमजोर हई कहे के ढेर कोई महिला लोग हये से हये में रह जाला सोचब नहीं करे सकब नहीं करे कबो दिमाग नहीं करेला करे के देखे के काहे के हम हमेशा हये बोलीला कि एगो महिला जे एगो लइका के जीवन देवता एगो लइका के धरती पे लावता त कुछ भी करे सकी
1: कुछ भी करे सकी
0: तो आज के कार्यक्रम के बस हईजा पर समाप्त करब जा आज हमनी के संगे जुड़न मीरा दीनू और हम तो देखते देखते नहीं है सोच लिए एक घंटा कैसे बीत गल उनकर से बात करते करते बहुत अच्छा लगल और बिल्कुल हर सप्ताह उड़ान के कहानी में हमर समाज में ऐसा बहुत महिला लोग हवन जे बहुत काम करत हवन विकास की ओर बढ़त हवन परिवार के सिपोते करत हवन देश के सिपोते करत हवन समाज में नाम कमावत हवन और कोनो भी काम रही काम कोई भी छोटा नहीं होता बस हमारे उड़ान की कहानी उसे अलग बनाती है तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम के हईजा पर समाप्त करब जा मीरा जी के बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा और फेरो से भेंट आप सा और एकर से हमनी के जितना टेक्निकल टीम पर हमनी के संगे रहल यज साथ रहल उरुसा और जिनेश उनकरा भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा फेरो से भेंट आप सा एगो नवा उड़ान के कहानी के साथ तबले रत्ना को दीजिए अनुमति नमस्कार शुभ संध्या सभी को।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका के कारोबारियों का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों व्यापार और निवेश से जुड़े एक फोरम में

0: की शुरुआत आज सुबह हुई। कॉप 31 से पहले मॉरिशस और प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश समुद्र के बढ़ते जलस्तर के खतरे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। आज सुबह फिजी में आयोजित प्री कॉप में नेताओं के पूर्ण सत्र के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने छोटे द्वीपीय विकासशील देशों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु वित्त तक पहुंच सुनिश्चित करना और धरती के बढ़ते तापमान से होने वाले नुकसान को कम करना जरूरी है। मॉरिशस में 2024 के दौरान महिलाओं में कैंसर के 1891 मामलों की पहचान की गई। इनमें से 37.5% मामले स्तन कैंसर के थे। इलाज के साथ साथ मरीजों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहयोग देना भी बेहद ज़रूरी है। गैर सरकारी संस्था लिंक टू लाइफ मरीजों को ये सहयोग प्रदान करती है। पिंक अक्टूबर के इस महीने में संस्था लोगों को स्तन कैंसर की समय रहते जाँच कराने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। और अफ्रीका के आर्थिक भविष्य को लेकर कर व्यवस्था, निवेश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हुई। ये चर्चा डिलॉयट की टैक्स कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण के दौरान हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि कर व्यवस्था में सुधार से अफ्रीकी महाद्वीप की आर्थिक वृद्धि को तेज किया जा सकता है। वहीं मॉरिशस का लक्ष्य खुद को एक मजबूत वित्तीय केंद्र और नई टेक्निकों, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के रूप में और मजबूत करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के साइबेरिया क्षेत्र के इरकुस्क में प्लेग से 28 वर्षीय एक प्रयोगशाला टेक्नीशियन की मौत के बाद सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन किया गया है और कम से कम 5 अस्पताल बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब टूटने के बाद वह निमोनिक प्लेग से संक्रमित हुई थी। इस टेक्नीशियन के संपर्क में आए 200 से अधिक लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। इरकुस्क में सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी रद्द किए जाने की खबर है। निमोनिक प्लेग क्या है? यह प्लेग एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित पिसुओं के काटने या संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से इंसानों में फैल सकती है। निमोनिक प्लेग, जिसे फेफड़ों को प्रभावित करने वाला प्लेग भी कहा जाता है, इसका सबसे खतरनाक रूप है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसके लक्षण संक्रमण के बाद बहुत तेजी से सामने आ सकते हैं। कभी कभी 24 घंटे के भीतर इसमें सांस लेने में तकलीफ और तेज खांसी जैसे गंभीर लक्षण शामिल हैं। खांसी के साथ खून मिला बलगम भी आ सकता है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: सेंटर 94 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2 98.2 यू आर लिसनिंग योर आरएम3 रेडियो।

0: मंगलवार 6 अक्टूबर, आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं इस समय रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर। आपको ये भी याद दिला दें कि इसी कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे RM3 रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही सुपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। साथ ही इसका प्रसारण हो रहा है इस समय हमारे MBC प्ले ऐप पर भी। तो चलिए, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। और आज एक ऐसा विषय हम लेकर आए हैं जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल यानी कि कल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया गया। और टीचर की भूमिका की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस कल मनाया गया और हर एक व्यक्ति के जीवन में टीचर का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। 1994 से यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि किस तरह से जो है शिक्षकों के अधिकारों पर बात की जाए, उनकी जो जिम्मेदारियां होती है, उनकी जो परिस्थितियां होती है और किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से जो है उनके करियर को डेवलप किया जाए ताकि वो स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाए। और कहीं ना कहीं शिक्षा हमारे जीवन की नींव होती है। एक अच्छी शिक्षा हमें जीवन में बहुत दूर तक ले जाती है। और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्रीमती मीला धनुकचंद जी जुड़ी हुई है, जो खुद शिक्षा के क्षेत्र में 50 वर्षों से भी ज़्यादा का इनका अनुभव रहा है। आज वो रिटायर हो चुकी है लेकिन शिक्षा का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा है और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ और समाज में कई गतिविधियों में जो है शिक्षा को लेकर अपना योगदान आज भी देते रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीला जी, हमारे इस कार्यक्रम में आप जुड़ी। नमस्कार, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, बड़ी प्रसन्नता हुई और आपसे मिलकर और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सभी को सादर सप्रेम नमन है। मैं सोचती हूँ कि आज का विषय चिरकालीन विषय है क्योंकि शिक्षा की जो बात है वो सदा होती रहती है। मनुष्य चाहे स्कूल में जाए या कहीं भी हो तो वो सीखता ही रहता है प्रकृति से भी, जबकि स्कूल की कोई व्यवस्था थी ही नहीं, तब से भी मनुष्य सीखता ही आ रहा था। हालांकि वो उसको कोई नाम नहीं देता था। समुद्र के पास जाकर लहरों को देखकर घबरा जाना और ये सोचना कि अपनी सुरक्षा की आवश्यकता है, वो भी एक प्रकार की सीख थी। सो अनेक प्रकार से मनुष्य सदा सीखता ही रहता है।
0: बिल्कुल। और गुरुजनों की बात करें तो हमारी संस्कृति में सदैव गुरुजनों को एक उच्च स्थान दिया गया है। जिस तरह माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं, वैसे ही हमारे शिक्षक भी हमारे लिए जो है पूजनीय होते हैं और उनका सम्मान हमें सदा ही करना चाहिए। क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम यहाँ पर हैं। तो मीला जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी के विश्व शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत हुई या इसके बारे में सोचा गया?

0: बड़ा ही आपने बताया 1994, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 1966 में एक आपसी आईएलओ का आपसी उनकी एक मीटिंग लगी थी, जिसमें उन लोगों को लगा कि विशेष प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं संसार में, उन सब में से एक और है जो कि अध्यापक है और अध्यापनकार है, क्योंकि शिक्षा के बगैर मनुष्य जो है वैसा ही रहेगा जैसा कि उसने जन्म लिया, और शिक्षा के द्वारा उस प्रकार के समाज में रहने के बाद मनुष्य जो है बदलता है, परिवर्तित होता है, उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो पेरिस में उन लोगों ने एक अग्रीमेंट पर साइन किया, और वही जो है उसकी घोषणा आपने बताया 1994 में उसकी घोषणा हुई। तो इसका महत्व है, क्यों है? इसलिए कि कुछ भी कहा जाए, जितने भी एजुकेशन सिस्टम संसार में बनाए जाएंगे, जहाँ भी एजुकेशन होता है वहाँ पर दो की स्थिति अवश्य होती है, एक तो सीखने वाला जो कि विद्यार्थी होता है, और वो जो शिक्षार्थी होता है, माने कि शिक्षक जो पढ़ाता
1: जो
0: है,
1: पढ़ाते हैं।
0: दोनों हैं। तो चाहे वो बोलकर पढ़ा रहा है, चाहे वो अपने सामने एक पुस्तक लेकर कोई किसी प्रकार की शिक्षा दे रहा है, या मनुष्य किसी के हाव भाव को देखकर सीखता है, जैसे घर में भी बच्चे होते हैं तो
1: जी
0: माँ बाप को देखकर कितनी सारी चीजें अपने
1: बिल्कुल
0: आप सीख जाते
1: बिल्कुल
0: हैं। छोटी
1: बिल्कुल
0: सी बच्ची होती है, गुड़िया लेकर खेलती है, क्या खेल खेलती है कि घर है, खाना बना रही है,
1: हाँ,
0: गुड़िया को खिला रही है, क्या
1: क्योंकि
0: है ये
1: माँ को
0: ऑब्जर्व,
1: देख रही है
0: हाँ
1: ना।
0: माँ को देख रही है,
1: जी
0: तो वो सारा ऑब्जर्वेशन के
1: जी
0: द्वारा होता है। वैसे भी अगर आप साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो सर्वप्रथम हम जो कुछ भी ज्ञान अर्जन करते हैं वो देखकर ही होता है,
1: बिल्कुल
0: वो तो पशु पक्षी और सबका होता है,
1: बिल्कुल
0: पर उनका एक लिमिट होता है। और मनुष्य के पास, क्योंकि हमारी बुद्धि है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन शक्ति है हमारे मस्तिष्क में, इसलिए कहते हैं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिमाग उसके पास है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वही है,
1: वही
0: क्योंकि
1: है।
0: वो अपने नेचर के अनुसार नहीं जीता है, वो तो देख देख कर जीता है। और इसकी खूबी भी है और इससे परेशानी भी है कि दूसरों को देखकर उनकी तरह जीना, मतलब कि आप वो हैं ही नहीं जो कि आपको होना चाहिए और जो आप हैं वास्तव में। तो व्हाट वी आर उसको मानकर चलने में और उसके साथ जीने में मनुष्य जो है कृत्रिमता से दूर हटके जो है अपने आप अपने आंतरिक शक्तियों को उभार सकता है।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए घर में माँ बाप को देखकर बच्चा बहुत कुछ सीखता
1: बहुत
0: है,
1: कुछ सीखता है।
0: समाज में भी देखकर बहुत कुछ सीखता है। और
1: जी
0: आज की बात मत बोलिए, आज तो हमारा गुरु जो है इंटरनेट गुरु है, सो तकनीकी और भी आगे बढ़ गई है,
1: जी
0: और इंटरनेट का जमाना था हम कह
1: जी
0: सकते हैं, अब तो एआई हमारा सर्वे सर्वा गुरु है। लोग करते क्या है, एआई को टैप करते हैं और सारा ज्ञान, क्यों हम उसको सर्वे सर्वा गुरु बोल रहे हैं, क्योंकि सारे ज्ञान का उसको संयोजित करके फिर उसमें से छांट करके वो आपको वही उत्तर देता है जिसको जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो
1: बिल्कुल
0: आप समझ सकती हैं कि हमारी तकनीकी कहाँ पहुंच चुकी है। और ये हमारे टीचर्स, हमारा जो अध्यापकों का जो समूह है, अध्यापकों का जो संसार है, उसको
1: जी
0: बहुत बड़ा चैलेंज देता है,
1: हाँ
0: क्योंकि उसके पास परफेक्ट आंसर्स है ढूंढा हुआ की, जो हमारे अध्यापक होते हैं उनको तो हर चीज के लिए सोचना पड़ता है।
1: तैयारी
0: पर
1: करनी पड़ती
0: हाँ,
1: है।
0: पर एक बात है,
1: हाँ
0: अध्यापक आपको ज्ञान देगा, देखिए माता पिता तो ज्ञान देते ही हैं, अध्यापक आपको ज्ञान देता है, जीना सिखाता है, और जीना सिखाने के साथ साथ वो धर्म की ओर, माने कि किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, वो सारा कुछ धीरे धीरे आप में वो डालता है, फूंकता जाता है आपके कानों में, आपके मस्तिष्क में, आपके व्यवहार में,
1: आपके व्यक्तित्व का निर्माण
0: आपके
1: करता है।
0: एकदम, कि आप भविष्य में किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर
1: बिल्कुल
0: सकेंगे उसके लिए आपको तैयार करता है। पर आज के संदर्भ में तो चैलेंज बहुत बड़ा है।
1: बिल्कुल। और आपने एआई की बात की, कहीं ना कहीं आजकल के बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन यानी कि जो सारी जो उन्हें चीज़ों की आवश्यकता है, किसी भी सर्च कर रहे हैं कोई टॉपिक पर, वो जो है ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो ये भूल जा रहे हैं कि एआई जो है या फिर ये जो टेक्नोलॉजी जो, वो सिर्फ उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो ज्ञान नहीं है जो उसे गुरु से मिल सकता है। इसलिए तो शिक्षकों की भूमिका को आजकल के बच्चे उस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे आजकल सोचते हैं कि एआई के

0: जरिए मैं जो कुछ जानता हूँ शायद अपने गुरु से ज्यादा जानता हूँ, लेकिन ये अपने आप में भूल है। गुरु का अनुभव अपने आप में बहुत मायने रखता है।
1: एक इसकी बहुत अच्छी बात है ये कि इसको पहले ये तो हमको समझना है कि उसको एआई का मतलब है ही क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल माने कृत्रिम, माने जितना भी ज्ञान है वो उस व्यक्ति का नहीं है जो आपके पास वो वहन करता है, आपको वो ज्ञान बांट रहा है आपके साथ, तो उस व्यक्ति का ज्ञान नहीं है। इसलिए जो स्वानुभूत होता है, जिसको आपने स्वयं अनुभव किया है, उसके द्वारा आप जो भी सिखाते हैं वो बात अलग होती है। अब आप देखिए हमारे वैदिक ग्रंथों में, मानिए आप वेदों को ले लीजिए, तो वेदों में जितना भी ज्ञान दिया गया वो सारा ज्ञान जो है उनके अनुभव के आधार पर था। ये जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कितनी तपस्या की होगी कि उनका चित्त, जो चित्त है, कॉन्शियसनेस है, वो इतना पवित्र बन गया कि उनकी कनेक्शन जो है जितना कॉस्मिक नॉलेज है उसके साथ हो गया। और फिर उस ज्ञान को वो उतारते हैं। अब उस ज्ञान को वो जब उतारते हैं फिर उसको भाषा में वहन करते हैं, वाणी में वहन किया, इसके बाद उनको लोगों ने समायोजित किया और फिर वहन किया। तो आप कल्पना कर सकती हैं कि सच्चा ज्ञान वो है जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा, स्वयं के एक्सपीरियंस के द्वारा किसी व्यक्ति में पैदा होता है और वो उसको प्रकट करता है। अब आप कल्पना कीजिए, आप साइंस पढ़ा रही हैं और आप उनको डिस्क्राइब करके जाते हैं कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा करो वैसा हो जाएगा, पर ऐसा थोड़ी है। जब बच्चा उसको स्वयं एक लैबोरेटरी में बैठकर उसका प्रयोग करता है, प्रयोगशाला की जो बात होती है वो बात ही अलग होती है। इस तरह हम जब भोजन बनाने के लिए, आप यूट्यूब में देखिए इतने प्रकार का आपको दिखाया जाता है, मान लिया जाए आपको केवल सुनकर करना होता तो बात अलग होती
0: जी।
1: तो वो एक टच है ज्ञान के साथ साथ आपके अंदर एक प्रकार का जो संस्कार है, वो संस्कार जो है गुरु के द्वारा ही हो सकता है। वो मैंने एक बार ये ट्राई किया, मैंने कहा कि देखें तो कि ये जो एआई वाले हैं हंसते भी हैं, किस तरह बोलते हैं, उनमें वो जो मानवीय स्वभाव है, हमारी जो भावना है उनको समझ सकते हैं, पर बात अलग है। कृत्रिम है सो कृत्रिम है, आप कुछ भी कहिए। तो हमारे जो शिक्षक हैं वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे शिक्षक के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि भाई उनको प्रूफ करना है कि हाँ मैं भी हेल्प कर सकता हूँ, तो सारे शिक्षकों को रीलर्न करना पड़ रहा है कि हमने ऐसा पढ़ा था, हमने ऐसा पढ़ाना सीखा था, अब वो बदल रहा है, क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं, दोनों बदल रहे हैं।
0: और अभी के समय में चैलेंजेस इतने हैं कि हर रोज कुछ नया आ रहा है
1: एकदम,
0: और उस नएपन को अपनाना अपने आप में चैलेंजिंग होने के बावजूद हर शिक्षक अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है। आपसे हम अगर सरल शब्दों में आप हमें बता पाए ये शिक्षक कौन होता है और इनकी भूमिका क्या होती है?
1: शिक्षक सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हम सभी जानते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो शिक्षक के प्रति इतना जो आदर सम्मान और ये जो भावना है, पूजनीय है शिक्षक, पूजनीय है क्योंकि वो हमको अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए असतोमा सद्गमय आदि जो मंत्र हैं वो इस बात को वहन करते हैं, पर सत्य की ओर ले जाएगा कौन, रोशनी की ओर ले जाएगा कौन? वो जलता है अध्यापक, स्वयं दिया दीपक की तरह है, वो स्वयं जलेगा और अपनी रोशनी जो है दूसरों की ओर फैलाएगा। पर ऐसा थोड़ी है कि उस सीखने वाले के अंदर रोशनी नहीं है, उसमें भी है। तो जैसे रूसो बोलता है कि उसको वैसे ही छोड़ दो। हमने अभी अभी हाल में पढ़ा, एक संत नामदेव जी है, मैं पढ़ रही थी, उन्होंने कहा उसको वैसे ही जीने दो बच्चे को, फ्लो एवरीवन, हर किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि अगर वो अपने अंदर की बात को व्यक्त नहीं करेगा तो शिक्षक कैसे जानेगा कि उसको किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षक का महत्व ये है कि वो आपका भविष्य बनाता है। गुरु इसलिए कहते हैं, गुरु का शब्द ही मतलब जो बड़ा है, नहीं तो उसका उल्टा जो अर्थ लेंगे गुरु, लघु, लघु का माने छोटा। सो हम जो सीखने वाले हम छोटे हैं और जो सिखाने वाले हैं बड़े हैं।
0: और कहीं ना कहीं गुरु की बात करें तो गुरु जो है अपने स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ को भी पहचानता है।

0: उसकी वीकनेस को भी पहचानता है और उसी तरह से जो है उसे सिखाने का प्रयास करता है ताकि बच्चा जो है ज़्यादा समझ पाए।
1: एकदम एकदम, क्योंकि जब तक आप बच्चे की सीखने की गति, उसकी मानसिक स्थिति और उस समय जब वो आपके सामने बैठा होता है, चलिए स्कूल की बात करते हैं कि वो आपके सामने बैठा है, आप क्या जानते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या जानते हैं कि उसने क्या सहा है सुबह, वो स्कूल आने से पहले किस प्रकार की स्थिति से गुजरा है। आप सभी जानते हैं आजकल हम लोग बुलिंग की बहुत चर्चा करते हैं, है ना, तो रास्ते में आते हुए उस बच्चे ने क्या क्या सहा है और उसकी मानसिक स्थिति में अभी क्या है, इसलिए हम लोग बोलते हैं, एक बात है जिसको हम बोलते हैं रेडीनेस, कि जब तक वो तैयार नहीं है वो अधिगम होगा ही नहीं। अधिगम देखिए ना, अध्यात्म शब्द अधिगम, ये शब्द जो है अधि से शुरू होते हैं और ये जो सीखने वाला है उसका अधिगम तभी संभव होगा जबकि उसकी चेतना जो है उसके लिए तैयार है, वो प्यासा है कुछ प्राप्त करने के लिए। और अगर अब उसके चित्त में अनेक और प्रकार की बातें चल रही हैं तो वो कैसे उसको
0: शिक्षा को कैसे ग्रहण करेगा,
1: ग्रहण कैसे करेगा, आत्मसात कर ही नहीं पाएगा।
0: आजकल परिवार में भी बहुत सारी चीजें चलती रहती है जिसका असर बच्चों पर पड़ता है,
1: बहुत
0: तो कहीं ना कहीं अभी के समय में से बच्चे ही नहीं, हर एक व्यक्ति एक अलग तरह के मानसिक जो है तनाव से गुजर रहा है। पहले तनाव और स्ट्रेस की बात करते थे तो हमें लगता था कि सिर्फ हमारे घर के जो पिता है जो बाहर काम करने जाते हैं, तनाव उनको है क्योंकि उनको सोचना होता है कि महीने भर का खर्च कैसे चलेगा, अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे। लेकिन अभी के समय में शायद छोटे से छोटे बच्चे को भी तनाव जो है वो महसूस करता है, बड़े तो कर ही रहे हैं।
1: हाँ, इसकी तो बात ही मत कीजिए, अनेक प्रकार के तनाव हर किसी के जीवन में है, कोई कुछ ढूंढता है कोई कुछ ढूंढता है और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो तनाव उसका बढ़ा ही रहता है। इसका मतलब है वो किसी न किसी प्रकार का के प्रयास में लगा हुआ होता है। एक बालक जो है अनेक प्रकार के तनाव से गुजरता है, वो सुबह सुबह उठना ही नहीं चाह रहा है क्योंकि हमने आदत नहीं डाली है। अगर हम स्वयं उठ जाते हैं तो देखा देखी वो स्वयं उठ जाता है, तो आजकल की आप समस्या जानते ही हैं, लोग देर सोने जाते हैं और देर तक बिस्तर पर होते हैं, तो जागने की जो आप समझिए एक प्रकार का डिसिप्लिन है वो नहीं है, तो आप जगाते हैं पहला तनाव उसका वहीं से शुरू हो जाता है। फिर आप मान लिया जाए आप संस्कारी हैं, आप कहते हैं जाओ उसको नमस्ते बोलो और मत्था टेको वगैरह, ये सारी बातें उसके लिए नहीं है, सो ये उसके लिए। अब ऊपर से उसका तनाव है, स्कूल जाना है, यूनिफॉर्म पहना है, अच्छा मैं जाऊँगा, स्कूल जाने से पहले ही वो जो आने वाला दिन है क्या होगा उसमें, इसका तनाव है
0: अलग है।
1: और मैं आपको बोलूं उनकी साइकोलॉजी को सोचो ना, तो बड़ा वो दुखद स्थिति है। आप वो कुछ करना चाहते हैं और आप उससे कुछ और करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो इतना बड़ा बने लेकिन आप उसके लिए स्वयं तैयार नहीं है। हम लोग जिन चीजों को नहीं कर पाते हैं चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो ही करें और उसके लिए हम उसको पुश करते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो वैसा क्यों नहीं कर रहे हो, और उसकी अपनी इच्छा है, सो एक क्लैश है
0: और ऐसे में बच्चे बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं।
1: एकदम बहुत सारे हैं, आपने देखा
0: प्रेशर जो होता है वो बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हानि पहुंचा रहा है।
1: हम ना हम जीते हैं ना उनको जीने देते हैं, ये माने उनका बचपन गया ही गया, सो वो जो है खेल खिलौने के साथ मौज मस्ती में जीना, प्रकृति में रहना और प्रकृति में रोंदना, यू नो मिट्टी में खेलना, वो सारी बातें उनसे अलग हो गए। इसका मतलब क्या है, हम उनको उनकी वास्तविकता से दूर ले जा रहे हैं, और जब हम उनको उनकी वास्तविकता से दूर ले जाते हैं तो वो अपने आपे में नहीं होता है, फिर आप उसको क्या सिखाएंगे।
0: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना बच्चों में बचपन से आ जाती है। अभी आपने बात की मिट्टी से जुड़े रहना, प्रकृति से जुड़े रहना, तो जैसे हमें हमारा बचपन याद आ गया कि स्कूल के बाद हम सहेलियों के साथ या हमारे जो कजिन्स हैं उनके साथ खेलने जाया करते थे, इतने देर तक खेलते थे कि डांट पड़ती थी तब घर लौटते थे। और अब जो है हम हमारे बच्चों को देखते तो हम उसे स्कूल के बाद एक क्लासेस में भेज रहे हैं, उसके बाद एक दूसरे क्लासेस में, ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, ये भी उनके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है, समय के साथ जो है समय की जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को ढाल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में जो मासूमियत है, वो जो एक दूसरे के भाव को समझना है, वो अभी लड़ना तो आपस में फिर बन जाना, ये सारी मानवीय जो भावनाएं हैं, ये जो हमारे अंदर जो इमोशंस है, उससे जो है बच्चा कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है क्योंकि बैक टू बैक बच्चा क्लासेस ही अटेंड कर रहा है।
1: होता क्या है, हम लोग एकेडमिक उनका जो डेवलपमेंट है

उस पर ज़्यादा बल देते हैं। सर्टिफिकेट कमाना है और सर्टिफिकेट पाके जॉब मिलना है, जॉब भी ऐसे जॉब जो कि आपको संसार में एकदम यू नो मेक्स यू फेमस, और साथ साथ इस तरह का जॉब जहाँ पे आपको पैसे मिले। और बच्चों की आजकल की जो युवा पीढ़ी है जितनी जल्दी जितने पैसे कमा सकें इसलिए जॉब पे जॉब बदलते रहते हैं, वो स्थिरता की भावना जो है हट जाती है, क्योंकि शुरू से हम उसमें कुछ ऐसा भर देते हैं कि तुमको संसार में हर किसी से अव्वल आना है। वो खुद पर हावी नहीं होते, वो खुद से किसी प्रकार जो है प्रोग्रेस की सोचते नहीं है कि मैं खुद से कंपीट करूं कि मैं कल क्या था और आज क्या हूं, क्या मैंने मुझ में कुछ परिवर्तन हुआ, मैं खुद को समझ पा रहा हूँ। तो हमारी तो शिक्षा प्रणाली की भी समस्या है कि हम लोगों ने इस फोकस में क्यों ऐसा फोकस होता है, क्योंकि चारों ओर देयर इज एन ए बूम ऑफ नॉलेज और हम नॉलेज को भर नहीं चाहते हैं। तो वो क्या है, वो ही इज नॉट एन ओशन कि उसमें आप भरते जाएं, और था है उसमें आप भरते जाएंगे, उसकी भी अपनी लिमिट्स हैं, उसका भी समय है, उसकी आयु है, उसकी आयु उसको हमको एक बात बहुत अच्छी लगती है, एक बार किसी ने कहा था मेक हिम बिकम लर्नेबल कि वो सीख सके, ऐसा नहीं कि आप उसको कुंठित कर दो, इतना भर दो कि वो उसमें से उभर के निकल ही नहीं पा रहा है। सो ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। तो हमारे शिक्षक तो चाहते हैं, ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है कि नहीं चाहेगा कि मेरी क्लास में अच्छे बच्चे आए, कि वो ये नहीं चाहेगा कि जो बच्चे हैं वो यहाँ से अच्छा बन के निकले, हर कोई चाहता है, पर उनके ऊपर भी दबाव होता है, दबाव प्रेशर बहुत है, किस बात का कि आपको इतना पढ़ाना है, आपको उन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाना है, अब ऊपर से वो बच्चे जो कि पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, ऊपर से वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें, उससे अलग समाज की अपनी अपेक्षाएं हैं कि अरे कैसा बच्चा है, कैसा स्कूल है, कौन पढ़ाता है इनको कि ये निकल के आ रहे हैं स्कूल से तो इतनी हुड़दंगबाजी मचा रहे हैं रस्ते में। सो सबको अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, पर हमने बैलेंस दिया ही नहीं, हम बच्चों को खुद को समझने का अवसर नहीं देते हैं। एक तो चारों ओर से समाज और इंटरनेट और सब कुछ उस पर हावी है, उसका पीयर प्रेशर भी बना हुआ है, और हम लोग उसको समय नहीं देते हैं कि खुद को समझे, तभी तो समस्याएं होती है कि वी डोंट हैव इंटेलिजेंट लिविंग। समय समय बौखला जाना, गुस्सा कर जाना, किसी को पीट देना, जान तक ले लेना, तो अनेक प्रकार की इस प्रकार की जो दुविधाएं हम देख रहे हैं, ये हमारे शिक्षकों को बुरी तरह से दुखी करता है, हमको पीट देता है कि हम हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद क्यों ऐसा हो रहा है कि समाज इतना खराब बनता जा रहा है। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, एक बार हम लोग एक कोर्स फॉलो कर रहे थे सस्टेनेबिलिटी के बारे में, सस्टेनेबिलिटी वो जो टिक सके। तो बड़ा मजेदार है कि इसकी ये कथा जन्मी कहाँ से, ये सस्टेनेबिलिटी का जो दौर चला वो कहाँ से शुरू हुआ, कि ब्रेकफास्ट पर बैठे हुए कुछ देशों के जो सलाहकार नहीं जो लीडर्स थे बैठे हुए थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे, और चर्चाएं हो रही थी कि हम लोग इतना सारा विश्व जो है इंटरनेशनल लेवल पर इतना पैसा हम लोग फूंक रहे हैं, पर क्यों संसार में पीस नहीं है, चैन नहीं है, आराम नहीं है, लोग प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, नोबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज समवेयर फाइटिंग एंड लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। तो तब उन लोगों ने कहा कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि हम कुछ शुरू करें उसको बीच में छोड़ दें, पर ऐसा कुछ जो कि हम करें और जीवन पर्यंत उस सीखने वाले के अंदर जो है घर कर जाए, कि समय समय पर उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता हो। देखिए ना, हमारे वैदिक ग्रंथों में हमारे गुरुओं ने कितनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, उन्होंने कहा कि तीन प्रकार का ज्ञान तो देना ही देना है, बार बार मैं ये कहती हूँ, पर इसको कहे बगैर हम शिक्षा की चर्चा कर ही नहीं सकते, कि एक तो आप उनको तत्व ज्ञान देते हैं सारी संसार भर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, एक तरफ तत्व ज्ञान, फिर आत्म ज्ञान, खुद को तो जाने जी, उसका उसके अंदर है क्या, हमारा शरीर है क्या, हमारे शरीर की शक्तियां हैं क्या, कब हम फेल कर जाते हैं, कब हमारी परेशानियां होती हैं कि हम सोच समझ भी नहीं पाते हैं, हमारे शरीर में जो एंजाइम्स है, हमारी जो स्थिति है, हमारी शिराओं में जो रक्त बह रहा है, उन सब में जो है कौन कौन सी चीज़ें हमारे ऑर्गन्स में काम करते हैं जो कि उनको ऐसी स्थिति पे हमको ले आते हैं कि हम खुद पे जो है किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकते, हमारा व्यवहार टोटल

0: अनएक्सपेक्टेड बन जाता है और हम उस प्रकार के बिहेवियर कर डालते हैं। वो बातें हम अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है,
1: और शायद अभी के समय में वो गहराई से हम सोच ही नहीं पा रहे हैं,
0: सोच ही नहीं पा रहे
1: किस तरह से एक शिक्षक यहाँ पर आकर बच्चों में वो गहराई को ला सकता है।
0: एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा कहती थी कि ये तीन प्रकार के हैं, तो एक तो मैंने दूसरा बताया आपको आत्मज्ञान, फिर तीसरा मैं हमेशा चर्चा करती थी कि ब्रह्म ज्ञान है, कि वो ब्रह्म ज्ञान माने हम हमेशा सोचते कि सब अबाउट गॉड, और गॉड का हमारा जो परसेप्शन है, जो हम उनके हमारी जो संकल्पना है, उस संकल्पना को अब मुझे एकदम छिछोरापन दिख रहा है जो पहले हम सोचते थे, एकदम बचपना था उस सोच में। और अचानक जो कोई गुरु से आप मिले और वो आपको बताए कि मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान दूंगा, मैं तुमको ईश्वर से मिलाऊंगा और तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो, मिलाऊंगा, है कोई जो आप इस तरह का दावा करे, इस प्रकार का गुरु, वो भी गुरु होता है। और हाल हाल में ये पढ़ के मैं, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने ये कहा, इसको सुन के मैंने कहा ओ मैं तो अभी तक यही सोच रही थी ब्रह्म ज्ञान है क्या, फिर उसकी ओर जो है आपका रुख बदल जाता है, तब जाकर आप ये सोचना शुरू करते हैं कि अरे आई वॉज ऑलवेज गाइडेड, कि है कोई ऐसी शक्ति जो हमेशा से हमको गाइड करती रहती है, लेकिन हम अज्ञान होते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। और जब गुरु की कृपा होती है ना, तो इसलिए हम लोग शिक्षक ही ना कहकर उनको गुरु कहते हैं, कि गुरु की कृपा होती है तो हम उनसे मिल पाते हैं। और मुझे बड़ा अजीब लगा कि उसी संदर्भ में किसी ने हमसे कहा कि बैर क्यों, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बैर क्यों, उसको त्याग दो, उनके कहने मात्र से, मैं आपको क्या बताऊं, गुरुओं की शक्ति ऐसी होती है, उनके कहने मात्र से जैसे मेरे चित्त से कितने वर्षों से मन में केवल बैर नहीं, दुख, अनेक प्रकार के जो फ्रस्ट्रेशन सब होते हैं, पल भर में उसको मिटा दे, ये गुरु होते हैं। तो क्लास में भी टीचर वैसे होते हैं जो कि समय को पकड़ लें, यू नो, कि बच्चे को इस समय कष्ट हो रहा है तो मैं जरा सिलेबस से हटकर उसके दुख को तो दूर कर दूं, और अगर ये करते हैं वो बच्चा जिंदगी भर आपको याद करेगा।
1: बिल्कुल, चलिए, जितने लोग इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आप भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और अपने विचार बांटना चाहते हैं, या कोई ऐसा टीचर जिसके बारे में अभी भी आप सोचते हैं, जिन्होंने आपके जो है सोचने की दिशा को बदला या जीवन में आपको प्रेरित किया, आप उनके बारे में जुड़ना चाहते हैं, बेशक 4028085 है नंबर हमारा। ऐसा करते एक छोटे से गीत के साथ कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं, फिर कार्यक्रम को जारी रखेंगे और आपके फोन कॉल्स भी हम शामिल करेंगे।

0: चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा इस कार्यक्रम में। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम जो है वर्ल्ड टीचर्स डे पर बात कर रहे हैं, हमारे टीचर्स की भूमिका उस पर चर्चा कर रहे हैं, बदलते समय के साथ किस तरह की चुनौती का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और किस तरह से जो है वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो मीला जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी के समय की अगर हम बात करें तो शिक्षा और शिक्षक दोनों की आवश्यकता समय के साथ क्यों बढ़ गई है, खासकर अभी के समाज की बात करें जो हालात है हमारे चारों ओर।
1: हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो एक नए मोड़ पे है। पहले तो एक घर में, एक परिवार में बड़े बूढ़े और बाकी लोग भी हुआ करते थे जिनके पास समय होता था बच्चों के लिए। सो अगर माँ बाप थक गए हों, हारे हों और किसी न किसी रूप में अब उनके पास धैर्य की कमी पड़ जाती है, तो जो बड़े लोग हुआ करते थे वो बच्चों का साथ देते थे, बल्कि उनको बचाते भी थे कि हाँ माँ डांट न दे, पिता मार न दे, चाटा। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो ये जो स्थिति है हमारे जो छात्र हैं उनकी, ये स्थिति एकदम बदल गई है। स्कूल से वापस आए अब तो भागो ट्यूशन के लिए, लेकिन पहले ज़्यादा आनंद था कि स्कूल से वापस आते हैं तो घर में कोई होता था जो उनका स्वागत करता था, उनको खाना पानी कुछ भी देता था और बात करता था कि हाँ कैसा चला तुम्हारा दिन। अब ये पूछने के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। तो समाज हमारा जो सबसे पहले तो परिवार ही बदल गया है। सो और फिर परिवार में हर कोई अपने दौर में और अपनी चिंताओं में घिरा हुआ है कि उसको ये करना है, वो करना है, 50 चीज़ हर किसी को कुछ ना कुछ करना है। तो ऐसी स्थिति में उनके पास समय नहीं होता है, इसलिए बच्चे कुछ पूछता है तो बोलते हैं हाँ हाँ अच्छा बाद में बात करेंगे या उससे

0: पूछ लो या ये कर लो, या ध्यान ही नहीं देते हैं, तो बच्चे में कुंठा पैदा हो जाएगी इमिडिएटली कि आई वॉन्टेड टू नो अबाउट समथिंग, लेकिन मेरे मुझे जवाब देने वाला कोई है ही नहीं। और फिर जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप उनकी कल्पना कीजिए, बढ़ता हुआ शरीर, बढ़ता हुआ व्यक्ति जो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाह रहा है समाज में, बिकॉज ही इज ग्रोइंग नाउ, उसकी पर्सनालिटी, उसके जो कैरेक्टर है वो बनना शुरू होते हैं, और उस समय जब उसको इतना अधिक हर ओर से सहायता मिलनी चाहिए, मैं एडवाइस नहीं बोलूँगी क्योंकि एडवाइस शब्द लोग पसंद नहीं करते हैं, आज की युवा पीढ़ी पसंद नहीं करेगी कि आप उसको कहें कि अच्छा अच्छा ये करो, वो करो, वो मत करो, तो हम उनको इतना तो उकसा सकते हैं कि वो स्वयं सोच सके। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है वो कब बताएगा, किसको बताएगा, अगर कोई आप टीवी देख रहे हैं तो कहेंगे नहीं नहीं ये मत देखो, ये मत करो, अरे आपके पीछे वो 50 वैसी चीज़ें देख रहा है, तो आप उससे बात तो करो, आप उससे पूछो तो सही कि क्या हो रहा है। सो युवा पीढ़ी की अपनी समस्याएं हैं कि मेरी मदद करने वाला कोई है नहीं, तो कौन मदद करता है, फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स जो अपने आप को स्मार्ट मानते हैं और समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है और वो बताते हैं और गलत सलत ही बताएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: इसलिए मैंने एक किताब लिखी थी यौन संबंधी विशेषताओं को लेकर, इसलिए कि एजुकेशन सेक्टर में रह रह के मैंने देखा था कि साइकोलॉजिस्ट के साथ हम लोग बात करते थे तो ये चर्चाएँ होती थी कि हमारे स्कूलों में जो है इस प्रकार की समस्याएँ शुरू हुई हैं, बच्चे भी आपस में व्यवहार समझ नहीं पा रहे हैं, लड़के लड़की एक दूसरे के संबंध को दोस्ती का नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कि एक तो हमको खुद समझना है कि साइकोलॉजिकली दे आर ग्रोइंग, फिजिकली दे आर ग्रोइंग, मेंटली उनकी दिमाग हर तरफ बढ़ रहा है, उनकी केमिस्ट्री और कुछ कह रही है।
1: इंटरनेट के माध्यम से आजकल बच्चा अपनी उम्र से ज्यादा चीजों को देख रहा है। मतलब कि एक समय था ना कि जब हम स्कूल जाते थे, छोटे थे, जब इंटरनेट नहीं था तो हमें हमारी उम्र के हिसाब से चीजें सिखाई जाती थी, समझाई जाती थी, जैसे थे वो पड़ाव भी बढ़ता जाता था, लेकिन अभी शायद एक छोटा बच्चा वो सब देख रहा है और जान रहा है या उसकी समझ है जो शायद आज से 5 या 10 साल बाद उसे होनी चाहिए,
0: उसके होनी चाहिए, तो अभी तक तो उसमें समझ नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, उस टाइम का उस टाइप का विजडम भी नहीं आया है कि वो जाने कि मुझे क्या देखना चाहिए, अच्छा मैंने ये जो देखा है ये क्या है, कि तो पेरेंट्स भी क्या तैयार हैं वो डिस्कस करने के लिए। हमारे धर्म ग्रंथों में यौन संबंधी बातों को शिक्षा से अलग नहीं माना गया है, इसीलिए तो हमारे यहाँ का ज्ञान इतना परिष्कृत है कि बोलते हैं कि अच्छा मनुष्य को 4 आश्रम इसलिए तो रखा गया कि उसमें कब तुमको सीखना है और कब तुमको प्रैक्टिस में लाना है और कब तुमको इससे निकलना है ताकि तुम संसार की सांसारिकता और प्रकृति के स्वभाव को छोड़कर तुम आगे बढ़ सको। सो इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए हमने उस टाइप के लाइफ को स्टेज वाइज ऑर्गेनाइज किया ही नहीं है, तो बचपन से ही हर कुछ देखता है और समझने की चेष्टा करने से पहले प्रैक्टिस में लग जाता है, ये समस्याएं हैं। तो बच्चों की समस्याएं हैं कि वो औरों से ज़्यादा सीख रहे हैं, जहाँ से उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है वहाँ से वो सीख नहीं पा रहे हैं,
1: क्योंकि वहाँ पर शायद वो विश्वास ही वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं।
0: तो
1: क्योंकि एक बच्चा जब सवाल करता है तो अभी के समय में ये एक आम हमारा नज़रिया है, हम किसी को दोष नहीं दे रहे, माता पिता दोनों ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगे हुए हैं, दिन भर काम करके थक जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, तो जो समय बच्चा अकेलापन महसूस करता है, पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे का जो है अपेक्षाएं अलग होती है, लेकिन पेरेंट्स आते तो सोचते हैं पकाना है, घर की सफाई करनी है, तो ऐसे में हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में इस तरह से उलझ गया है कि वो बेसिक इमोशन जो है एक दूसरे को नहीं दे पा रहे, वो समझ कम है अभी के समय में, और वहीं पर क्लैश ज्यादा हो रहा है।
0: अब देखिए होगा क्या कि पहले एक बच्चे की शिक्षा जो है समाज की ओर से, स्कूल की पाठशाला की ओर से, राइट, और परिवार की ओर से भी होता था। अब परिवार को तो हमने देख लिया उनकी समस्याएं, परिवार ये भी सोचता है कि हाँ मैंने बच्चे को स्कूल भेज दिया है वहाँ उसको सारी शिक्षाएं प्राप्त होंगी, लेकिन स्कूल वाले की समस्या ये है कि अरे ये तो बिगड़ के आ रहा है घर से, मैं कैसे इसको। अब शिक्षक की समस्या क्या है, आदर नहीं है सुमित जी, आजकल आदर नहीं है। मुझे याद है हम लोग कभी स्कूल देखने गए थे और मैंने कॉरिडोर में देखा था बच्चों को, टीचर्स गुजर रहे हैं एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में जा रहे हैं सेकेंडरी स्कूल का, और कोई हटके उनको जाने के लिए जगह भी नहीं दे रहे हैं। वो आपस में जहां भी खड़े हैं वही लगे हैं। मैं आपको आज से 10 साल 15 साल से पहले की बात

0: बता रही हूँ, तभी से हमको लगा कि भाई हो क्या रहा है कि वो आदर गया। सो क्या है, ना कोई नमस्ते बोल रहा है, ना कोई हटके थोड़ा सा रास्ता दे रहा है कि ये निकल जाए, ये हमारे इतना तक का आदर नहीं है, बस में बैठने की जगह छोड़ दीजिए आप। तो उनकी भाषा, जहाँ मन से आदर का भाव निकल जाता है, भाषा में तो आदर का भाव होगा ही नहीं। व्यवहार की बात तो अलग ही है, उनका व्यवहार क्या है कि टीचर्स पर पेपर फेंकते हैं, हर प्रकार का व्यवहार टीचर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं डिसिप्लिन बनाए रखूं क्लास में कि ये लोग शोर ना मचाएं, या मैं उनको पढ़ाऊं जो पुस्तक में है, या मैं इनको व्यवहार के बारे में सिखाऊं, वैल्यूज़ के बारे में सिखाऊं। वैल्यूज़ सिखाई नहीं जा सकती है, वैल्यूज़ तो हो जाती है अपने आप में। इसलिए कहते हैं कि लेट द चाइल्ड बी, तब ना हम डिस्कवर करेंगे। तो अगर जैसे कहते हैं कि पेड़ टेढ़ा होने लगा, वो पौधा अब टेढ़ा होने लगा, अगर आप समय पर ही उसको ठीक नहीं करते हैं, तभी होता क्या है कि कुछ तो समाज के नियम कानून कायदों से डर कर सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो टोटली फिसल जाते हैं, और उस प्रकार के लोगों के लिए आपकी जेल खानों में जगह नहीं होगी। आप कल्पना कीजिए कि अध्यापक को क्या क्या झेलना पड़ता है। खुद अपने घर से निकल के आता है, अपनी समस्याओं को अलग रख के बच्चों के साथ खुश रहने का प्रयास करता है। आप घर में एक दो बच्चों के साथ थक जाते हैं, वो 40-40 बच्चों को एक साथ संभालते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
1: तो इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक दूसरे की किस तरह से सहायता कर सकते हैं इसके बारे में सोचें। यहाँ पर अगर हम अभिभावकों की बात करें और शिक्षकों की बात करें, जहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को वैल्यूज सिखाते हैं, अच्छे आचरण सिखाते हैं, वहीं पर जब एक शिक्षक उन्हें शिक्षा से जुड़े मूल्यों का ज्ञान देता है, तो ये दोनों जब साथ साथ चलते तो बच्चे की सफलता एक अलग होती है, वो बच्चे का आचरण एक अलग होता है। और यहाँ पर पेरेंट्स और जब एक साथ एक दूसरे के जो है शॉर्टकमिंग्स को समझकर एक साथ आएंगे, तो शायद समाज एक अलग ही रूप में हम देख पाएंगे समाज ने, क्योंकि अभी के समय में समाज की बात करें तो चिंताजनक स्थिति बहुत है। खासकर हम बच्चों की बात करें, शिक्षा प्रणाली में हर तरह का प्रयास किया जा रहा है कि सोसाइटी में बच्चे जो है अच्छे से पले बढ़े, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें, लेकिन कभी कभार आजकल के हमारे बच्चे जल्दी बहक जा रहे हैं। तो इसमें किस तरह से कार्य किया जा सकता है जहाँ पर माता पिता और शिक्षक एक साथ आकर कुछ करें?
0: सबसे बड़ी बात तो ये है, आप देखिए ना, प्राइमरी स्कूल में आप बच्चे को रोज स्कूल छोड़ने जाते हैं, छोटा है
1: जी,
0: नहीं जा पाएगा
1: जी,
0: आप उसकी सुरक्षा से चिंतित हैं, सो आप उनको छोड़ने जाते हैं, उसका सारा सामान उनको देते हैं, लेकिन जो ही वो अपने सेकेंडरी स्कूल की ओर जाता है, यहाँ तक तो आप लड़ धड़ के उसको पढ़ाते हैं ताकि अव्वल लाए और अच्छा स्कूल, सेकेंडरी स्कूल प्राप्त करे। जो ही सेकेंडरी स्कूल में जाता है, आप जाकर स्कूलों से पूछिए कि जब वो पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन की मीटिंग लगवाते हैं, कितने अभिभावक आते हैं, कितने पेरेंट्स आते हैं? बहुत कम होंगे जो आते हैं। बच्चे अनेक प्रकार के बुरे व्यवहारों में फंस जाते हैं, तब भी आप बुलाते हैं, मान लिया जाए एक दो आ भी जाए तो आप ही पर केस करेंगे। सो हर कोई अपने बच्चे को बचाना चाहता है, समझते हैं इस बात को, लेकिन वो बात जहाँ पर कि दोनों मिलकर उस विद्यार्थी को सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर सकें, वो तो किया नहीं जा सकता है।
1: यानी कि समस्या का समाधान हम नहीं ढूंढ रहे हैं,
0: नहीं ढूंढ रहे
1: हैं, हम बस सिर्फ एक दूसरे पर दोष दे रहे हैं, इससे तो हमें सोल्यूशन नहीं
0: कुछ
1: मिलेगा,
0: नहीं प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यू नो स्पीच, कि हमारे बोलने की क्षमता और हमारी वाणी में शक्ति कब आएगी? टीचर्स की वाणी में शक्ति आनी चाहिए। टीचर्स स्वयं अगर संसार के झंझावात से बौखलाया हुआ है तो आत्मशक्ति भी उसमें कम हो जाती है। 5 मिनट की 2 मिनट की देरी हो जाए और वो साइन करने में इधर उधर डूल गया तो उसकी चिंता शुरू से ही प्रारंभ हो जाती है। अब आप कल्पना कीजिए, घर में अपने बच्चों को निभा कर जो भी करना था करके आप निकले हैं और ऐसी स्थिति में जाते हैं, तो जिस दम से आप बोलते, जिस भाव से आप पढ़ाते, जिस आत्मीयता से आप उन बच्चों के साथ मिलते, उसमें थोड़ी सी गिरावट तो आ ही जाएगी, क्या करेंगे आप? सो उनमें आत्मिक

0: शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है और उनकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए समस्त समाज को एकजुट होना है। देखिए आप, हमको एक बात समझनी है कि बच्चा सुबह स्कूल जाता है, समझिए 8 बजे, उससे पहले तो ट्रैवल कर रहा होता है, समाज में ही है, अपने उम्र के लोगों के समाज में बस में आ जाता है और वापस आता है कब, 3 बजे। 3 बजे के बाद मान लिया जाए वो ट्यूशन पर भी जाता है, तो इतना समय वो शिक्षकों के साथ रहता है। घर में जाता है तो कितना समय माँ बाप के साथ रहता है, बहुत कम होता है। अधिक समय या तो काम करने में उसका, होमवर्क करने में लग जाता है,
1: अकेले अपने चीजों में
0: उलझा है और सो जाता है, तो ज्यादा समय उसका कहाँ बीतता है, अध्यापकों के साथ।
1: वो जाग रहा है, एग्जैक्टली, चीजों को समझ रहा
0: है। इन सारे अध्यापकों को प्रोत्साहित करना है, उनको उस प्रकार की शिक्षा देनी है कि वो स्वयं ग्राउंडिंग लेवल पे हों कि हाँ कुछ भी हो रहा है, अभी मैं क्लास में आ रहा हूँ, कैन आई डिटैच फ्रॉम व्हाट इज आउट देयर।
1: ये भी बहुत जरूरी है,
0: तो उनको इसकी शिक्षा तो मिलनी चाहिए, इस प्रकार की ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए। आप केवल उसको ये बताएं कि हाँ क्लास में जाकर ऐसा करना है वैसा करना है, अच्छा जिसके साथ ऐसा वैसा करना है और खुद को क्या कर रहा है उस व्यक्ति के बारे में हम नहीं सोच रहे। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अच्छा है कि हमारे समय में ऐसी समस्याएं नहीं थी, पर ये अवश्य कहूँगी कि हमें अपने अध्यापकों का साथ देना है, हमें उनकी मदद करनी है। आज देखिए जब कोविड का समय था, कितना लड़ झड़ के ये सारे टीचर्स जो हैं ऑनलाइन पढ़ाया करते थे। आप सोच सकते हैं, घर को संभालना और ऊपर से पढ़ाना, और ऊपर से सब कुछ उथल पुथल, ऊपर नीचे सब कुछ हो गया था। उस समय में कुछ अभिभावकों ने संभवतः, क्योंकि घर में थे, उनके पास टाइम था, तो उन्होंने अपने बच्चों का साथ दिया होगा, तो कैसा लगा होगा, यू नो, अकम्पेनिंग द चाइल्ड इन हिज लर्निंग, अकम्पेनिंग द चाइल्ड इन हिज ग्रोइंग अप, अकम्पेनिंग द चाइल्ड टू मेक हिम सी हाउ ही कैन मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी चीज है जो एक टीचर कर सकता है
1: जी।
0: लेकिन उसको सशक्त बनाना है, उसको वो औजार देने हैं, उसको विश्वास दिलाना है कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप करिए अपना काम, हम आपकी मदद करने के लिए सदा तैयार हैं, क्योंकि आप हमारा ही काम करें, हमारे ही बच्चों को देख रहे हैं, हमारे ही समाज को बढ़ा चढ़ा कर ऊपर पहुँचा कर उसमें कितने बड़े बड़े लीडर्स बनाते हैं। आप कल्पना करेंगे कि जो वैदिक ग्रंथ थे किसने लिखा, आप कल्पना करेंगे कि हमारे जिनको हम पूज्य मानते हैं, प्रभु राम को मानते हैं, आप कृष्ण भगवान को मानते हैं, इन सबके अपने गुरु थे, कितनी वैल्यू दी है। तो वशिष्ठ मुनि थे, विश्वामित्र जी थे, इसी प्रकार हम जानते हैं कि संदीपनी जी थे, कितने सारे गुरु हुए हैं जिन्होंने समय समय पर समाज को उनकी गति की ओर ले जाने का प्रयास किया है, क्योंकि मनुष्य को मनुष्यत्व से ऊपर उठकर देवत्व की ओर जाना है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है। तो स्कूल के टीचर की जिम्मेदारी होती है कि उनको बताए कि तुम्हारा गंतव्य वहाँ है, तुमको वहाँ तक जाना है, मैं तो यहाँ तक तुम्हारी मदद कर रही हूँ, और हैं तुमको प्रकृति से सीखना है। देखिए ना, गाने भी हैं, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, है ना, कि नदी बहती जाती है हर प्रकार से बहती, किस तरह फल पकता है तब पेड़ से गिरता है, हर प्रकार सारी शिक्षा होती है। रात के समय आप चंद्रमा को देखिए, कितनी शीतलता प्राप्त होती है। तो सारा संसार हमारे हमको शिक्षा देने के लिए तैयार है, तो हम किस किस को, किस किस के प्रति आभार प्रकट करें, हमको तो हर समय आभार ही आभार प्रकट करना है
1: कि हमें कृतज्ञ हृदय से ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तब जाकर सारा चीज अच्छे से होता है। और कृतज्ञता के साथ साथ विश्वास होना बहुत जरूरी है, जो अभी के समय में समाज में बहुत कमी है। सिर्फ हम टीचर और स्टूडेंट के बीच में विश्वास की बात नहीं कर रहे, हमारे हर एक रिश्ते में आजकल हम देख रहे हैं विश्वास की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास अगर फिर से हम बना पाए तो शायद जीवन के बहुत सारे पहलू सुधर जाएंगे।
0: बिल्कुल, वो सारा कुछ हमारे व्यवहार के ऊपर डिपेंड कर, और हमारा व्यवहार जो है किस बात से प्रेरित होता है, हमारे विचारों से। हम जो सोचते हैं वो वैसा करते हैं, तो हमारी सोच में परिवर्तन होना चाहिए, और उसी सोच को बदलने के लिए हमारे जो, अब आप देखिए अब्राहम लिंकन थे, अब्राहम लिंकन ने एक पत्र लिखा था अपने

0: हेडमास्टर को, अपने बेटे के हेडमास्टर को, और उन्होंने कहा था मेरे बेटे को ऐसा बनाइए। तो वो अब्राहम लिंकन पॉलिटिशियन, उसके पास समय कहाँ था, पर उसका एक पत्र तहलका मचा देगा। इसलिए मैं तो सबसे कहती हूँ कि ढूंढिए उसने उस पत्र में क्या कहा, उसने समयोचित बातें कही। कि मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे बच्चे को कठोर मत बनाओ, मैं नहीं कहता हूँ कि उसको इतना कोमल बनाओ कि वो अपने आप स्वयं की सुरक्षा ना कर सके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको संगीत ना सिखाएं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको भावनात्मक ना बनाएं। क्या बैलेंस उन्होंने उस पत्र में लिखा। अब मैं अपने आप से पूछती हूँ कि आज के ज़माने में अगर कोई जागरूक व्यक्ति किसी हेडमास्टर को पत्र लिखेगा तो अपने बच्चे के लिए इस तकनीकी युग में क्या मांग करेगा,
1: पता नहीं,
0: इस समाज के लिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो हमको खुद बदलना है
1: जी।
0: जब हम बदलेंगे, हमारी सोच बदलेगी, तो हमारे आसपास के लोगों की सोच भी बदलेगी, क्योंकि हमारा व्यवहार बदलेगा, हमारा खान पान, बोलने चालने की, और जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनका संग हम बनाते हैं, क्योंकि जैसा जैसे लोगों का संग हम बनाते हैं, ये भी कहा गया है कि 5 साल 10 साल बाद देखिए आप वैसा ही बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोग सत्संग की चर्चा करते हैं, सत्संग का कितना महत्व रामायण में बताया गया है। तो ये जो हमारा विचार है वो अचानक नहीं बदलेगा, हमारी सोच जो है सन्मार्ग पर अचानक नहीं जा सकती है, उसके लिए एक प्रकार का गठन होता है हर प्रकार से, चारों ओर से। जैसे एक बिल्डिंग के लिए आप स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तब ना वो इमारत खड़ी होती है, तो स्कैफोल्डिंग होनी चाहिए समाज को, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को। हमें जागरूक होना है, अगर कोई बुराई की ओर जा रहा है तो कैसे हम उसको अच्छाई की ओर लाए, ऐसा नहीं कि हाँ हम आँख बंद कर लेते हैं, ये हमारा बच्चा नहीं छोड़ देते हैं। ये जो व्यवहार पहले हमारे समाज में था अब कम दिखता है, कि कोई बुराई कर रहा है तो अच्छा उसने ऐसा किया हम छोड़ के चले जाते हैं।
1: एक समय ऐसा भी था जब हमें पड़ोसी आकर डांटते थे कि ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी थी हमारे प्रति। चलिए मीरा जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, और जाते जाते दो शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे।
0: मैं अध्यापकों, क्योंकि आज वर्ल्ड टीचर्स डे मना रहे हैं,
1: कल हमने मनाया, आज हम इसकी चर्चा कर रहे हैं।
0: तो भारत में तो मेनन जी के अनुसार, तो राधा कृष्ण मेनन जी के अनुसार इस दिन का मनाते थे
1: जी।
0: तो भी वो सार्थक ही है। चलिए तो मैं अपने टीचर्स को, जितने भी अध्यापक हैं, ये कहूँगी कि आप में जो क्षमता है ना, आप उसको पहचानिए ना। आप एक क्लास में बैठकर जो कर सकते हैं ना, वो घर में पेरेंट्स भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को नॉलेजेबल नहीं मानते हैं बच्चे। नॉलेज देने वाला स्कूल होता है, और आप हृदय से आप अपने अंतरतम की शक्ति को बढ़ाकर आप उस बच्चे तक उस शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप में जो क्षमता है आप उस पर पूरा विश्वास कीजिए, क्योंकि आप प्रेम पूर्वक जो भी एक बालक को प्रदान करेंगे ना, जिंदगी भर वो उसके जीवन को संवार देगा। हमारे बच्चे प्रेम के भूखे हैं, हमारे बच्चे टाइम के भूखे हैं, हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम उनको सुने। और हमारा कष्ट ये है अध्यापक के रूप में कि हमको किताब उन तक वहन करना है, हम भी बोलते ही बोलते रहते हैं, उनको सुनने का कम अवसर मिलता है। आप कभी ये ट्राई कीजिए ना कि क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले आप उनको 10 मिनट में अपनी बात कहने का अवसर दे दीजिए ना, थोड़ी सी लीडरशिप वहीं से शुरू हो जाएगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। अपने आज के इस विषय को लेकर इतनी सारी बातें जोड़ी, बहुत बहुत आभार आप सब आपका। और
2: आइए सुनते हैं समाचार आशिता के साथ। नमस्कार।
3: नमस्कार गिनीशा, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए परिवारों और स्थानीय लोगों को साथ जोड़ना, यही उस अभियान का उद्देश्य है जिसकी शुरुआत कल सोमवार शाम गजीदौस वाली जी में मशाल के साथ मार्च के दौरान की गई। इस मौके पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी मौजूद थी। गैर सरकारी संस्था अनुला समुदाय केंद्र में 10 सप्ताह तक हर सप्ताह 2 जागरूक

जागरूकता सत्र आयोजित करेगी। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि इन सत्रों को अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक परिवारों को जागरूक किया जा सके और नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से जोड़ा जा सके। मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने कल सोमवार 5 अक्टूबर को ईबेन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान संस्था की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों

0: जाएगा। इन गतिविधियों में सिनेमा वीक प्रमुख है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों और सेना के छात्रों के लिए एक कम कीमत पर टिकट उपलब्ध कराए जाएंगे। अलग अलग विषयों पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा मॉरिशस में फिल्माई गई फिल्मों के विशेष प्रदर्शन और सिनेमा दौली विलाज यानी गांव में सिनेमा परियोजना भी आयोजित की जाएगी। लेकिन इन सभी गतिविधियों में सबसे प्रमुख नेशनल शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन 2026 है। ये प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है और इस समय तीन श्रेणियाँ होंगी, पारंपरिक फिल्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डॉक्यूमेंटेरी। और मॉरिशस में मधुमेह के खिलाफ एक नई पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य इस बीमारी से बचाव करना और इससे होने वाली जटिलताओं को कम करना है। ग्लोबल फाउंडेशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ नाम की गैर सरकारी संस्था की इस पहल में समुदायों के साथ मिलकर काम करने और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया है। संगठन का लक्ष्य 2035 तक अनियंत्रित मधुमेह के मामलों में 5% की कमी लाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में मॉनसून खत्म हो चुका है और बारिश की कमी का असर अब प्रदेश के जलाशयों पर दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र में सरकार ने 16 अक्टूबर से शहरी और ग्रामीण इलाकों में कम से कम 10% पानी की कटौती करने की घोषणा की है। सरकार ने इसका कारण मॉनसून के दौरान कम बारिश और सूखे जैसी स्थिति का बढ़ना खतरा बताया है। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात में बांधों में पानी का भंडारण असमान बना हुआ है। दूसरी ओर कर्नाटक ने सूखे से राहत के लिए हजारों करोड़ रुपए की मांग की है क्योंकि किसान और स्थानीय समुदाय पानी की कमी का सामना कर रही है। तो इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

0: जी हाँ दोस्तों, चार दिन का सफ़र ये जहाँ है और इन्हीं चार दिनों में बस कोशिश होती है कि ज़िंदगी की जो भी खुशियाँ हैं इन्हें हम समेट लें और इन खुशियों को हम अपने नाम कर सकें। 4:11 परी का साथ लेकर आए हैं प्रोग्राम आपके सितारे।
1: आपके सितारे।
0: तो जी हाँ दोस्तों, जानते हैं कि हमारा ये जो सफ़र होता है वो होता है एक सितारे के नाम, एक ऐसा स्टार, एक ऐसा सितारा जो आसमान

में चमकता है लेकिन इसे हम लेकर आते हैं आपके दिलों तक। तो आज इस खास सफर में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लेबैक सिंगर की जिनकी आवाज में एक अलग ही मिठास, एनर्जी और अंदाज सुनाई देता है। एंड दैट्स वन एंड ओनली विनोद राठौड़। विनोद राठौड़ का जन्म 12 सितंबर 1962 को मुंबई में ही हुआ। संगीत उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि उनके घर का एक माहौल का अहम हिस्सा बना। साथ ही साथ उनके परिवार का संगीत के साथ गहरा रिश्ता रहा और इसी माहौल ने उनके अंदर गायकी के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार की। लेकिन बॉलीवुड तक पहुंचना आसान नहीं रहा। एक आवाज को पहचान बनने के लिए सिर्फ हुनर नहीं बल्कि सालों की मेहनत और सही मौके का इंतजार भी करना पड़ता है। सो आज हम बात करने वाले हैं उनकी पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स की। विनोद राठौड़ एक ऐसी आवाज जिन्हें हमने 90s में अच्छा सुना और जो भी गाने उन्होंने गाए वो बन गए हमेशा के लिए यादगार।

0: आपके सितारे।
1: तो चलिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिंगर विनोद राठौड़ की। यस, वेरी यूनिक वॉइस ऑफ बॉलीवुड, जिनके बहुत सारे प्यारे गाने हमने सुने। और यहाँ पर विनोद राठौड़ की गायकी की सबसे बड़ी खूबसूरती की अगर हम बात करें तो वो यही थी कि उनकी आवाज़ में बॉलीवुड की शरारत भी थी और क्लासिकल ट्रेनिंग की मजबूती भी। उन्होंने उस्ताद फयाज अहमद खान से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम ली। ये तालीम उनकी सिंगिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनी। सुर ताल और आवाज़ पर पकड़। और सबसे अच्छी चीज़, जो सबसे ख़ास बात थी, वो ये रही कि उनके प्लेबैक करियर में ये जो क्लासिकल सिंगिंग है, ये बहुत काम आया। एक सिंगर जब क्लासिकल की बुनियाद पर खड़ा होता है तो वो सिर्फ गाना नहीं गाता, वो हर लफ्ज़ को सुर और साज के साथ जीने लगता है। और वही जो फीलिंग्स थी वो उनके हर एक गीत में हमें सुनने को मिली। फिल्मों में उनका सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उनकी असली पहचान 1990s के दौर में मजबूत हुई। उस वक्त हिंदी सिनेमा में म्यूज़िक की एक ज़बरदस्त कह सकते हैं एक लहर चली, एक ऐसा दौर चला जहां पर नए कंपोजर्स, नए सिंगर्स और नए म्यूज़िकल एक्सपेरिमेंट्स हुए। विनोद राठौड़ की आवाज़ इस बदलते हुए बॉलीवुड के साथ बहुत खूबसूरती के साथ फिट हुई। उनकी आवाज़ में एक यूथफुल एनर्जी थी जो रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ मस्ती भी लेकर आती थी। और हर एक डिफरेंट जोनर में हमने उनके अंदाज को महसूस किया। जब हम विनोद राठौड़ की बात करते हैं, सो हाउ कैन वी नॉट मेंशन संजय लीला भंसाली। जी हाँ, एक गाना जो संजय लीला भंसाली की फिल्म में हमने सुना, जहां पर हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये आवाज़ सलमान खान की आवाज़ से कभी मैच कर सकती है, यानी कि ये आवाज़ कभी उन पर पिक्चराइज हो सकती है, ये हमने कभी महसूस नहीं किया। लेकिन उसके बाद एक ऐसा आइकॉनिक सॉन्ग आया जिसे हम आज भी एंजॉय करते हैं। सो हैट्स ऑफ जो थिंकिंग थी संजय लीला भंसाली की, कि ये आवाज़ सलमान खान पर सूट कर सकती है।

है और सूट तो क्या इस आवाज ने ऐसा धमाल मचाया। तो चलिए उसी मैजिक को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपके सितारे प्रोग्राम, मैं हूं परी आपके साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। बात हो रही है सिंगर, द वन एंड ओनली वर्सेटाइल सिंगर विनोद राठौड़ की, और चलिए उन्हीं की आवाज में गाया हुआ ये गाना आप सभी के नाम।

So, Tere Mere Sapne, aur ye to hum jante hain, that was debut films of Chandrachur Singh and Arshad Warsi. ABCL, yes, Amitabh Bachchan Corporation Limited ki production ke tehet bani ye film, jahan par ye do actors launch hue. और इसी गाने में हमने सुनी आवाज विनोद राठौड़ की और उनके साथ उनका साथ निभाते हुए उदित नारायण चलिए दोस्तों आज हम हमारा स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं ऑन विनोद राठौड़ बॉलीवुड के जाने माने सिंगर और उन्हीं के कुछ पॉपुलर हिट्स आप तक पहुंचा रहे हैं अभी के लिए एक और प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म बाजीगर और कह सकते हैं कि ये फिल्म उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट रही शाहरुख खान पर फिल्माए गए एनर्जेटिक सॉन्ग्स हो या फिर कोई भी एक इमोशनल ट्रैक जो साउथ एक्टर सिद्धार्थ पर पिक्चराइज हुआ सो हर एक गाना रहा स्पेशल और वर्सेटैलिटी देखने को मिली इन दिस मूवी बात हो रही है फिल्म बाजीगर की किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने या फिर समझकर चांद जिसको आसमां पे हमने रखा है ऐसे गाने यानी कि हर एक रेंज हमें सुनने को मिली सो एक और खूबसूरत गाना इन द वॉइस ऑफ विनोद राठौड़ उनका साथ देती हुई अलका याग्निक फ्रॉम द फिल्म बाजीगर ये गाना उनके तमाम फैंस के नाम इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं हमारे सभी लिसनर्स ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन विजया जी आप भी आई हैं अपना प्यार लेकर सो आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं ऑन RM3 चलिए दोस्तों आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके सितारे अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं हूं परी आपके साथ

और जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं द वर्सटाइल सिंगर विनोद राठौड़ की। विनोद राठौड़ की खासियत सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के गाने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने रोमांटिक सॉन्ग्स गाए, एनर्जेटिक डांस नंबर्स गाए, इमोशनल कॉम्पोजिशंस गाए और डिवोशनल म्यूजिक में भी अपनी आवाज़ दी। इस वर्सटाइलिटी ने उनको 90s और 2000 के बॉलीवुड प्लेबैक लैंडस्केप में एक खास जगह दी। कुछ इतने प्यारे गाने गाए जिन्हें हम आज भी एंजॉय करते हैं और उनकी आवाज़ तब भी यूनिक थी और आज भी उतनी ही यूनिक। बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ भी उन्होंने काम किया। विनोद राठौड़ ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया। बीट अनु मलिक, नदीम श्रवण, जतिन ललित, आनंद मिलिंद, एआर रहमान और इनके साथ बहुत सारे और कंपोजर्स के साथ उनकी कंपोजिशंस में हमने विनोद राठौड़ की आवाज़ सुनी। हर कंपोजर का अपना म्यूजिकल ग्रामर होता है और एक प्लेबैक सिंगर की असली वर्सटैलिटी तभी सामने आती है जब वो अलग अलग म्यूजिक स्टाइल्स को अपनी आइडेंटिटी बना सके। सो यहाँ पर विनोद राठौड़ की बात हो रही है एंड यहाँ पर शामिल होता हुआ एक और ब्यूटीफुल मस्ती भरा ट्रैक सपना मुखर्जी, विनोद राठौड़ की आवाजें फ्रॉम द फिल्म रक्षक। ये गाना आप सभी के नाम और चलिए कहते हैं दैट ये जो गाना है दैट वाज माय स्पेशल ट्रैक और इन गानों को सुनकर आपका मूड भी सेट हो रहा है ये जानकर अच्छा लगा। विजया जी थैंक यू सो मच।

जिंदगी में अगर ऐसे गाने ना हो तो जिंदगी किस काम की, ये कह रही हैं हमारी प्यारी सी विजया जी। और आपका साथ ना हो तो फिर हमारा भी ये जो काम है थोड़ा सा अधूरा ही लगता है। सो थैंक यू फॉर द लवली मैसेजेस। यहाँ पर रेखा जी मोमो जी से साथ दे रही हैं आप भी, डेडिकेटिंग गाना फॉर बेटा अंश और सभी परिवार के लिए जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ परी आपके साथ विनोद राठौड़ पर हमारा ये स्पेशल आपके सितारे प्रोग्राम। एंजॉय दिस वन।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपके सितारे आज डेडिकेटेड है वन एंड ओनली विनोद राठौड़ पर। उनके गाए हुए कुछ सुपर रोमांटिक, सुपर

एनर्जेटिक सॉन्ग्स आपके लिए हम पेश कर रहे हैं इस आवाज़ में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं From the film Bedardi, we have this romantic gana unke tamam fans ke liye and for all the listeners of RM3 Radio Manoranjan. मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक इस सफर को आपके लिए सजाए रखेंगे विनोद राठौर के कुछ ब्यूटीफुल डुएट्स आपके लिए हम लेकर आए हैं सो साथ निभाते रहिए एंड कीप एंजॉयिंग

0: के सितारे।
1: और चलिए दोस्तों, बात हो रही है यहाँ पर विनोद राठौड़ की। स्टेज और स्टूडियो के बाहर विनोद राठौड़ को एक वार्म और ग्राउंडेड पर्सनालिटी के रूप में भी जाना जाता है। उनकी सिंगिंग एक डिफरेंट अंदाज की थी और जिंदगी में भी म्यूजिक सिर्फ एक करियर का हिस्सा नहीं रहा, वो उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी ट्रेनिंग और उनकी आइडेंटिटी का भी एक हिस्सा रहा। एक सक्सेसफुल प्लेबैक सिंगर के पीछे सिर्फ स्पॉटलाइट नहीं होती, उसके पीछे सालों का रियाज, डिसिप्लिन, रिजेक्शन और कंटिन्यूसली खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश होती है। विनोद राठौड़ का सफ़र भी इसी बात की मिसाल है कि एक आवाज़ को अपनी जगह बनाने के लिए वक्त लगता है, लेकिन जब वो आवाज़ दिल तक पहुंच जाए तो फिर सालों बाद भी याद आती रहती है। तो बस उन्हीं गानों को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक और खूबसूरत सा गाना विनोद राठौड़ की आवाज़ में, और इस बार उनका साथ निभाते हुए कोई सिंगर यानी कि फीमेल सिंगर नहीं बल्कि एक मेल सिंगर, एंड दैट्स सोनू निगम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी लाजवाब, एंड इवन आफ्टर ईयर्स ये गाना इतना ही खूबसूरत। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उसी दौर में जहाँ पर हर गानों को हमने सिर्फ सुना नहीं बल्कि हमने इसे फील किया, और अभी के लिए उसी मैजिक को आप तक पहुँचा रहे हैं विनोद राठौड़ और उनका साथ देते हुए सोनू निगम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का हमारा ये प्रोग्राम आपके सितारे डेडिकेटेड है विनोद राठौड़ पर।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: जी हाँ दोस्तों, विनोद राठौर की आवाज़ का एक खास कनेक्शन 90s के बॉलीवुड म्यूजिक लवर्स के साथ रहा। उनके कई गाने आज भी नॉस्टैल्जिया का हिस्सा बने हुए हैं और वो दौर जब म्यूजिक एल्बम्स का क्रेज़ था, कैसेट और सीडी कलेक्शन हुआ करते थे और एक हिट सॉन्ग लोग बार बार सुनते थे। उनकी आवाज़ में वो 90s वाली रो एनर्जी थी और जो आज भी हम उनके गानों को महसूस करते हैं और वो जो गाने जो आज भी फ्रेश फील होते हैं। और शायद इसी वजह से विनोद राठौर को याद करने के लिए सिर्फ एक सिंगर को याद करना नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के उस मैजिकल इरा को याद करना भी है। सभी के लिए उसी मैजिकल इरा से लेकर आए हैं ये खूबसूरत सा गीत। जीत फिल्म का ये गाना विनोद राठौर अलका याग्निक की आवाज़ों में डेडिकेट कर रहे हैं आप सभी के नाम। हमारा ये प्रोग्राम आपके सितारे आज डेडिकेटेड है विनोद राठौर के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ परी आपके साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक। अगला गाना भी होने वाला है खास। स्टे वेल कनेक्टेड।

बिल्कुल जी दोस्तों, ये गाने तो रंग लेकर आएंगे आपके लिए। और जी हाँ, दो घंटों का ये सफ़र खास रहा और हमने देखा कि एक सिंगर जब एक ऐसा सफ़र तय करता है जो इतना खूबसूरत हो, तो इतने सालों बाद भी हम उनके

सफर को ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं बॉलीवुड के बदलते दौर से गुजरा और अपनी आवाज के दम पर एक खास पहचान तक पहुंचाते ये था विनोद राठौर का सफर जी हां एक ऐसी आवाज जिसमें सुर भी है एनर्जी भी मस्ती और इमोशंस भी तो चलिए अगला गाना भी एक स्पेशल गाना और ये गाना ऐसा है जिसने संजय दत्त को एक अलग पहचान दिलाई और इसी गाने के साथ दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं अगले प्रोग्राम की ओर और धरोहर की सरोवर ये गाना ये जो प्रोग्राम है इसे आप सुन पाएंगे किरण जानकी के साथ मुझे यानी कि परी को दीजिए इजाजत आपसे मुलाकात होगी आज शाम ही ठीक 6:30 बजे इन योर प्रोग्राम नई सोच तब तक के लिए साथ दीजिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: शाम के 5:50 समय हो चला है प्रोग्राम हमारी धरोहर का।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपकी स्वागत बा। हर 5 अक्टूबर के विश्व शिक्षक दिवस मनावल जाला और काल ई दिन बहुत धूमधाम से सब शिक्षक लोग के नाम सब उ लोग के जो छात्र हवन जा मनैलन जा। और वर्ल्ड टीचर्स डे एगो ऐसा दिन है जहाँ पर हर प्रकार के गुरु के सम्मानित करल जाला। संत कबीर बोल रहे हवन, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब कि गुरु और खुदा दोनों सामने खड़ा रही, तो सबसे आगे हम गुरु के पांव छुअब, कहे कि गुरु ही हमने के भगवान के परिचय देले हवन, ईश्वर के ज्ञान देले हवन। एक तरह से धरोहर के बारे में संस्कृति, परंपरा, कला और सांसारिक व सामाजिक शिक्षा हमने के गुरु से ही मिलल बा। गुरु के रूप भी अनेक बा, जैसे कि आचार्य, पंडित, मौलाना, माँ बाप, दादा दादी, ऋषि मुनि और प्रेरक। मतलब कि वो लोग जे लोग हमने के जिए के प्रेरणा देवे लंजा, जे लोग हमने के एगो ऐसन मार्गदर्शन देवे लंजा जेकर से हमने के सही और गलत के पहचान होवेला। आज

0: के आधुनिक दुनिया में गुरु के रूप और भी बड़ा और भी विस्तृत हो गल बा। महात्मा गांधी बोलले रलन की शिक्षा और राजनीति बहुत बड़ा औजार है जीवन सही मायना से जिए खातिर। आप तो जानेला कि हमने के परदादा परदादी या दादा दादी लोग ही शिक्षित नहीं रलन सा और कितना दुख और अत्याचार झेल ले हवन सा। अज्ञानता सबसे बड़ा दोष है। शिक्षित और साक्षर नहीं रहबा तो तू खुद अपन अधिकार के बारे में न जनबा न सकबा अपन अधिकार जतावे और ओकर अधिकार में लड़े। बड़ा आदमी लोग बोले हवन जा कि शास्त्र में बोलल गल बा कि जब तोहर संगे धन संपत्ति और कोनो साथी नहीं रही उ बखत जब तू विदेश में हवा अकेले भ्रमण करत हवा तब जोन अकेला गुरु हर कदम पर तोहर साथ दे उ है शिक्षा। ये सब कारण है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया मजदूर लोग के बुरा दशा देखलन दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस में। भारत में तो देख ही रहलन तो वो पहला बात बोलन कि चाहे सब लड़का लोग के पढ़ावे के शिक्षा देवे के तभी वो लोग सकन सा अपन अधिकार के हक में लड़े और वो भेजलन मनीलाल डॉक्टर के और मॉरिशस में बैठ का खुलल घर घर में पढ़ाई शुरू होल हस्ताक्षर करे के हर एक जना के प्रशिक्षित करागल बैठ का से जोन मुफ्त शिक्षा शुरू होल वो आज विश्वविद्यालय तक पहुँच कर। हमें के सौभाग्य देखा कि आज हमने के देश में शिक्षा खाली मुफ्त ही नहीं है बल्कि अनिवार्य है ओब्लिगातोरी है। छोटा से हमने देख ले आल है सा कैसे माँ बाप हमने के स्कूल भेजे पर रात दिन अच्छा से पढ़े पर कितना जोर दे ले हवन जा और ओकर फल आज देखा हमने के देश अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में एगो शेर के रूप में ताकतवर बन गल बा। ये सब शिक्षा और शिक्षक के बदौलत। शिक्षक दिवस के दिन उ तमाम गुरु लोग के श्रद्धांजलि और नमन जे लोग बैठका से मुफ्त शिक्षा शुरू कर लन जा हमने के देश में उ सब आध्यात्मिक गुरु पंडित मौलाना के नमन जे धर्म के ज्ञान दे लन जा। हर परिवार के बुजुर्ग के प्रणाम जे लोग परमात्मा के और साथ में धर्म संस्कृति परंपरा धरोहर के बारे में लड़का लोग के सिखाई लन जा और स्कूल के सब शिक्षक लोग के शुभकामना जे लोग देश के लड़का लोग के काल के जिम्मेदार नागरिक बनावत हवन जा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। मंगलवार 6 अक्टूबर 2026 की सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। फिजी में लग रहे प्रीकॉप सम्मेलन के अंतर्गत लगे प्लीनरी सत्र में आज सुबह गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने छोटे विकासशील टापू देशों से एकजुट होने का आह्वान किया ताकि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के वास्ते क्लाइमेट फाइनेंस प्राप्त कर सके और ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे नुकसान कम किए जा सके। परिवारों खासकर नौजवानों को मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़े खतरों को लेकर सचेत कराने के मकसद से रेजिडेंस वाली जी में कल रात एक कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया गया। अंतरिम प्रधानमंत्री ने ज्यादा परिवारों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अभियान दूसरे इलाकों तक भी बढ़ाए जाने का ऐलान किया। सन 2024 में मॉरिशस में महिलाओं में कैंसर के 1,891 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 37.5% ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर के मामले थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रस्त मरीजों के लिए इलाज के साथ साथ उनके और उनके परिवारों के लिए मानसिक समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गैर सरकारी संगठन लिंक टू लाइफ अर्ली स्क्रीनिंग पर खास बल दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों छात्र प्रदर्शनों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। वे शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 2000 से ज्यादा स्कूलों के सामने घेराबंदी की। पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई हैं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। अगले महीने लगने वाले COP31 सम्मेलन के

0: पूछ की है। इस संदर्भ में मॉरिशस और प्रशांत महासागर के टापू देश बढ़ते समुद्री जलस्तर के खतरे को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। फिजी में लग रहे प्रिकॉप सम्मेलन के अंतर्गत लगे प्लेनरी सत्र में आज सुबह गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मगुखुल ने छोटे विकासशील देशों टापू देशों से एकजुट होने का आह्वान किया ताकि वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के वास्ते क्लाइमेट फाइनेंस प्राप्त कर सके और ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे नुकसान कम किए जा सके। काविन तापिसा की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
1: गणराज्य के राष्ट्रपति ने कहा कि मॉरिशस जैसे छोटे टापू विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुसार खुद को ढालना आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और पर्यावरण के अस्तित्व का सवाल है। इन परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति के अनुसार जलवायु फाइनेंस तक पहुंच को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मॉरिशस के लिए हमारी प्राथमिकता मिटिगेशन, अडैप्टेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट फाइनेंस और परिवर्तन पर केंद्रित रहेगा। छोटे टापू देशों के लिए अनुकूल वित्तीय सहायता छोटी परियोजनाओं को लेकर तैयार की जाएगी, न कि कॉन्टिनेंटल मंडियों के लिए। धर्मगुखुल ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत की ओर से जलवायु संबंधी देशों की जिम्मेदारियों पर जारी सलाहकारी राय का सम्मान किए जाने की अपील की। इस राय में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की सिफारिश की गई है। मॉरिशस के पास अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के सामने जाने का अनुभव है ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून बहाल हो। अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं और सभी देशों को ऐसा करने की मांग करते हैं।
2: And we ask every state to do the same.
1: इससे पहले डुलावा में आयोजित सोटालागा, जो संवाद और अनुभव साझा करने के लिए एक पारंपरिक मंच है, अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कप 31 से पहले वैश्विक सामूहिक और तत्काल कार्रवाई की अपील की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बड़े देशों की सामूहिक जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
0: परिवारों, खासकर नौजवानों को मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़े खतरों को लेकर सचेत कराने के मकसद से रेजिडेंस वालीजी में कल रात एक कैंडल लाइट मार्च का आयोजन किया गया। अंतरिम प्रधानमंत्री यहया नवोमागी मौके पर उपस्थित हुई। इस संघर्ष के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन अनुला इलाके के सामुदायिक केंद्र में अगले 10 हफ्तों तक सप्ताह में 2 प्रिवेंशन सत्र का आयोजन करेगा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्यादा परिवारों के बीच जागरूकता बढ़ाने और ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष में समुदायों को एकजुट करने के लिए ये अभियान दूसरे इलाकों तक भी बढ़ाया जाएगा। कोयल सितल, गीता सोनाई।
1: हर हाथ में एक मशाल, नशे के खिलाफ उठती आवाजें। सोमवार शाम रेजिडेंस वाले जी की सड़कों पर लोगों ने अंतरिम प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मार्च किया। इसका उद्देश्य इलाके को रोशन करना और ये संदेश देना था कि नशे का विरोध करें और इस समस्या के खिलाफ चुप्पी तोड़ें। इस अभियान में परिवारों, युवाओं और बच्चों के साथ साथ नशे की लत से प्रभावित लोग भी शामिल हुए। मैं भी पहले सिंथेटिक ड्रग्स लेता था, लेकिन अब 13, 14, 15 साल के नौजवान इसके शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ अपना समर्थन देने आया हूँ, उन्हें जागरूक करने के लिए। समर्थन जरूरी है। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, इसके प्रभाव में वे जल्दी आ जाते हैं। ये पहल रेजिडेंस वाली जी कम्युनिटी डेवलपमेंट एसोसिएशन ने शुगर इंडस्ट्री लेबर वेलफेयर फंड के सहयोग से शुरू की है। इसका उद्देश्य अवैध नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ व्यापक जागरूकता अभियान चलाना है। अगले 10 हफ्तों तक अनुला एनजीओ परिवारों और स्थानीय लोगों के लिए नशे से बचाव को लेकर जागरूकता सत्र आयोजित करेगा। संगठन के अध्यक्ष जोजे आचुन कहते हैं, 12 चरणों का एक प्रोग्राम है, 6 हफ्तों में इस पर काम करेंगे। बचाव, इलाज, पुनर्वास और समाज में फिर से शामिल करना इसके अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है कि अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। ये अभियान आसपास के अन्य इलाकों तक भी चलाया जाएगा अंतरिम प्रधानमंत्री आरियाना बोमारी ने इस लड़ाई में परिवार के मार्गदर्शन और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। वे कहती हैं,

0: problème, la drogue, pas tous, zis, certains endroits, un peu partout, mais nous remercier Ban Ki-moon qui prend l'initiative pour organiser sa qualité activité là.
1: Drogue qui समस्या हर जगह है. अगले सप्ताह से एक विशेषज्ञ.
2: खबरों को आगे बढ़ाते हैं. गोशबा में जल्द ही मूल ढांचा संबंधी एक वृहद विकास परियोजना साकार होगी. इसकी प्रस्तुति आज भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने कि इसके लिए 100 मिलियन रुपए निवेश किए जा रहे हैं. मकसद है इलाके के निवासियों के लिए आवासीय सुविधाएं स्थापित करना. मंत्री शकील मोहम्मद ने बंदरगाह क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों से इस पहल में आर्थिक योगदान देने की भी मांग की. मिगान पुनापलाकेन करुणा लालू.
1: कोतोगाफे में कुछ परिवार वर्षों से बिना पानी और बिजली के रह रहे हैं. करीब 40 परिवारों के पास अपनी ज़मीन के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, लेकिन इन ज़मीनों पर अभी तक पानी और बिजली के कनेक्शन नहीं पहुंच पाए हैं. 10 साल हो गए हैं जब से कॉन्ट्रैक्ट मिला है. पानी और बिजली पाने की कोशिश की, पानी के लिए रोजिल गई, पैसे भी चुकाए. जब वे यहाँ आए तब हमें बताया गया कि जब परियोजना होगी तब पानी मिलेगा, अभी नहीं मिल सकता. जमीन तक पहुंच भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. सड़क, पानी और बिजली के कनेक्शन, बुनियादी ढांचा, कई समस्याओं का अब भी समाधान किया जाना बाकी है. भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद CWA और CEB के प्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 20 परिवार अभी भी अपनी स्थिति नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं. मंत्री शकील मोहम्मद कहते हैं वित्त मंत्रालय से आर्थिक मदद मांग सकते हैं ताकि सड़क बनाई जा सके, नालियां बनाई जा सके जिससे भारी बारिश के दौरान घरों में पानी न भरे और उन्हें पानी और बिजली की सप्लाई भी मिले. अन्य लोगों को भी नियमित करने पर काम करेंगे कानून के अनुसार मंत्रालय के अफसरों के सहयोग से.
3: Et en même temps, d'une autre de l'eau et d'une autre électricité.
1: हालांकि सभी मामले एक जैसे नहीं हैं. समुद्र के किनारे कुछ लोग बिना अनुमति के जमीन पर कब्जा करके रह रहे हैं. मंत्री शकील मोहम्मद कहते हैं पब्लिक बीच पर कई अवैध निर्माण हैं जो सार्वजनिक समुद्र तट पर हैं. बीच अथॉरिटी ने नोटिस दे दिया है, मेरा मंत्रालय भी नोटिस देगा ताकि उन्हें यहाँ से हटाया जा सके, पर इन्हें अन्य जगहों में बसाया जाएगा.
3: Qui l'eau public beach qui proclamait public beach. Alors mon objectif, c'est demande à beach authority et na fin fini CRV notice, mon ministère aussi pour CRV notice pour qu'ils nous cartier les autres. Mais en même temps nous pousserons les autres par là s'il y en a place. Moi pas pour faire difficulté l'eau là, mais moi pour intransigeant.
1: पुराने मामलों को नियमित करने से लेकर अवैध कब्जों तक अब अधिकारियों को इन सभी मामलों की जांच करनी होगी.
2: जिसे आप अभी सुन रहे थे कि कोतोगाफे में सदस्यों परिवार अभी भी स्वच्छ पानी और निचली और बिजली आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कईयों के पास अपनी ज़मीन के लिए सालों से कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं. भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने CWA CEB के प्रतिनिधियों के साथ कल स्थल का दौरा किया. मकसद रहा स्थिति का जायजा लेना जो कुछ निवासियों के लिए लगभग 15 सालों से खींचती चली आ रही है. 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग जो जनवरी 2027 से अपनी स्टेट एज पेंशन लेना चाहते हैं वे कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. लाभार्थियों को अपनी स्टेट एज पेंशन प्राप्त करने के लिए चुनी गई तारीख से 3 महीने पहले तक आवेदन करने की सुविधा है. सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय ने आज दोपहर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का डेमो भी किया. लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए या ऑनलाइन पोर्टल musap.gov.mu.org पर अपने विवरण दर्ज कर सकते हैं. जूनियर मंत्री कुगान परापेन को सुनते हैं.
4: Donc le SAP il rentre en vigueur à partir du 1er janvier 2027. Et le SAP il est appelé à

0: remplace le Basic Retirement Pension, le BRP. Et ça veut dire, du 31 décembre 2026 au 1er janvier 2027, nous pouvons assister à la disparition du BRP et à la naissance du SAP. Mais mon avis, c'est pas un bénéficiaire du SAP en des catégories bien distinctes. D'abord, une première catégorie, c'est un dimoun qui déjà peut recevoir une pension BRP. Aujourd'hui, nous avons à peu près un peu plus que 260 000 personnes âgées, man signaux, qui bénéficiaient du BRP. Et pour ça, man dimoun là, comme le ministre disait précédemment, je suis capable de dormir tranquille. Je paye na aucune application pour faire. Je paye na pas en ligne, je paye na pas online. Je peux transitionner automatiquement du BRP au SAP. Donc, zéro application pour un bénéficiaire actuel du BRP. Je n'ai pas besoin de soumettre aucune application. Quand le SAP rentre en vigueur, c'est juste un changement d'appellation. Au lieu de que je peux recevoir BRP, je peux recevoir SAP au même montant que le BRP, avec un ajustement qui pourrait n'avoir pas rapport à coût de la vie, etc.
1: इसके लिए जरूरी दस्तावेजों में राष्ट्रीय पहचान पत्र पता पासपोर्ट या जहां लागू हो नागरिकता प्रमाण पत्र शामिल हैं एक बार फिर सुनते हैं जूनियर मंत्री कुगन पापन को
0: l'application en ligne le online application pour le SAP li concerne uniquement et uniquement ben nouveau bénéficiaire du SAP c'est-à-dire ben dimoun qui au 1er janvier 2027 participer recevoir BRP et qui acheter aux autres ben nouveaux bénéficiaires et ces autres qui besoin à le faire application pour ce SAP si nous mettons en chiffre ou en date n'importe qui ça n'a qui naît avant le 31 décembre 1965 lui est déjà bénéficiaire du BRP ou lui pour bénéficiaire du BRP jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, lui, pas d'application qui lui besoin faire. L'application lui concerne principalement et uniquement Bandimoun qui est né à partir du 1er janvier 1966. C'est-à-dire Bandimoun qui gagne 60 ans à partir de janvier 2026. Et si l'on veut simplifier les choses, pour faire l'application, pour capable soumettre aux applications, pareil que manifeste tout le temps la pratique dans la sécurité sociale pour le BRP, ou pour capable soumettre aux applications à partir de 3 mois avant qu'il décide pour touche ou SAP.
1: जिन लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई होगी उन्हें आने वाले दिनों में देश भर के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा मंत्रालयों में सहायता दी जाएगी सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय को जनवरी 2027 से स्टेट एज पेंशन लागू होने के साथ करीब 18,000 ऑनलाइन आवेदनों की उम्मीद है सन 2024 में मॉरिशस में महिलाओं में कैंसर के 1,891 मामले दर्ज किए गए थे जिनमें से 37.5% ब्रेस्ट कैंसर के मामले थे विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रस्त मरीजों के लिए इलाज के साथ साथ उनके और उनके परिवारों के लिए मानसिक समर्थन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गैर सरकारी संगठन लिंक टू लाइफ ये जरूरी सहायता प्रदान करता है और इस पिंक अक्टूबर के दौरान ये संगठन शुरुआती जाँच यानी अर्ली स्क्रीनिंग पर खास बल दे रहा है सिंचा मुतु करुणा लालू
2: उनचास साल की उम्र में मालिनी को अपने स्तन कैंसर का पता चला निराश होने के बजाय उसने अपनी हिम्मत दिखाई एक पारिवारिक समस्या है माँ और दो बहनों को भी ये बीमारी हुई मेरे लिए नई बात नहीं हर साल अपना मुआयना कराती हूँ बहुत पहले ही इसका पता लगा लिया था इसलिए उपचार

0: और मुश्किल नहीं।
1: चार
0: साल से इलाज पाने वाली पास्कल लिंक टू लाइफ द्वारा आयोजित गतिविधियों में हमेशा भाग लेती हैं।
1: Nous avons beaucoup de douleurs, ça aide nous bien faire le tai chi, le yoga, la nutrition très important parce que nous façons manger maintenant très important.
0: उन्होंने कहा बहुत दर्द होता है, tai chi, योगा अभ्यास करने से मदद मिलती है, पोषण भी बहुत जरूरी है, सोफोलॉजी भी करते हैं ताकि शांति मिल सके। हम सभी एक दूसरे को समझते हैं, आज ठीक हैं, कल उठ नहीं सकते क्योंकि थकावट होती है।
1: Aujourd'hui, on est peut-être bien, demain, on ne peut pas se réveiller. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué.
2: On va venir demander à notre corps d'enlever toutes les tensions.
0: Mangalwar ko sophrologie ka satra tha, yani vishram ki ek teknik.
2: On fait des exercices de sophrologie.
0: Jaya Bhimak ne kaha, sophrologie, visualization bhi karte hain, विभिन्न थीमों पर ताकि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकें, अपना तनाव दूर कर सकें, उन्हें ऐसे उपकरण देना चाहते हैं ताकि वे घर पर इसका उपयोग कर सकें। पिंक अक्टूबर के इस महीने में लिंक टू लाइफ कई गतिविधियां आयोजित करता है। रिमेना मारी ने कहा उतार चढ़ाव होता है, अपने को आईने में देखकर संकल्प लेते हैं, खुद का ठीक से ख्याल रखेंगे, अपनों को स्तन कैंसर के मुआयने के लिए प्रोत्साहित करेंगे क्योंकि कैंसर के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं। ऐसे वचन किए गए ताकि इस कठिन घड़ी के बावजूद ये ज्यादा मुस्कुराती हुई एवं साहसी हो सके।
3: मॉरिशस पानी की कमी का सामना कर रहा है। ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार दिसंबर के दूसरे हिस्से में गर्मियों की बारिश पड़ने की उम्मीद है। मोवाक्वा जलाशय में अभी जल स्तर मात्र 35.9% है, जहां से रोजाना सिर्फ 61,000 क्यूबिक मीटर पानी निकाला जा रहा है, जबकि आमतौर पर 110,000 क्यूबिक मीटर पानी निकाला जाता है। स्थिति से जलापूर्ति पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादन ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई उपाय लागू करने की घोषणा की, जिनमें भूमिगत स्रोतों का इस्तेमाल और नए मोबाइल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना शामिल है। मॉरिशस में कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल और स्वास्थ्य पर उनके संभावित असर, खासकर कैंसर के मामलों की जांच के लिए एक महामारी संबंधी अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO की विशेषज्ञता प्राप्त होगी। कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल की अध्यक्षता में कल एबेन में अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी की प्रथम बैठक लगी। इसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल सलाम गुये और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल रहे। डॉक्टर अरविंद बुलेल ने सटीक और प्रासंगिक बायोगैनिक डेटा पर निर्भर रहने की जरूरत पर जोर दिया। इसके अलावा कीटनाशकों के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए जाएंगे।
4: अगर विदेशों में किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों में पर्यावरण में मौजूद कृषि कीटनाशकों के संपर्क और कैंसर के खतरे के बीच संबंध सामने आया है, तो मॉरिशस में इस संबंध में अभी तक कोई वैज्ञानिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और FAO की मदद से एक महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाएगा। कृषि उद्योग मंत्री के अनुसार करीब 9 से 10% कृषि उत्पादों में कीटनाशकों के अवशेष तय सीमा से ज्यादा पाए जाते हैं। मंत्री अरविंद बुलेल कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि और FAO से मांग की है कि एक साथ काम करें, उनका समर्थन लें स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से, ताकि महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जा सके। कीटनाशकों के प्रयोग को लेकर कानून पर भी ध्यान दे रहे हैं। कानून पर काम करने वाले विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बताया है कि कानून में कौन से सुधार लाने चाहिए। फल और सब्जियों के आयातक भी इस मामले में जांच के दायरे में हैं। मंत्री अरविंद बुलेल कहते हैं सिर्फ स्थानीय खेतीहरों के बारे में बात नहीं कर रहे, फल और सब्जियां आयात करने वाले लोग भी हैं। सभी टेस्ट किए जाएंगे, न सिर्फ मॉरिशस की प्रयोगशालाओं में बल्कि विदेशों में भी। किसानों और उनके परिवारों की नियमित स्वास्थ्य जांच की भी योजना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू कहते हैं कायम की गई कमेटी में स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे जो उन परिवारों को देखने जाएंगे जो कृषि से जुड़े हुए हैं। तब इसका पता चल जाएगा कि सच में कीटनाशक

0: कैंसर के बढ़ने का कारण है।
1: Pesticides, les responsables, to a certain extent, à quelques pourcents d'increase des cancers, on peut trouver là-bas.
0: समिति की ओर से किसानों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
2: बीते शनिवार गोविंद नयन पूजा का तीसरा शनिवार रहा। जी हाँ, बीता शनिवार गोविंदन पूजा का तीसरा शनिवार रहा। भक्तों ने देश के कोविलों में भगवान कृष्ण को समर्पित विशेष पूजा में भाग लिया। हमारी एक टीम गानम वक्वा के अन्नादुराई तामिजे कोविल में मौजूद हुई। प्रार्थनाओं के साथ साथ भजन और नृत्य हुए। प्रियंका अरी, गीतास नारायण।
0: रात के दौरान प्रार्थनाओं और पारंपरिक भजनों की गूंज सुनाई देती है। कई दिनों की तैयारियों के बाद ग्रानम रोड वाकवा स्थित अनादुराई तमीज कुविल श्रद्धालुओं के लिए अपने द्वार खुलता है। यहां भगवान विष्णु को समर्पित प्रार्थना में श्रद्धालु हिस्सा लेने पहुंचे। तिरुतुंडर आया बतलैन गोविंदा स्वामी कहते हैं, पुरातासी को एक कठिन महीना माना जाता है। सभी भक्त महाविष्णु की पूजा करते हैं हम सबकी रक्षा के लिए। इन धार्मिक आयोजनों के केंद्र में है कंबम। ये पवित्र दीपक भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इस पवित्र रोशनी के चारों ओर श्रद्धालु प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और कुम्मी नृत्य करते हैं। गोल घेरा बनाकर श्रद्धालु भक्ति गीतों की लय पर एक के बाद एक कदम बढ़ाते हैं। इस भक्ति भरी रात में प्रसाद और भेंट का भी विशेष महत्व है। इनमें वड़े भी शामिल हैं, जो अनाज से बने एक पारंपरिक पकवान है और श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। सेंसुबेन कहते हैं, भक्तों के लिए रात के दौरान तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलता है। गोविंदन की रात्रि बहुत ही श्रद्धा भक्ति से गुजारते हैं। तांगावेल गोविंदन कहते हैं, गोविंदन एक त्याग है, व्रत रखते हैं। कुम्मी गोलाटम के साथ जब सभी लोग एकत्र होते हैं तब उसकी सुंदरता देखते बनती है।
3: Ça même qui est plus joli. Ça veut dire, nous faire une dépense seulement, quand ça finit, quand nous pétons un endroit comme ailleurs, les gens nous seront dit que nous avons quelque chose.
0: Bari Ramsami dit que tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont
4: été en train de se faire. Et chaque année, nous avons été avec PVA. Et en plus de ça, il y a un homme qui nous passe la nuit, une nuit.

0: कुछ श्रद्धालुओं के लिए प्रार्थना का सिलसिला इस कोविल तक ही सीमित नहीं रहता। एक ही रात में 3 और कभी कभी 7 कोविल के दर्शन भी किए जाते हैं। ये आस्था की एक यात्रा है जहां हर प्रार्थना, हर भजन और हर कदम श्रद्धालुओं को ईश्वर के और करीब ले जाता है।
1: और वेंकटेश्वरा पूजा व्रत के संदर्भ में एक आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम के लिए युवा कर्नाटिक कलाकार राहुल वेलल मॉरिशस आए हुए हैं। मॉरिशस तेलुगु महासभा के मुख्यालय में उनका स्वागत किया गया। मात्र 19 साल की उम्र के इस भारतीय कलाकार ने भक्तिपूर्ण प्रस्तुतियों से दुनिया भर के संगीत प्रेमियों का दिल जीता है। आज कल 7 अक्टूबर को फिनिक्स के वाल दे वी इवेंट गार्डन में उनका लाइव परफॉर्मेंस होगा। शतेंद्र की रिपोर्ट।
2: सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में राहुल वेलल भारत में कर्नाटक संगीत के युवा चेहरों में अपनी पहचान बना चुके हैं। मॉरिशस में अपने पहले दौरे पर एक आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम के सिलसिले में उनका स्वागत मॉरिशस तेलुगु महासभा के मुख्यालय में 2 अन्य कलाकारों के साथ किया गया।
3: My first time and thoroughly enjoyed it till now. The weather has been great, very similar to what we have in Bangalore.
2: उनका संगीत सफर उन्हें पहले ही कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जा चुका है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और हांगकांग शामिल हैं। इसके साथ ही वे कर्नाटक संगीत के प्रतिष्ठित गुरुओं से अपनी संगीत शिक्षा जारी रखे हुए हैं।
3: Continuous process, it never ends, and the end goal is that we try to become as close to the ocean of music as possible.
2: सिर्फ संगीत प्रस्तुति तक सीमित न रहते हुए ये युवा गायक अपनी कला साधना को आध्यात्मिकता से गहराई से जोड़ते हैं।

0: उनके लिए गायन भक्ति व्यक्त करने और श्रोताओं के साथ एक भावनात्मक और आध्यात्मिक जुड़ाव बनाने का माध्यम है।
1: It's more about the vibe that you feel once you're there, the spiritual vibe and the divine energy that you get to experience in such concerts. So I think it's a must for everyone to attend and I'm sure they'll enjoy it as well.
0: उनकी ये सोच मॉरिशस के दर्शकों के बीच भी विशेष रूप से जुड़ाव पैदा कर सकती हैं। ये तीसरा आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम है जिसका आयोजन वेंकटेश्वर व्रतम के अवसर पर किया जा रहा है।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस की राजधानी पेरिस में हजारों छात्र प्रदर्शनों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। वे शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा निवेश की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने 2000 से ज्यादा स्कूलों के सामने घेराबंदी की। पुलिस के साथ उनकी झड़पें भी हुई हैं। और उधर साइबेरिया में एक प्लेग अनुसंधान केंद्र में एक लैबोरेटरी कर्मचारी की मौत के बाद उसके संपर्क में आए करीब 200 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। रूसी अधिकारियों ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। अमेरिका की तरफ से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बढ़ते हम अब मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है रात के दौरान और कल सुबह बादल घिराएंगे और विशेषकर पूर्व दक्षिण और सेंटरपातों वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। कल दोपहर बाद ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंटरपातों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त शाम 6:09 पर और कल सुबह सूर्योदय 5:46 पर।

तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का और कंसोल पर हमारे सहयोगी डोमिनिक का सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहे बढ़ते हम शुभ समाचारों की ओर।

sokszor császonyi. Alibrion vakuame, alibrion vakuame, 64 sal ki, 64 years old ki, Srimati Vilasavadi Lachini, Srimati Vilasavadi Lachini, Pedasham Goinden, और जिन्हें बेबी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, और जो वेंचुरा दुकान की मालकिन थी, की मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके घर अलिब्रियों वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM. मामजेल जान गुडलैंड्स में, मामजेल जान गुडलैंड्स में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री कासीराज अलकोरी जिन्हें ओमदेव के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती शोभा अलकोरी के घर मामजेल जान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहूज गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM. Avenue Le Palmier, Canfoucrot, Flaquemay. Avenue Le Palmier, Canfoucrot, Flaquemay. Avenue Le Palmier, chemin Kijé. Avenue Le Palmier, Kangaro, Flaquemay. Avenue Le Palmier, Kangaro, Flaquemay. Exopanch Sal. Qui? 105 years old. Qui? Shimati Kankama Chinia. Shimati Kankama Chinia. पैदाशना बंगारी और जिन्हें बाबाम के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल दिन के 1:30 बजे उनके बेटे रामदास और देवानंद चिनिया के घर कांगारो फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचा की शमशान भूमि ले जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 1:30 PM.

Railroad 15 canton Vaquame, Railroad 15 canton Vaquame, Satatar Sal ki 77 years old ki श्री गोइंसामी सुंदरम जिन्हें राजेन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो सदाल कॉलेज में अटेंडेंट का काम करते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल शाम 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती विमला सुंदरम के घर कैसकांतों वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 3 PM। रायरोड 9000 मील त्रियोली में, रायरोड 9000 मील त्रियोली में 21 साल की 21 ईयर्स ओल्ड की बीबी फातिमा शबनीज सुकुमिया जिन्हें शबनीज के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके मकान 9000 मील त्रियोली से उठाकर दफनाने के लिए प्रेंदी पपाई का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। शिवाला लेन पुचपा के मोताई ब्लॉश में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रूपावती झगर सिंह पैदाशीनाम नक्चेदी और जिन्हें राधा मारम फाक्तिया के नाम से बहुत ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके बेटे विकास झगर सिंह के घर पुचपा के मोताई ब्लॉक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2:30 PM। नंबर 10 नाहाबू सलीम स्ट्रीट बुबासे में 82 साल की

0: ये शोक समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं। नंबर 10 नहाबुसलीम स्ट्रीट बुबासे में, नंबर 10 नहाबुसलीम स्ट्रीट बुबासे में 82 साल की, 82 ईयर्स ओल्ड की कुरेसा इमाम अली जिन्हें मैडम आबू के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज रात 7:30 बजे इनके मकान बोबासा से उठाकर सबसे पहले नमाज़ी जनाजा के लिए नूरे कबावी मस्जिद दे जाएगी डॉक्टर रीड बोबासा स्ट्रीट में। फिर दफनाने के लिए बैदीदाम कासी का कब्रस्तान, फ्यूनरल टुनाइट एट 7:30 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to RM3 Radio.

तो चलिए दोस्तों आपका हम स्वागत करते हैं. इट्स 6:42 ट्यूसडे की ये इवनिंग 6th of October और आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं. एक बार फिर मैं हूँ परी आपके साथ और शाम के 7 बजे तक आपके इस शाम को हम सजाने वाले हैं कुछ पॉजिटिव थॉट्स और ब्यूटीफुल गीतों के साथ. तो जी हाँ दोस्तों, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि जिंदगी हर रोज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है. कभी चीजें हमारी मंजिल मर्जी के मुताबिक होती है और कभी बिल्कुल भी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती. लेकिन जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा तो यही है कि हर मोड़ पर हमें अपने आप को समझने का मौका मिलता है. इसीलिए तो कहते हैं कि जो बीत गया उससे सबक लीजिए और जो सामने है उसे पूरी तरह जी लीजिए. हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन हर इंसान का सफ़र जो है वो अलग होता है. हर किसी का वक्त सेम नहीं होता. किसी का वक्त पहले आता है और किसी का थोड़ी देर से. और देर का मतलब तो ये बिल्कुल नहीं होता कि ये एक हार है. कभी कभी ज़िंदगी हमें वो देने से पहले तैयार करती है जिसके हम सच में हकदार होते हैं. और अगर आज कुछ मुश्किलें चल रही है तो खुद से एक बात ज़रूर कहना कि ये वक्त है, पूरी ज़िंदगी नहीं. मुश्किलें परमानेंट एड्रेस लेकर नहीं आती दोस्तों. वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और इंसान भी बदलता है. बस ज़रूरी है कि हम खुद पर यकीन रखना ना छोड़े और पॉजिटिव थॉट्स को हमेशा अपने साथ रखें. तो जैसे हमने कहा कि सुख दुख ये तो जीवन का हिस्सा है. दुख जाएगा तो सुख जरूर आएगा. और इसी पॉजिटिविटी के साथ इस गाने को हम आपके लिए लेकर आए हैं. बप्पी लहरी और शब्बीर कुमार की आवाजें, गिरफ्तार फिल्म का ये गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम. मैं हूं परी आपके साथ और ये है आपका प्रोग्राम नई सोच ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन.

और चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत गीत के साथ हम बढ़ने वाले हैं अगले गीत की ओर। जी हाँ, वो प्यारा सा गाना जिसके साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले प्रोग्राम की ओर, जिसका नाम है दिलों की आवाज नई सोच। हमारा ये प्रोग्राम, कहते हैं ना दोस्तों, खुशी के लिए हमेशा कोई बड़ी वजह ज़रूरी नहीं होती। कभी एक सुकून भरी चाय, किसी अपने की आवाज़, अच्छी नींद या दिन भर की थकान को दूर करने के लिए बस अपनों का साथ, अपनों का प्यार, यही काफ़ी होता है। ज़िंदगी बड़े पलों से नहीं, इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से खूबसूरत बनती है। और अभी के लिए जो अगला गाना है, गोज़ आउट फॉर यू एंड इक्वली गोज़ आउट फॉर ऑल योर लव्ड वंस। बस यही दिल से हम चाहते हैं कि आपका जो साथ है अपनों के साथ ऐसे ही बना रहे, उनके साथ आप खुशियां बांटते रहें और जिंदगी के सफर को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाती रहे। चलिए दोस्तों, मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक। इस प्रोग्राम के बाद लेकर आ रहे हैं दिलों की आवाज। स्टे वेल कनेक्टेड।

0: Center 94 North South 95.6 East West 98.2. You are listening to RM3 Radio.
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम दिलों की आवाज, जहां पर कुछ ब्यूटीफुल गीतों के साथ आपके दिल को बहलाएंगे। अभी से लेकर रात के 9 बजे तक मैं हूं परी आपके साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। उम्मीद करते हैं शाम का ये वक्त आप हमारे साथ एंजॉय करेंगे। आपके दिल का हाल, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200-5250-6200 इंतजार रहेगा आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. हर एक गाना खूबसूरत होता है दोस्तों, और दौर चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन गुड म्यूजिक हमेशा दिल तक पहुंच जाता है। तो अभी के लिए मूड को चेंज करने के लिए वी हैव दिस ब्यूटीफुल ट्रैक अरिजीत सिंह निकिता गांधी की आवाज़ें, एक ऐसा गाना जो दिल को सुकून जरूर पहुंचाता है, बिकॉज इट्स टेकन फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ। और यहाँ पर प्रकाशवती जी हमारा साथ दे रही हैं, सात समंदर पार से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सो यहाँ मॉरिशस से वी आर सेंडिंग लोड्स ऑफ लव टू यू, ये गाना स्पेशली आपके नाम। और चलिए ऐसे ही खूबसूरत गीतों को एंजॉय करने के लिए साथ निभाइए हमारा ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। मैं हूँ परी आपके साथ अभी से लेकर रात के 9 बजे तक।

और चलिए दोस्तों यहां पर अनुराधा पौडवाल की आवाज साथी फिल्म का ये गाना आप सभी के लिए साथ दे रहे हमारे सभी लिसनर्स हैव अ वंडरफुल इवनिंग

जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ट्रैक और ये है कीर्ति कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें. कीर्ति कुमार जो रहे हैं बहुत ही फेमस डायरेक्टर और साथ ही साथ अगर आप जानते हो तो आपको हम बताएं कि गोविंदा, यस द फेमस बॉलीवुड एक्टर गोविंदा, उनके भाई है कीर्ति कुमार. और ये जो फिल्म का गाना है यानी कि प्यारा सा गाना जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, सो वेल आपको बता दें दैट ये जो फिल्म है इसमें नज़र आए थे गोविंदा एंड ये गाना आप सभी के नाम, टेकन फ्रॉम द फिल्म राधा का संगम. ये गाना है हमारे सभी सुनने वालों के नाम, सभी लिसनर्स के नाम. चलिए यहाँ पर पूजा हमारा साथ दे रही हैं, आप भी गॉट योर मैसेज एंड अच्छा लगा जानकर कि ये सिलेक्शंस आपके दिल को छू रहे हैं और ऐसे ही कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके लिए चलते रहेंगे बिकॉज ये है आपका अपना RM3 रेडियो मनोरंजन. प्रकाशपति जी, आप भी यहाँ पर स्पेशल स्पेशल स्वीट स्वीट मैसेजेस हम तक पहुँचा रही है. सो यहाँ मॉरिशस से आपके लिए हम भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार. गानों को गुनगुनाते रहिए, साथ निभाते रहिए और मैसेजेस डेडिकेशन 5250 6200 5250 6200 पर.

जी हाँ दोस्तों, ढलती हुई शाम और इस शाम में शामिल होते हुए ये एवरग्रीन ट्रैक्स, उम्मीद करते हैं दैट ये गानों का कारवां आपके दिल को लुभा रहा है, आपके दिल को थोड़ा सा सुकून पहुंचा रहा है, क्योंकि चुनकर लाए हैं ये ऐसे गीत जो शायद आपके दिन भर की

कान को दूर करने के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो। कुछ गाने ऐसे जिन्हें आप भी गुनगुना सकें और साथ ही साथ आपका जो प्यार है, आपकी जो स्वीट वर्ड्स है, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस के जरिए। तो नंबर तो है हमारा 5250-6200-5250-6200। अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ। रात के 9 बजे तक हमने सजाया है म्यूजिकल कारवां आपके लिए, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन। फॉर नाउ मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ों में ये गाना हमारे सभी सुनने वालों का नाम, सौगंध फिल्म से लिया हुआ ये गाना, और शायद अगर आपको याद हो सो दिस वॉज द डेब्यू फिल्म ऑफ अक्षय कुमार, यानी कि ऑलमोस्ट द फर्स्ट फिल्म जहाँ पर हमने अक्षय कुमार को देखा। और इसी फिल्म के साथ लोगों को क्या पता था कि उन्हें मिलने वाला है एक सुपरस्टार। सो चलिए उसी फिल्म से लेकर आए हैं ये गाना आप सभी के नाम। साथ निभाने के लिए शुक्रिया।

बिल्कुल दोस्तों, यहां पर दुनिया के इतने सारे रंग हैं और उन्हीं रंगों में से एक रंग प्यार का रंग। जैसे हमने कहा कि प्यार के अलग-अलग रंग होते हैं, कभी उदासी का रंग, कभी जुदाई का रंग, कभी प्यार का रंग और कभी दिल मिलने का रंग। सो जो भी ये रंग है, यानी कि सात रंग जो होते हैं, वो सब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन म्यूजिकली और अभी के लिए तो हम वेलकम कर रहे हैं आपका इन दिस आवर। रात्रि के 8:04 हो चुके हैं, ट्यूसडे इवनिंग, और ट्यूसडे इवनिंग से ट्यूसडे नाइट की ओर हम बढ़ गए हैं। तो आज की ये रात हम लेकर आए हैं कुछ खास गीत, आपके नाम, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250620000 यानी कि 5250620000 पर मैं यानी कि परी कर रही हूँ आपका इंतजार। चलिए दोस्तों, बढ़ रहे हैं अगले गीत की ओर और ये गाना स्पेशली फॉर हस्बैंड अमजद, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम आयशा। बिल्कुल जी, हमारे नैना और आपके नैना भी तो बातें कर रहे हैं, लेकिन इन गानों के जरिए, और इन गानों के जरिए हम भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं बहुत सारा प्यार। तो चलिए हमारे साथ गुनगुनाते रहिए, यह है आपका अपना रेडियो स्टेशन RM3 रेडियो मनोरंजन।

So, well, a beautiful era of 90s, picturized on Pooja Bhatt and Sanjay Dutt. Taken from the film Sada ki gana tha, aap sabhi ke liye jo is waqt hamara saath de rahe hain. Itne pyar se hamare saath connected hain aap. So, thank you so much, hamare sabhi listeners. Aap ke liye bhi hum lekar aaye hain beshumar pyar on the waves of RM3 Radio Manoranjan. एक और खूबसूरत सा गीत तरुराधा पौडवाल एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजें ये गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारे सभी आबादू परिवार के नाम कहते हैं योर प्रेजेंस फिल्स आवर हार्ट विद मोर लव देन एवर थॉट पॉसिबल सो थैंक यू सो मच दारिन श्वेता रविश प्रीशा लव शाह और अपारू परिवार जो होशनुआ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहीं फेनिक्स से हमारा साथ दे रही हैं हमारी प्यारी सी रेहाना जी तो हम भी आपको प्यार भरा एक हक पहुंचा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स वी हैव सम ब्यूटीफुल ट्रैक्स जिन्हें सुनते हुए आप अपनी रात को एंजॉय कर पा रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन दिलों की आवाज़ प्रोग्राम मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक अभी के लिए एक और खूबसूरत सा गीत फिल्म चोर और चांद एंजॉय दिस वन हमारे सभी लिसनर्स के नाम फॉर ऑल डियर लिसनर्स जो इतने प्यार से कनेक्टेड हैं कहते हैं ना दोस्तों के रात का ये पल थोड़ा सा और खास और ऐसा और स्पेशल इन गीतों के साथ मौसम जो है थोड़ा सा और सुहाना लगता है इन गीतों के साथ दिल थोड़ा सा और बहल जाता है और बस कोशिश यही है कि ये गीत हम आप तक पहुंचाते रहें साथ देते रहिए ऑन रेडियो मनोरंजन

और चलिए दोस्तों इसी गीत के साथ समय हो चला है कि मैं परी लूं आपसे अलविदा। आपने इतने प्यार से हमारा साथ निभाया, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वादा रहा कि आपसे मुलाकात होगी जल्द। जी हाँ, कल 12 से लेकर 2 बजे तक लेकर आएंगे आपके लिए सुहाना सफर प्रोग्राम, लेकर चलेंगे आपको पुरानी यादों के कारवां पर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ। थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे आप भोजपुरी प्रोग्राम। मुलाकात होगी जल्द। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे सेफ।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

रात के 9:03 होलबा और आज मंगर 6 अक्टूबर 2026 के भोजपुरी तड़का में हम किरण आप सबको के स्वागत करत है। आप सबको के नमस्ते प्रणाम और पहला गीत आप सबको के नाम दुनिया बाद चारों तरफ गोल सुनानुयान के आवाज में

हाँ, तो आज हा अक्टूबर महीना के दूसरा सप्ताह, लेकिन पहला मंगर मंगलवार, पहला मंगर, और मंगर भी बहुत शुभ मानल जाला। एगो दिन के कोनो खास विशेषता नहीं है, बल्कि हमनी के संस्कृति में सभी दिन बहुत शुभ मानल जाला। और आशा करत है जाकि आज के दिन आप सब कोई के बहुत अच्छा से बीतल। और ई सप्ताह भी काल शुरू हो, लेकिन देखा दुगो दिन बीत गल, समय बहुत जल्दी जल्दी चलता। अभी पितरपक के जो मौसम बा वो भी समाप्त हो के ढेर देरी नहीं लगी। और उधर नवरात्रि शुरू हो जाए, जैसे नवरात्रि शुरू हो तो फिर उधर दिवाली चलाए, और दिवाली चला तो समझ ला अब क्रिसमस और नवा बरिस भी आए के दूर नहीं बा। तो अब सब कोई के खास तौर पर जे लोग अभी परीक्षा में भाग लेवत है वजह, जेकर जेकर घर में लड़का लोग एग्जाम के प्रिपरेशन करत है वजह, आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। अगला जो गीत चली वो चाहे परीक्षा के समय रही, चाहे वो पूजा पाठ के समय रही, चाहे वो पितरपक के मौसम रही, मन चाहे हमेशा प्रसन्नचित रहेगे। तो जो अगला गीत चली, ये गीत के मांग तो करले हवन विजय बेनी प्रसाद शामुनी से, लेकिन ये गीत आप सब कोई खातिर, चाहे आप कोनो भी मूड में हो बा। और ये गीत किशोर खिमिया के गावल बा, जलसा लाल बा। और विजय जी ये गीत खास तौर पर अपन दोस्त गणेश जगनारायण और मोहताबासी शास्त्री बोनोमाली के नाम करत हवन। और जितना कोई खुशी रहेला जा ये गीत एक पसंद करेला जा, आप सब कोई के नाम ये अगला गीत। और जितना कोई फ़ोन करत हवा जा, तो आप लोग के

रात के 9:26 हो गल बा और आप अपन मनपसंद प्रोग्राम सुनत हवा भोजपुरी तड़का जोन 9 बजे से रात के 11 बजे तक चलेला और हम किरण आपके साथ हमेशा बीफे के दिन देवीला बल्कि बीफे के रात के देला लेकिन ई महीना हर मंगर के हमने मिलब जा और आज ई महीना के पहला मंगर है। आप सब कोई के कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत बा जे लोग हमने के सुनत हवा जा वो चाहे घर पर होई चाहे ड्राइव करते बखत होई या फिर काम करते हुए आप हमके सुनत हवा तो सुनते रहिए आपके ही मनपसंद गीत ई प्रोग्राम में हम चलाएला जैसे जानेला और आप सब कोई के फ़ोन कॉल्स आवता बहुत भारी संख्या में और आप सब कोई के गीत ही एक के बाद एक चलता जो अगला गीत चली सुनीता ननकू के आवाज़ में एगो ऐसा गीत जेकर मांग हर कार्यक्रम में कम से कम 5-6 जना तक करबे करेला और ई गीत है चमेली चमेली। आज ई गीत के पहला फरमाइश कर ले हवन सीला और आप ई गीत अपन पतिदेव सुरेन के नाम करत हवा साथ में अपन सब लड़का लोग के नाम और ख़ास तौर पर अपन सब नाती पोता के नाम और आपके नाती पोता के नाम में बा यौवन कबीर श्लोक और रुद्राक्ष आपके सब लड़का लोग सोनम शशि किरण और हांसले के नाम और जितना कोई ई गीत सुने के खुशी रहेला जा आप सब कोई के नाम चमेली चमेली। आज आप लोग के ई गीत ने परल मांगे के एक जना के ओर से फरमाइश चला बा आप लोग के अन्य जो मनपसंद गीत बा एक के बाद एक चलते रही।

0: चमेली चमेली के बाद जो अगला गीत चली वो गीता गजाधर के आवाज़ में बा समधी के लगल हिचकी और गीत के फरमाइश कर ले हवन तहेरा आप हवा रिविया दिजोंगी से और गीत आप अपन बनोई के नाम करत हवा और बहिन मीना बनोई राचित मोहित और मीना के नाम तहेरा जी चला ये अगला गीत आपके संगे संगे जितना कोई भी अभी हमने के सुना था वजह और आप लोग गीता गजाधर के जबरदस्त फैन वजह तो ये गीत आप सब कोई के नाम
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

गीता गजाधर के आवाज़ के बाद जो अगला गीत चली वह विक्रम कुलाचन के जुबानी धोती पोती पगड़ी। ये गीत के फरमाइश करत हवन भाई अब्बू अपन पूरा परिवार खातिर, अब्बू अयाज अफेज जयर जहीरा रईस काला चोटी और ख़ास तौर पर अपन दोस्त आपी और उनकर बीवी के नाम। भाई अबू के ओर से आप सब कोई के नाम भी गीत जे लोग धोती पोती पगड़ी सुने के हमेशा खुशी रहेला जा और एक मांग करते रहेला जा।

0: अभी आप क्रिश बल्कि विक्रम कुलाचन के आवाज में धोती पोती सुनत रहला और ये गीत के फरमाइश अक्सर रहते रहला त आशा करत है जाकि ये गीत आपके पसंद आयल। और एकर बाद जो अगला गीत चली उ है ला फ्रांस कुणाल बाबूलाल के आवाज में और ये गीत हांसले खास तौर पर अपन सास प्रेमिला के नाम करत हवन।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
1: Your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.

और लाफोस के बाद जनक लागी चली उहा कोनो दिन दाल खाके और इगीत के मांग कर ले हवन रोसबेल से संजय जे हमने के सुना थवन इगीत आप श्वेता के नाम अपन बहिन के नाम भाई के नाम और पूरा परिवार के नाम करत हवा ता रोसबेल के संजय के ओर से ई अगला गाना

इजन गीत सुनत हवा हमरा देख देख के आंख मारेला। ई गीत गैले हवन बंधु मोहम्मद खालिद और साथ में हमनी के सहयोगी रत्ना पदारत आवाज देले हवन। ई सुंदर आवाज आप ही के चहेती रत्ना के हा और ई गीत के फरमाइश करले हवन पोलॉजी से छोटी और बेलिया से आत्माराम जी और ई गीत ललिता प्रभावती और हरीश भैया सब कोई के नाम और साथ में ये बखत हमने के गीता जी सुना था वन मोताइलोंग से आपके भी नाम।

जादू देवचरण के आवाज में भोजपुरी बोलिया गीत के मांग कर ले हवन मेबर्ग से कल्याणी जी, और आप गीत नोवेल फ्रॉस्ट के गायत्री अजय और अपन सब दोस्त के

संस्कृति हमारी है सबसे पुरानी। इगीत के मांग कर ले हवन नवीन लक्ष्मण जी। नवीन लक्ष्मण जी जे गोसबेल से हवन, आप इगीत अपन धर्मपत्नी चित्रा के नाम करत हवा और आप चाहत हवा कि सब कोई आपके पत्नी चित्रा के स्वास्थ्य खातिर प्रार्थना करियन जा, कहे कि उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं चलता आजकल। तो नवीन जी, आपके पत्नी बहुत जल्द ठीक हो जायन, ऐसन प्रार्थना और शुभकामना के साथ आपके नाम, आपके पत्नी के नाम, आपके बहन निवेदिता, अमृता और सब भाई लोग के नाम, न्यूग्रोव के राज अभिलोक के नाम, आपके ओर से इगीत।

0: रात के 10:10 होलबा और अभी से 11 बजे तक के ई सफर चले होला बा। अगला जुन गीत चली मीरा मोहन के आवाज में शहर के बजरुआ और ई गीत सुने चाहत हवन प्लेंदे पापाई से मनु। मनु आपके फरमाइश पर मीरा मोहन के आवाज में ई अगला गीत।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghe.
4: Ibakhat raat ke 10:45 hua tha aur 15 minute mein हमने के ये प्रोग्राम समाप्त हो जाए रात के ठीक 11 बजे। और आप जितना प्यार के साथ साथ दिला, आप सबको के बहुत बहुत धन्यवाद। ये जन अगला गीत चला था बीच मावती संपत की आवाज़ में। ये गीत ख़ास तौर पर पूर्णिमा फुकीरा जी के नाम और शांता सुकारी जी के नाम, सेजियम मिल फॉरेस्ट साइड से सुना था वन। और हमने की मुलाकात काल फजर के फिर से हुई हमारी धरोहर में, और नहीं तो फिर मिलब जा भोजपुरी तड़का में आवत मंगर के। आप सबको अपन ख्याल रखे जा। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनहरे पल। रात के 11 बज चुके हैं और घर में धीरे धीरे खामोशी उतर रही है। लाइट्स हल्के से डिम है और अब वक्त है दिन भर की भाग दौड़ को साइड में रखने के लिए और सुनहरे पल में जहां रात के साथ चलेंगे वो गीत जो यादों को भी जगाते हैं और दिल को भी सुकून देते हैं। मैं हूं नमनी, तो आइए आज की रात को थोड़ा पुराना, थोड़ा हसीन बनाते हैं।

वैसे कुछ गाने सुने नहीं जाते हैं, वो अपने साथ एक पूरा जमाना ले आते हैं, एक जगह, एक चेहरा, एक शाम और कभी कभी बस एक पुरानी सी याद। सुनहरी पल पर आज रात ऐसे ही गीतों का सिलसिला जारी है, आप बस साथ देते रहिए।

दिन चाहे कितना भी लंबा रहा हो, सोने से पहले अगर एक पसंदीदा गीत सुनने को मिल जाए तो मन हल्का सा हो जाता है। तो आज रात फोन एक तरफ रखिए, आंखें बंद कीजिए और बस गीतों को महसूस करते हैं।

मोहब्बत के जमाने बदल जाते हैं लेकिन कुछ अल्फाज और कुछ धुन कभी पुरानी नहीं होती है। वो पहला खत, पहली मुलाकात या वो इंतजार, सब कुछ एक गाने में दोबारा जी सकते हैं।

एक आवाज में शरारत, एक आवाज में रोमांस, और दोनों मिल जाए तो गाना यादगार बन जाता है। आशा जी और किशोर दा की ये जोड़ी बॉलीवुड के उन खूबसूरत रंगों में से है जो आज भी उतने ही ताजा लगते हैं। तो चलिए उसे फिर से रिवाइव करते हैं साथ में आपके ही सुनहरे पल।

0: के साथ सुनहरे पल की आज की महफिल अपनी आखिरी गीत की तरफ बढ़ रही है। कल फिर मिलेंगे एक और रात, कुछ और पुरानी यादें और बहुत सारी एवरग्रीन गीतों के साथ। तब तक शुभ रात्रि, अच्छी नींद और दिल में कुछ खूबसूरत सुनहरे पल संभाल कर रखिए।
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: रेडियो मॉरिशस
3: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening, you are RA.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़। दिस इज रेडियो मॉरिशस।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सा

0: जाने दो।
1: MBC Radio 24 hours a day।
2: Radio Mauritius
3: 800 kilohertz पर ये है Radio Mauritius।
2: Radio Mauritius।
3: Radio Mauritius।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: RM3 रेडियो।